मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 और 20 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक

0: मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे ये देशगान, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति गीत, संत कवि रैदास की ये रचना है।

0: बिपिन सचदेवा और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री सुभाष अरोड़ा के विचार।
1: मुझे अपनी शाला के प्रधानाचार्य की कथन, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, ता उम्र कामयाब जीवन की कुंजी सरीखे प्रतीत होते हैं। सुबह की प्रार्थना के लिए जुटे छात्रों को संबोधित करते हुए वह सदा ज्ञान लेने के साथ साथ सद्व्यवहार का मूल मंत्र के रूप में अदब से पेश आने पर विशेष बल देते थे। इसी तरह उस दौर में एक स्वामी जी आसपास के मोहल्लों में जाकर बच्चों को सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छूने और आशीर्वाद लेने की शिक्षा देते थे। वह रामायण की एक चौपाई भी अक्सर सुनाते थे जो हर बच्चे को कंठस्थ हो गई थी। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाही माथा। प्राथमिक शिक्षा उपरांत जब नंबरों की लालसा ने संस्कृत कक्षा में बैठाया तो गुरुजी ने अभिवादन शीलस्य नित्यम वृदो पसे विना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, अर्थात बड़ों का समान पूर्वक अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। श्लोक और उसके अर्थ रटकर जीवन जब आगे बढ़ा तो बरसों बाद सही अर्थों में व्यवहारिक धरातल पर वास्तविक मायने

0: समझ में आने लगे। बड़ों के आशीर्वाद से खुशी, सराहना और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसा महसूस होने लगता है। अभिवादन दरअसल मानवीय संचार की महती क्रिया है और संवाद कायम करने का सरल और सभ्य तरीका भी। अभिवादन से जहां व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वहीं खुद को परिवेश से जोड़ने की पहल भी करता है। आपसी जुड़ाव और सहज सामाजिक स्वीकृति अर्जित करने में भी अभिवादन सहायक सिद्ध होता है। विश्व के हर समाज में अभिवादन सामान्य सामाजिक अनिवार्यता है। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय जीवन जीने की कला अभिवादन और शिष्टाचार पर केंद्रित है। इस्लाम में भी जाने और अनजाने सभी को बात से पहले सलाम करने की ताकीद की गई है। साथ ही हर सलाम का जवाब भी सलाम हो, जिससे अभिवादनकर्ता को नेकियां नसीब होती हैं। अभिवादन के तौर तरीके समाज विशेष और क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न होते हैं। शारीरिक संकेतों के द्वारा भी तहजीब और शहूर के मुताबिक हाथ हिलाकर, हाथ मिलाकर, मस्तक झुकाकर, मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर, पैर छूकर, मौन रहते हुए अथवा अस्सलाम अलैकुम, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिनेंद्र, स्वामी शरण अयप्पा, जय झूलेलाल, जय माता दी, हर हर गंगे, झूले, नमस्ते और नमस्कार आदि बोलकर हम अक्सर यह रस्म निभाते हैं। परंतु अभिवादन जब दिल से किया जावे तो वह हमें न केवल आसपास से जोड़ देता है, अपितु हमें आलोकित सार्वभौम सत्ता से भी संबद्ध करता है। संत कबीर की साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। अर्थात जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, तब तक मनुष्य का अंधकार कायम रहता है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और अज्ञान दूर करने में बाधक भी। मैं अथवा अहंकार के नष्ट होते ही राग द्वेष रहित मानव आलोकित सुपात्र बन ज्ञान संजोने को प्रस्तुत होता है। अभिवादन अहंकार रहित होने की दिशा में पहली कड़ी का काम करता है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे श्री सुभाष अरोड़ा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका

पांच पांच प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। पशुओं को अफरा रोग से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, पशुओं का कभी कभी अपच या बदहजमी के कारण पेट फूल जाता है, जिसे सामान्य भाषा में अफरा कहते हैं। अफरा रोग गाय, भैंस, बकरी, जुगाली करने वाले पशुओं में प्राय हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है। अफरा में पशु के पेट में गैस, पानी और भोजन मिलकर झाग पैदा करते हैं, जो पशु के पेट में भर जाता है, जिससे पशु की शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा न करवाने पर पशु की मृत्यु तक हो जाती है। अफरा के मुख्य लक्षण, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु कभी बैठता है कभी उठता है, पशु बहुत बेचैन हो जाता है, जुगाली ठीक प्रकार से नहीं करता, पशु का पेट बहुत अधिक फूल जाता है, पेट के गड्ढे भरे हुए दिखाई देते हैं, पशु के पेट को थपथपाने पर कुछ गूंजती हुई आवाज़ आती है, पशु मलमूत्र को ठीक प्रकार से नहीं त्याग पाता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में करता है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है लेकिन तापमान सामान्य रहता है, गैस के कारण दिल और फेफड़ों पर मध्यपट द्वारा दबाव पड़ने से पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु पैरों को पटकता है, गर्दन बार बार मोड़ता है, इस परेशानी के कारण पशु मुंह से सांस लेता है, पशु कराहता है, आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। अफरा रोग पशु में प्राय वहीं पर हो जाता है जहां पर पशुओं को अधिक मात्रा में दलहनी चारे, सड़ा गला भोजन, गैस बनने वाली पत्तियों का अधिक मात्रा में उपयोग के साथ साथ पशुओं के चारे दाने में यकायक परिवर्तन कर देने से, ओस में भीगा हुआ चारा खिलाने से, अधिक मात्रा में चुनी चोकर खिलाने के बाद तुरंत पानी पिलाने से भी अफरा रोग हो जाता है। कभी कभी अलसी खाने पर भी पशुओं का पेट फूल जाता है। पशुओं को अलसी खाने से रोकना चाहिए। अफरा रोग जहाँ पर नत्रजन खादों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और उस क्षेत्र का चारा भूसा खिलाने पर भी पशुओं में अफरा रोग की शिकायत पाई जाती है। गंदा पानी पी लेने या किसी रोग के कारण पेट में कृमि होने पर भी अफरा रोग हो जाता है। इस रोग से पशु के बचाव के लिए अनाज के रूप में दी जाने वाली दाने की मात्रा और हरे चारे के अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अनाज को हमेशा दलकर और पानी में भिगोकर खिलाएं। साथ ही पशु को हिमालय 32 अथवा टिम्प्लेक्स की 40 ग्राम मात्रा प्रतिदिन पशु को दाने के साथ देना चाहिए। पशुओं को सुबह सुबह चारागाह में नहीं छोड़ना।

0: करना चाहिए, पशुओं को बाल चाटने से रोकना चाहिए। यदि पशु को अफरा रोग हो जाता है उस स्थिति में अफरा रोग से पीड़ित पशु को बैठने न दें। गैस को रूमेन से निकालना चाहिए। गैस को निकालने के लिए रूमेन में छेद करना चाहिए। गैस को निकालने के लिए ट्रॉकर और कैनोला को पेट के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद ट्रॉकर को निकाल लेते हैं और कैनोला को उसी स्थान पर लगा रहने देते हैं। पेट से कैनोला के रास्ते गैस निकलती रहती है। ये कार्य पशु चिकित्सक की देख रेख में करना चाहिए। साथ ही पशु को सादा नमक आधा पौंड, सोडियम सल्फेट आधा पौंड, पानी एक क्वार्टर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए। टिम्प्लेक्स पाउडर 40 से 50 ग्राम गुनगुने पानी में देने से अफरा रोग में शीघ्र ही लाभ मिलता है। प्लाटोसिल की 100 मिलीलीटर मात्रा बहुत ही लाभकारी होती है।
1: पशुओं को अफरा रोग से कैसे बचाएं? कार्यक्रम कृषि चर्चा में इसी विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह।

पशुओं को अफरा रोग से कैसे बचाएं, अभी कार्यक्रम कृषि चर्चा में इसी विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: सुनिए ये सूचना। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप जॉब ट्रेनिंग लेने की ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको मंत्रालय में काम करने का मौका मिल रहा है। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटर्न्स को हायर कर रहा है। नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप समर प्रोग्राम 2026 के रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। इसके लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप का ये सुनहरा मौका है। भारत सरकार की ये पेड इंटर्नशिप नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए है, जिसमें अलग अलग एरिया में आप अपनी रुचि के मुताबिक अप्लाई कर सकेंगे। जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट में पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग रोल के लिए इंटर्न्स रखे जाएंगे। इसी तरह अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन में कंटेंट राइटिंग, डिज़ाइन एंड विजुअल कंटेंट सपोर्ट, कैंपेन रिसर्च और इवेंट से जुड़ा काम होगा। इंटर्नशिप की सीटों की डिटेल्स इस तरह से है। प्रोग्राम मैनेजमेंट की 5 सीटें हैं, अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन की 2, कैपेसिटी बिल्डिंग की 2, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की 2 और प्रोजेक्ट अप्रेजल की 1 सीट है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होना चाहिए और पिछली डिग्री या सर्टिफिकेट एग्जाम में कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए होने चाहिए।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्यप्रदेशे पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति।

अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष

0: हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर सुरेश तोमर से उनकी वार्ता सुनिए, गालिब होने का अर्थ। फिल्म संगीत आप 7:30 सुन सकेंगे।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 बजे हमारे केंद्र से सुना जा सकता है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट। नागरिक सेवाओं के लिए कितना तत्पर है नगर निगम, इस विषय पर अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर प्रतीक राव से डॉक्टर विभूति सिंह की ये बातचीत सुनी जा सकती है। 9 बजे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुभाष देशपांडे का वॉयलिन पर बजाया राग देवगिरी बिलावल सुनेंगे आप।

जिले की चिट्ठी 10 बजे हम भोपाल से अनुप्रसारित करते हैं। 10:05 पर आज शनिवार के दिन आप सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम से आपको मिलेगी जानकारी कैसे बचें थायराइड और डायबिटीज से। इस विषय पर डॉक्टर सुशील शर्मा से बात करेंगी तुलिका शर्मा। 10:50 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। ग्यारह बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। सायंकालीन सभा भी मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी, जिसमें 5 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा और 7:20 पर हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकेगा। चर्चा होगी वृक्ष हमारे जीवनदाता विषय पर। बच्चों का कार्यक्रम फुलबगिया होगा, जिसमें प्रीति कुशवाहा से विज्ञान के चमत्कार विषय पर वार्ता होगी। 8 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में एक साथ होगा आयोजन। देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त, पेट्रोलियम मंत्रालय की लोगों से अपील, खपराहट में ईंधन न खरीदें। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का हुआ आयोजन। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जीडीपी का आधा हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा। और त्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव को तेल कंपनियां निगरानी और समन्वय से दूर कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े।
1: तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर वन का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहाँ आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है, वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है, अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों मंत्रालयों में 10-10 अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया, जो नागरिकों की शिकायतों की भी रोज समीक्षा करेगी। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव लेने के लिए कल ucc.mp.gov.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में इस वेबसाइट का विमोचन किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज

0: पाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसका पति समर्थ सिंह कल शाम जबलपुर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एनटीए की विशेषज्ञ मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, पुणे, लातूर समेत कई शहरों में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने लातूर के 2 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। इन पर बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदने का संदेह है। जांच में और अभिभावकों, छात्रों, बिचौलियों के नाम सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि ड्रोन से पेट्रोलिंग के जरिए बिजली लाइन ट्रिपिंग 35% कम हुई है। वहीं समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं के 473 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और 40 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बालाघाट के सांदीपनी विद्यालय वारा सिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 15 मई को जूम पर हुए लाइव फाइनल में मयंक ने 155 अंक लेकर ग्रैंड विनर का खिताब जीता। इस जीत के साथ उनका चयन सितंबर 2026 में होने वाले नासा एजुकेशन टूर के लिए हुआ है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत हर साल 20 छात्रों का चयन होता है। इस योजना में आवेदन के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में एक खास संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। वहीं कल इंदौर केंद्र के 71वें स्थापना दिवस पर मालवा हाउस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। इस बार ऑनलाइन ऐप के जरिए गणना हो रही है, जिसमें वन कर्मचारियों के साथ पक्षी विशेषज्ञ, छात्र और स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। प्रदेश में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने को लेकर कल भोपाल में हितधारक सम्मेलन हुआ। निवेशकों ने 2 लाख केस लगाने के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य पहले साल सिर्फ 10,000 केस का था। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस कल्चर के आवेदन की कोई समय सीमा न रखी जाए। सरकार कोल्ड चेन, हैचरी और फिश फील्ड के लिए सब्सिडी देगी। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। नौगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में 25 मई को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के ग्राम मामाडोह में कल हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मामाडोह पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आगरमालवा जिले के लिए प्रेक्षक कृष्णमोहन गौतम ने कल जिले सहित बड़ौद के विभिन्न वार्डों के मतदान केंद्रों के साथ ही जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। मंडला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। झाबुआ कलेक्टर ने ग्राम समोई में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल कलेक्टर ने कल खोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक लेकर विभिन्न गांवों में नियुक्त जिला अधिकारियों से ग्रामीण समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए वार्ता, गालिब होने का अर्थ। वार्ताकार हैं सुरेश तोमर।
1: मैं अपनी बात गालिब के शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। इससे एक बात तो साफ़ है और वो बिल्कुल साफ़ है कि गालिब मर नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति के तौर पर वो भले ही मॉर्टल हों लेकिन साहित्य और अपने विचार के माध्यम से वो अमर हैं, इमॉर्टल हैं। उनकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमारे बीच हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हम उन्हें भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते, वो अपने आप को भूलने नहीं देंगे। उनका जो व्यंग है वो इतना तीक्ष्ण और पैना है कि वो हमारे सपनों में भी हमारा पीछा करता है। वो तो खुद भी गाहे बगाहे अपनी श्रेष्ठता का ऐलान करते रहते हैं, कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और लोग इस बयान को उनका घमंड ना समझ लें तो साथ ही साथ ये भी कहते हैं, दोहराते हैं, रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और गालिब की शायरी की जो सबसे बड़ी बात है वो उन्हें अपने समय के बाकी शायरों से अलग करती है, वो है कि वे बहुत प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, और गज़ल का उनका जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो उससे आगे की बात कहते हैं, जिसे बाद में बहुत सारे शायरों ने, उम्दा शायरों ने जिसका अनुकरण किया है। वो है कि वे गज़ल को प्रेमी प्रेमिका संवाद, माशूक माशूका की गुफ्तगू से न सिर्फ आगे ले जाते हैं बल्कि कई बार तो उसको वो नकारते हैं। कहते हैं कदो गेसू में कैसो कोह कन की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है। मतलब ये हुआ कि मजनू और फरियाद के लिए परीक्षा की वस्तुएं आखिर में उनकी प्रेमिका के गेसू, उसका कद, उसकी खूबसूरती है, पर जहाँ तक हमारे जैसे आज़ादी के दीवानों की बात है हमारी परीक्षा तो फांसी का फंदा ही है। सालों बाद बिस्मिल आज़ादी के दीवानों में जोश जगाने के लिए गज़ल लिखते हैं, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हसरत मोहानी जो खुद आज़ादी के मोमेंट से जुड़े हुए थे पर चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जैसी ट्रेडिशनल गज़ल ही लिख रहे थे। बाद में गालिब की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया फैज़ अहमद साहब ने और वो बाद में एक नज़म लिखी, गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा। देखिए मुझे लगता है कि गज़ल की जो विधा है वो बहुत निरंतरता में किसी बात को कहने की इजाज़त नहीं देती, फिर भी आज़ादी की बात को कितनी खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं गालिब। आज़ादी नसीम मुबारक की हर तरफ टूटे पड़े हैं हल्का ए दामे हवाए गुल। मतलब ये कि हवा को जो आज़ादी है उसके लिए उसको बधाई हो, मुबारकबाद देने योग्य है वो, कि तभी तो हवा की जो आज़ादी है उसके कारण से ही हवा के जाल में फंसकर जो फूल हैं वो इधर उधर टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। जिन्हें आज़ादी रास नहीं आई वे आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी के काल के सुखों और आराम का बयान करते नहीं थकते हैं। गालिब कहते हैं न तीर कमा में न सयाद कमी में, गोसे में कफस के मुझे आराम बहुत है, न तो धनुष पर तीर चढ़ा हुआ है जो मेरी ओर इशारा कर रहा हो, ना ही शिकारी घात लगाए बैठा है। तो इस तरह की जो कैद है उसमें मुझे बड़ा चैन है, मैं बहुत आराम है। तो देखिए ये कितना बड़ा सेटायर है। अगली जो बात है वो है फ़िरका परस्ती, जिसके खिलाफ़ गालिब जब लिखते हैं तो उनका जो कलाम है वो कबीर के आगे जाता दिखाई देता है, और वो धर्म में व्याप्त कठमुल्लेपन को खारिज करते नज़र आते हैं, और उनका जो व्यंग है वो काबिले तारीफ़ है। कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। और वो कि अपना काम छोड़ के जो लोग धर्म यात्राओं पर जाते हैं तो उनके लिए भी उनका देखिए कितना तंज कसते हैं कि अपना नहीं वो सेवा के आराम से बैठें, उस दर पे नहीं बार तो काबाई को हो आए। इस धार्मिक जो कसमकश है उसको इस शेर के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे। आगे वो जो तथाकथित धार्मिक लोगों की जो सोच है, उनकी जो हिपोक्रेसी है, उसके बारे में देखिए गालिब क्या कहते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना वादा ख्वार होता। कितनी भी कठिन आध्यात्मिक या दार्शनिक विषय की जो समस्या है, गालिब का जो उस पर बयान होता है या गालिब का जो विश्लेषण है उसका कोई जवाब नहीं है, वो संपूर्ण है अपने आप में। इसके आगे एक और शेर है कि हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। तो यहाँ वो बेहद प्रासंगिक और आधुनिक अवधारणा को स्थापित करते नजर आते हैं, और वो है आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसकी अमर सेन जैसे आधुनिक विचारक न सिर्फ वकालत कर रहे हैं बल्कि नए सिरे से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। काश उनकी नज़र भी गालिब पर पड़ती तो उनकी व्याख्या और सार्थक हो सकती थी कि अंततः किसी गुनाहगार को की सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए जितना कि उसका गुनाह हो। वो कहते हैं कि मैं काफिर नहीं हूँ, तो इसके मायने हैं कि वे मानवतावाद को अपना धर्म मानते हैं और इस हिसाब से वो काफिर नहीं है। और जब वे कहते हैं कि वली पोसीदा और काफिर खुला हुआ, तो वे काफिर के रेफरेंस में उस मजहब के खिलाफ हैं जो फ़िरका परस्ती सिखाता है। अब देखिए कितना संघर्ष होगा उनकी ज़िंदगी में, कितना बरूद झेलना पड़ा होगा उनको कि कहना पड़ा या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। मतलब जमाना मुझे क्यों मिटाने पर तुला हुआ है, क्योंकि ये जो दुनिया के जो पृष्ठ हैं उन पर मैं हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ। वो आगे का एक शेर इसमें ये भी है कि माना के मुस्तखाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इस पूरे विरोध के बावजूद भी उनका खतरे उठाने का जो जज्बा है वो मंद पड़ते नहीं दिखता। उनका लिखना और बेगैरत लोगों पर तंज कसना, व्यंग करना जारी रहता है। वो तो आपने सुना ही होगा जौक साहब, जो अपने ज़माने के बड़े शायर थे और उस समय शायरे आज़म थे बहादुर शाह जफर के दरबार में। पर एक बार एक नुक्कड़ से जौक साहब की पालकी निकली और उस नुक्कड़ पर गालिब की महफिल जमी हुई थी। जौक साहब को देखकर गालिब ने एक फिक्रा कसा, बने सह का मुसाहिब फिरे है इतराता। इतना सुनते ही जौक साहब की भवें लाल हो गईं। उन्होंने बहादुर शाह से गालिब की जाकर शिकायत कर दी और अगले दिन आ गया बादशाह का बुलावा कि गालिब दरबार में पेश हों। गालिब से उनकी इस धृष्टता का कारण पूछा गया तो गालिब ने बड़े ही सहजता से जवाब दिया कि जौक साहब गलत समझ रहे हैं, वो तो मेरे शेर का पहला मिसरा था। और जौक साहब पूरा शेर सुने ही वहाँ से चले गए। जफर ने कहा तो बताइए शेर को पूरा कीजिए। गालिब साहब ने अपना शेर वहीं पूरा कर दिया कि बने है सह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि गालिब की शायरी में कमाल की उद्धरणीयता है, कमाल की कोटेबिलिटी है, और उनके शेर आज भी उतने ही मौजूद हैं जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो। गालिब की जो शायरी है कि दायरे से बाहर नहीं है। जैसे एक शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब देखिए दुनिया में कौन है जिसकी ज़िंदगी में एक आर ऐसा अवसर नहीं आया हो जहाँ उसको बड़े बेआबरू होकर किसी कूचे से निकलना पड़ा हो। और उनका जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर, अपने साहित्य के ऊपर, अपनी शायरी और अपनी समझ के ऊपर, तो वो कहते हैं कितने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। कि ये जो दुनिया है वो बच्चों का खेल है उनके सामने, और ये रात दिन ये तमाशा जो है ना वो मेरे सामने हो रहा है। पर इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्हें किसी तरह का कोई घमंड है। दूसरी तरफ उनकी जो विनम्रता है उसको भी देखिए, वो कमाल की है। वो कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, मतलब हमको किस चीज़ का ज्ञान था या हम किस हुनर में संपूर्ण थे। बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमा अपना। तो इस तरह का के जो गालिब के की जो शायरी है, उनके जो शेर हैं, वो हमारे ज़िंदगी में रोज़ ऐसा लगता है काम में आते हैं, कहीं ना कहीं प्रासंगिक हैं। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि गालिब उन महान अमर रचनाकारों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्हें पढ़ते रहना, गुनते रहना दुनिया के तमाम पढ़ने वालों के लिए एक अनुष्ठान जैसा है।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: अलका याग्निक और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म तेजाब में। गीत जावेद अख्तर का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है राजा।

अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों को सुनते हैं फिल्म त्रिदेव में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार बप्पी लहरी, आवाज़ अनुपमा देशपांडे की है और फिल्म का नाम है सैलाब।

0: इस गीत के साथ ही
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
9: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडर और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।

0: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स

0: while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
1: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night, chasing a massive target of 256 runs set by SRH. RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
2: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. Six Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Put In Meat, A New Axis in the Making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं सुनिए, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट। नागरिक सेवाओं के लिए कितना तत्पर है नगर निगम, इस विषय पर अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर श्री प्रतीक राव से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। इस सीरीज में आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं ग्वालियर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के प्रतीक राव। आप शहर की स्वच्छता, सड़कें, कर, नागरिक सुविधाएं और सीएम हेल्पलाइन जैसे मुख्य मुद्दों को सीधे तौर पर देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जानते हैं शहर में स्वच्छता की स्थिति क्या है। प्रतीक जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी थैंक यू।
3: जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत समय नहीं हुआ आपको पढ़ाई छोड़े हुए, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में, स्कूलिंग के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में।
4: जी मेरी स्कूलिंग मध्य प्रदेश में ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट हुई है, अलग अलग शहरों में। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उस कारण से हमारे ट्रांसफरेबल जॉब था उनका, और ग्वालियर में भी खासतर मेरी 3-4 साल की स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया था कर्नाटका में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सूरतकल में
3: जी।
4: और उसके बाद फिर मैंने MBA किया था IIM कलकत्ता से 1 साल। फिर मैंने उसके बाद नौकरी करी, क्रिसिल नामक एक कंपनी है बॉम्बे में, उनके साथ में काम कर रहा था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज जो है वहाँ मेरा रुझान ज़्यादा है और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और फिर अटेम्प्ट करने के बाद पहले मेरा रेलवे सर्विसेज में हुआ था, रेलवे ट्रैफिक सर्विस में, और फिर उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं 2021 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मेरी देवास में ट्रेनिंग हुई 1 साल ITRC में, उसके बाद मेरी पदस्थापना थी एज एन SDM, तो वहाँ पे मैं 1.25 साल का कार्यकाल रहा मेरा, और उसके बाद फिर मैं अब ग्वालियर में एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पर पदस्थ हूँ।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष कम्प्लीट हो रहे हैं
4: जी,
3: कुछ बोलना चाहेंगे? आपका जो रेडियो के साथ इंट्रोडक्शन था या आकाशवाणी के साथ कुछ मेमोरीज हैं अगर तो प्लीज़ शेयर करिए।
4: नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली है आकाशवाणी, एवं जो न्यूज़ आती है मॉर्निंग न्यूज़, तो मॉर्निंग न्यूज़ में सुना करता था क्योंकि
3: प्रिपरेशन के दौरान
4: जी। ऑल इंडिया रेडियो के जो चैनल्स हैं उसको भी मैं सुना करता था, और क्योंकि उससे बेहतर आपके डे की शुरुआत नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत ही कंसाइज, बहुत प्रिसाइज न्यूज़ मिलती थी उसमें,
3: फैक्चुअल।
4: और UPSC के सिलेबस से रिलेटेड, देश दुनिया से रिलेटेड आपको छोटी छोटी सुर्खियों में सारी चीज़ें मिल जाती थी, और फिर जब आप उसको दिन में किसी और फॉर्म में पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में या कहीं, तो आप कोरिलेट कर पाते थे। तो आई थिंक मेरा जुड़ाव तो उस समय से रहा है। और ऑफकोर्स आकाशवाणी एक ऐसी चीज़ है कि हम सुनते आए हैं बचपन से, कि इट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन लोगों के लिए। तो आज तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अब आके बात कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म को हम सुनते हैं।
3: ये बहुत अच्छा संदेश है और आपका, हमें भी सुन के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज पूरा मौका है, आप थैंक यू भी बोल सकते हैं।
4: नहीं नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर आकाशवाणी टू एग्जिस्ट, और जितना लोगों को देश के कोने कोने तक आपकी बात पहुँचती है, तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आपके माध्यम से हो रहा है।
3: चलिए अब हम अपने सवालों पे आते हैं। CM हेल्पलाइन, नगर निगम हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल जैसे कई साधन हैं लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के
4: जी,
3: तो एक आम नागरिक को सबसे पहले कौन सा जरिया इस्तेमाल करना चाहिए?
4: देखिए, अगर आम शिकायत है जो नगर निगम से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से CM हेल्पलाइन बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसकी सतत मॉनिटरिंग रहती है। कम से कम मिनिमम 1 हफ्ते में 2 बार उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है कमिश्नर साहब द्वारा, और फिर बाकी एडिशनल कमिश्नर्स और HODs भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा यदि स्वच्छता से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो स्वच्छ ग्वालियर ऐप है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, और इस साल हमने उसको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करके वापस से उसको रीलॉन्च किया है। तो आई थिंक स्वच्छ ग्वालियर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 21 कैटेगरीज हैं कचरे से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कचरा गाड़ी टाइम पर नहीं आई, कचरे में कोई आग लगा रहा है, कहीं कचरे के ढेर बने हुए हैं, तो आप सीधा एक सिंपल सा फ़ोटो खींच के उस ऐप पे डाल सकते हैं। और उसमें हमने 2 दिन का 48 आवर्स का ड्यूरेशन रखा है, जिसमें हम टारगेट करते हैं कि हम आपको सोल्यूशन रिजॉल्व करेंगे।
3: काफ़ी लोगों का ये कहना है, जैसा कि फीडबैक है, वो ये है कि कॉल करो तो जवाब नहीं आता, ऐसी स्थिति हो तो शिकायत करने के बाद जो अगला कदम है वो

0: कैसे आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं?
1: देखिए, इसमें तो जो मैंने आपको ऐप का माध्यम बताया वो इजी इसलिए है बिकॉज जैसे आपने उसमें फ़ोटो डाली तो जैसे ही रिजॉल्व होता है उसमें मैंडेटरी है कि उस लोकेशन जहाँ की शिकायत आई है उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हम फोटो वापस डालें। तो जो संबंधित है, मान लीजिए सामने कचरा है और आपने फ़ोटो खींच के डाली, तो मैंडेटरी है कि वो शिकायत उसी वक्त बंद होगी जब उसमें एक क्लीन जगह का फ़ोटो उसी लोकेशन का डलेगा। तो नागरिक को उससे बहुत क्लैरिटी रहेगी कि ये चीज़ हुई कि नहीं हुई। और जहाँ तक सीएम हेल्पलाइन का मैटर है तो बहुत बार ये होता है कि नागरिक हमसे जन सुनवाई में आकर भी मिलते हैं, डायरेक्ट आकर भी मिलते हैं कि हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तो वो भी एक माध्यम है कि हमको एक फीडबैक मिलता रहता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर शायद उतने प्रोएक्टिवली शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो फिर उस अधिकारी कर्मचारी को बुला के हम समझाइश देते हैं कि आप इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें और सीएम हेल्पलाइन जो है नागरिकों की शिकायत जो है उसका जो निवारण है वो पहले होना चाहिए।
0: बिफोर और आफ्टर का ये फीचर है, ये आपने अभी ऐड किया है? इस पे
1: ये अभी ऐड हुआ है जी,
0: जब रीलॉन्च किया गया
1: जी।
0: स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बताएं, नगर निगम क्या खास तैयारियां करता है इसके लिए? जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन आपका ये तो ऑलरेडी है, आप ओपन डिफिकेशन पे भी काम करते हैं, सिटीजन सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, क्या मुद्दे आप एक्चुअली टारगेट करते हैं?
1: देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण एक ओवरऑल सर्वे है कि आपने साल भर में स्वच्छता में क्या काम किया है, और उसका एक स्नैपशॉट में वो सर्वे करते हैं करीब 8 से 10 दिन 15 दिन में कि आपकी कितनी तैयारियां हैं, पिछले साल से अब तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। उनके जो मुख्य बिंदु रहते हैं बेसिकली दृश्य स्वच्छता पे रहते हैं कि विजिबल क्लिनलीनेस कितनी है, शहर में कहीं गार्बेज पॉइंट्स नहीं दिखने चाहिए, हर वार्ड की एक प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल में 8-10 बिंदु रहते हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़, कुछ कमर्शियल एरियाज़, कुछ कम्युनिटी टॉयलेट्स रहते हैं, कुछ पुराने गार्बेज पॉइंट्स रहते हैं जिनको हमने क्लियर करके ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये सारी वार्ड प्रोफाइल को एक एक बिंदु को जाके वो टीम चेक करती है, और एंड में जो है हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग है, जो लेगेसी वेस्ट हमारा है जो केदारपुर पे एक हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बना हुआ है, उसको जाके चेक करते हैं कि वहाँ की प्रोसेसिंग जो हम रिपोर्टिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग कितनी सही है और कितने प्रॉपरली हम प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं कचरे का। आखिरी बिंदु है सिटीजन फीडबैक, जिसके 10% मार्क्स हैं। सिटीजन फीडबैक में बेसिकली पहले तो ऑनलाइन फीडबैक भराया जाता है जो अभी चल रहा है, करीबन 60,000 लोगों ने फीडबैक भर दिया है ग्वालियर में, और फिर एक उसका सिटीजन वैलिडेशन होता है कि जब टीम अब ग्राउंड पे आएगी तो जिन सिटीजन ने फीडबैक भरा है उनका फ़ोन नंबर उनके पास रहता है, उनको कॉल करके पूछा जाता है कि एक्चुअल में आपने जो फीडबैक भरा है वो सही है कि नहीं है, और फीडबैक में कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपके आसपास क्लिनलीनेस है, गाड़ी टाइम पे आती है कि नहीं आती है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे फाइनली फिर रैंकिंग बनती है, और हमारी पिछले साल 14वीं रैंक थी, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 10 में हमारा शहर आए, बहुत अच्छा होगा यदि हम टॉप 5 में ब्रेक इन कर पाएँ। तो
0: हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ में, लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला है कि जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तब तो सब कुछ ठीक दिखा दिया जाता है और बाद में वही समस्याएं वापस एग्रीवेट हो जाती हैं, आप भी एग्री करते हैं क्या?
1: मैं पूर्णतः एग्री नहीं करूंगा इसमें। जनरली एक परसेप्शन रहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को चमका दिया जाता है और उसके बाद फिर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर हमारी टीम जो है पिछले 6-7 महीने से इसी चीज़ पर काम कर रही है कि जो हम काम करते हैं वही दिखे एट द एंड ऑफ द डे। तो यदि हम रेगुलर क्लीनलीनेस रखते हैं तो फिर हमको स्वच्छ सर्वेक्षण में अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अगर आदतन अपने एरियाज़ को, वार्ड्स को क्लीन रखते हैं, जो हमारी पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, उन चीज़ों को क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ज़रूर है कि जब टीम आ रही होती है तो हर बार हम कुछ ब्यूटिफिकेशन करते हैं, एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि वॉल पेंटिंग्स होती हैं, बहुत जगह पर पुराना लेखन होता है कि आप पे दंड लगेगा, जो जुर्माना लगेगा, खुले में ना थूकें, रेड स्पॉट्स ना बनाएं, तो वो ब्यूटिफिकेशन वाला काम जो है वो सर्वेक्षण के पहले हम ज़रूर करते हैं, और बहुत जगह हम होर्डिंग्स लगवाते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो ये ब्यूटिफिकेशन वाले एस्पेक्ट को देख के मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये फीलिंग आती होगी कि जब टीम आती है तब आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पर वो ज़्यादा एक्टिव वाली बात नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा कि यदि हम घर में रोज़ साफ रखते हैं अपने घर को और किसी दिन आपके घर में शादी है तो शादी वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा ग्लैमर रहता है। तो वो वैसा ही सिस्टम है कि हम थोड़ा सा अपने शहर को और अच्छा दिखाने के लिए
0: जी
1: उसको ब्यूटीफाई करते हैं।
0: स्पेशल गेस्ट आते हैं तभी भी सफाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। तो मैं लोगों को जोड़ना चाहूँगा कि नगर निगम के कार्यों में, स्वच्छता के अभियानों में जुड़ें अपने साथ। सर्वेक्षण में जैसे मैंने बताया कि सिटीजन फीडबैक के 10 मार्क्स रहते हैं, 10% मार्क्स रहते हैं, और उसमें जनता से हम अभी फीडबैक करा रहे हैं। हमने नगर निगम के सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल हैंडल्स पे जो हैं QR कोड शेयर कर दिए हैं जिसको स्कैन करके आप फीडबैक भर सकते हैं। बहुत सिंपल सा 13 प्रश्न का फीडबैक है, और जैसे मैंने बताया कि अगर हम शहर के बारे में पॉजिटिव फीडबैक भरते हैं तो रैंकिंग बेहतर होती है उससे शहर की।

0: और जनता से जब ग्राउंड पे टीम आएगी तो बहुत सारे रैंडम लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कॉल करके भी और फिजिकली भी कि आपके आसपास की स्वच्छता कैसी है, गाड़ियाँ टाइम पे आती हैं कि नहीं आती हैं। तो इसमें जितना भी हम पॉजिटिव फीडबैक उस टीम को दे सकें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको शहर को अच्छा दिखाना है, पर इसलिए भी कि शहर की रैंकिंग यदि बढ़ती है, आपके शहर की इमेज बनती है, अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग्स आती हैं तो पूरा देश नोटिस करता है कि अच्छा ये कोई एक शहर है जो टॉप 10 में है, ग्वालियर एक शहर है जो पहले 14वें रैंक पे था, अब टॉप 10 में शायद आ गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन सिटीजन से हमको मिल सकता है कि वो अच्छा फीडबैक दें।
1: बहुत संवेदनशील मुद्दा है महिला सुरक्षा का
0: जी,
1: जैसे कि पार्क्स हैं, बस स्टेशंस हैं, सड़कें हैं या और भी अंधेरी गलियां जैसे हमारे शहर में हैं, तो उन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नगर निगम कोई कदम उठा रहा है क्या?
0: दो चीज़ें हैं, पहला तो लाइटिंग, जो बहुत सारी स्टडीज़ ये बोलती हैं कि अगर लाइटिंग प्रॉपर हो तो जनरली शहर में क्राइम्स कम होते हैं। सुरक्षा के बिंदु से प्रॉपर लाइटिंग इज़ वेरी
1: उजाले को जोड़ा जाता है सुरक्षा के एक मापदंड के।
0: तो पिछले दिनों ही, मतलब पिछले 3-4 महीने से कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में जो है एक एनर्जी ऑडिट भी कराया गया, सारी लाइटें जो हैं उनको ठीक करवाया गया है। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि कहीं भी रात को ऐसे एरियाज़ ना हो, स्पेशली कमर्शियल एरियाज़ या जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ लाइट की दिक्कत ना आए, स्ट्रीट लाइट आपकी चालू हो। जो नगर निगम के पार्क्स हैं वहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर कि उन पार्क्स में लाइटिंग प्रॉपर हो, बिकॉज रात को बहुत बार असामाजिक तत्व वहाँ आके बैठते हैं, ऐसी रिपोर्टें आती हैं, तो उस माध्यम से हम चाहते हैं कि वहाँ पे रहे। इसके अलावा जो हमारा IEEE कंट्रोल सेंटर है स्मार्ट सिटी में, वहाँ से हम कैमरों से मॉनिटरिंग अभी करना शुरू कर रहे हैं, और ना सिर्फ सेफ्टी के लिए, हमारा प्लान ये भी है कि जहाँ जहाँ गार्बेज पॉइंट्स हैं उनको भी कैमरे से मॉनिटर किया जाए, ताकि हम डायरेक्टली पकड़ पाएं कि कौन व्यक्ति जो है रात में आके कहीं कचरा फेंक रहा है। ग्वालियर में एक बहुत वृहद समस्या है कि गोबर बहुत लोग फेंकते हैं, और जनरली क्योंकि रात को ही फेंकते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में हम लोग विजिलेंट रहते हैं तो रात को लोग फेंकते हैं। तो करीबन 100 कैमराज हैं जिनको हम एक्टिव करना चाह रहे हैं, और होपफुली विद इन अ मंथ हम इसको कर लेंगे। तो उससे थोड़ी सी ये रहेगा कि रियल टाइम हमको फीडबैक मिलेगा, और कुछ जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पकड़ उन पे चलानी भी करी जाएगी, और पॉसिबल होगा तो हम नेम एंड शेम भी करेंगे उनको,
1: तो दूसरे लोग भी उस चीज़ से बचेंगे।
0: जी, जी।
1: अगर कोई महिला किसी रोड साइड अवैध दुकान की शिकायत करे
0: जी,
1: तो उसको गंभीरता से लेने का कोई है आपके पास तरीका?
0: देखिए, जो हमारे पास शिकायतें आती हैं अलग अलग माध्यम से आती हैं,
1: मैं इसलिए पूछूं क्योंकि ये अवैध दुकानें हैं और ये भी एक तरह से अड्डे होते हैं
0: जी,
1: जहां
0: जी,
1: पर जहां से महिलाओं के लिए जो असुरक्षा है
0: जी,
1: वो वहां से ओरिजिनेट होती है।
0: देखिए, अभी जेंडर कैटेगराइजेशन तो हम लोग नहीं करते हैं कि किससे शिकायत आ रही है, बिकॉज हमारे पास शिकायतकर्ता का नाम ज़रूर आता है, फ़ोन नंबर भी आता है अगर वो CML पैन में शिकायत कर रहे हैं तो, पर डायरेक्टली हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कि महिला की शिकायत है या पुरुष की शिकायत है या किसी और की
1: जी।
0: पर आपसे सुझाव आया है तो मे बी वी कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन, तो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, यदि कोई डायरेक्टली अप्रोच करता है हमको ऐसे, या कोई महिला संगठन है जो आके अपनी बात बताना चाह रहा है, तो हम ऑलवेज उनको वेलकम करेंगे, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए।
1: आपदा प्रबंधन के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं, बारिश बहुत हो गई, बाढ़ आ गया, आजकल हीट वेव की समस्या है शहर में, तो इनके लिए भी कोई तैयारी करता है क्या नगर निगम?
0: बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी आई थिंक लास्ट ईयर जो हमने आपदा झेली थी, जो अर्बन फ्लडिंग का इशू था अतिवर्षा के कारण, तो इस बार पहले से ही प्लानिंग कराई गई है, सारे सीवर चेंबर्स क्लियर कराए जा रहे हैं, सीवर लाइंस को मेक श्योर किया जा रहा है कि उसमें क्लॉगिंग ना हो, और बड़े जो नाले नालियाँ हैं जो हमारे स्टॉर्म ड्रेन्स हैं जिनसे पानी बाहर निकलता है, उनकी निकासी मेक श्योर करी जा रही है कि एक तो ये ड्रेन्स क्लीन हो बारिश के पहले, हम बारिश तक रुके ना ताकि वो वहाँ पे चोक ना हो, और इनके जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, पानी जहाँ से आ रहा है और जहाँ से निकल रहा है उनको फ्री फ्लो रखा जाए ताकि पानी बीच में कहीं इकट्ठा ना हो। आपने हीट की बात करी तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक 12 शहरों को चिन्हांकित किया गया है अर्बन हीट प्लान बनाने के लिए, उसमें से ग्वालियर भी एक शहर है, और इसके लिए हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है वो कुछ फंड्स भी देगी। कुछ इंटरवेंशंस अभी हमको करके उनको दिखाने हैं, जैसे कि अभी हमने शुरुआत करी है, एक वाटर मिस्ट का टावर लगाया पड़ाव चौराहे पे हमने, कुछ जगहों पे बस स्टॉप्स पे और बस स्टैंड पे हमने टाट के पट्टिये लगाए हैं जिनसे थोड़ा सा हीट अंदर नहीं आती, कोशिश रहती है कि उनको दिन में 2 बार छिड़काव किया जाए उन पे। हमने बहुत जगहों पे ग्रीन नेट लगवाए हैं चौराहों पे, जिनसे जो रहवासी रुकते हैं या जो ट्रैवलर्स हैं वो रुकते हैं सिग्नल पे, अभी कुछ जगह पे वो डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ बीच में वर्षा हुई थी उससे, तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में उसको फिर से हम ठीक करा लें। और ये भी प्लान है कि जो ये फ़ंड आएंगे हमारे पास तो कुछ चौराहों पे हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनवाएं, ये नहीं कि सिर्फ अभी के लिए हम ग्रीन नेट लगा रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो बारिश में भी हेल्प

0: करेगा, हमको गर्मी में भी हेल्प करेगा, और आंधी तूफान टाइप की सिचुएशंस रहेगी तो उसमें भी जो नीचे स्पेशली टू व्हीलर्स वाले रहेंगे उनको हेल्प रहेगी।
1: प्रतीक जी, एक बहुत बहुत सामान्य सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ हमारे नगरवासी हैं उनकी तरफ से, कि अगर लोगों को लगे कि कहीं क्लॉगिंग है नाली में, कोई ड्रेनेज है या पानी भर

0: एक ही सारी जगह हम उनके नंबर्स लिखवा दे रहे हैं, अभी बहुत वार्डों में हुआ भी है। यदि उनसे आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो जो हमारा ऐप है उसका इस्तेमाल करें, बिकॉज इमीडिएट विजिबिलिटी रहती है, हम लोग रोज उसको चेक करते हैं।
1: स्वच्छ ग्वालियर ऐप,
0: स्वच्छ ग्वालियर ऐप, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स उसमें शायद आएगा, क्योंकि जब सीएम हेल्पलाइन पे आती है नीचे वाले कर्मचारी ने देखा एक दो दिन में रिव्यू हुआ, तो मेरा तो ये रहेगा कि जो ग्राउंड पर्सनल है उनको पहले अप्रोच करें, और यदि नहीं है तो जैसे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं पार्षद भी एक्टिव रहते हैं, पार्षद जी, तो उनसे भी आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तो वो जनरली नीचे कर्मचारियों को जानते हैं जो जेडो रहते हैं, वार्ड ऑफिसर्स रहते हैं, पीएचई विभाग के जो उपयंत्री रहते हैं फील्ड में, उनकी जानकारी उनको रहती है। तो फास्टेस्ट वे टू रीच इज़ ग्राउंड पर्सनल, और अगर उनसे रीच नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ऐप के माध्यम से रीच करें, और हम शायद एक कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश करेंगे तो उसका नंबर शेयर कर दिया जाएगा, तो आई थिंक जब वो हो जाएगा तो फिर कंट्रोल रूम को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं।
1: पार्षदों के आपने बताया कि एक्टिव रहते हैं, तो कुछ समय पहले पब्लिक डोमेन में एक वीडियो आई थी जो नगर निगम के किसी मीटिंग की ही थी। आमतौर पर मतभेद बहुत सामान्य बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग चल रही है तो मतभेद बहुत सामान्य बात है, लेकिन शारीरिक रूप से जोर आजमाइश पर उतारू थे वो नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में जो पार्षद हैं। क्या माना जाए, आम जनता क्या समझे कि नगर निगम में कोई ऐसे मतभेद हैं जो बातचीत से सुधरने की अब गुंजाइश नहीं है?
0: मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मतभेद, प्रशासनिक मतभेद नहीं होता है जिसको बात करके सुलझाया नहीं जा सकता। कभी कभी इन द हीट ऑफ द मोमेंट आवेश में लोग आके कुछ कृत्य कर जाते हैं, पर उसको आई थिंक हमको एज एन एक्सेप्शन देखना चाहिए रादर देन अ नॉर्म। वो नॉर्मेलिटी नहीं है। जनरली कोऑर्डिनेशन से ही काम किया जाता है। कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि जनता के प्रतिनिधियों को रोज़ जनता की सुननी पड़ती है। हम शायद उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं आम जनता से जितना एक पार्षदगण करते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास शिकायतें डेली बेसिस पर आती हों जो हमारे पास शायद वीकली बेसिस पर आती हों। और मेरा ये मानना है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो जनता की सेवा ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपसी मतभेद प्रोफेशनल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको प्रोफेशनली सॉल्व किया जा सके, अगर कुछ चीज़ रूल्स के अंदर करी जा सकती है तो बिल्कुल हमको आगे आके करना चाहिए, और जब नहीं करी जा सकती तो हमको बता भी देना चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द डे गोल ये होना चाहिए कि जो सॉर्ट आउट होके जो रिजल्ट निकलना है वो जनता के फेवर में हो। तो आई थिंक अगर दोनों लोग वो मानसिकता रखते हैं, और जनरली रखते भी हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-6 महीने में, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। कुछ जगहों पे वाद विवाद या मतभेद रहते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
1: आपने फंड की भी बात करी, एक ओवरड्राफ्ट लिया गया
0: जी,
1: कितना राशि है उसकी आप बताएंगे हमें?
0: अब एग्जैक्ट राशि तो मेरे अभी संज्ञान में,
1: मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद 15 करोड़ या
0: जी लिया गया होगा, मतलब एग्जैक्ट राशि में।
1: तो फंड्स की समस्या भी है नगर निगम में?
0: फंड्स देखिए, अभी जो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं, उतने ही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी टैक्स में यदि हम जाएं तो करीब 45% लोग हैं ग्वालियर में जो अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं। करीब 8-10% लोग हैं जिन्होंने शायद एक भी बार आज तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। तो जब ऐसे सिचुएशंस रहती हैं तो जो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो इफेक्ट होते हैं। ओवर द ईयर जो हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं उनको भी रैशनलाइज किया जाता है, बिकॉज आत्मनिर्भर निकाय बनाने की बात हो रही है, तो द यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी जो है उसको अपने सोर्सेज ढूंढने, बेसिक सोर्सेज प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, हम कुछ नए कंस्ट्रक्शंस करके अगर उनको बेच रहे हैं तो वो होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो वो होते हैं। और फ्यूचर में प्लानिंग ये है कि अब जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं अगले 4-5 साल में, सो वी आर सीइंग अ गुड रेवेन्यू स्ट्रीम कि वहाँ से आएंगे। अभी बीच में क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, अल्टीमेटली सेल्फ फुलफिल्ड अगर निकाय बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, तो आई थिंक हम उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत फंड्स की दिक्कत रहती है, बट इवेंचुअली आई थिंक वी विल डू बेटर।
1: कार्य होते रहेंगे,
0: कार्य तो बिल्कुल होते रहेंगे,
1: फंड्स की कमी से काम नहीं रुकेगा।
0: बिल्कुल नहीं, फंड्स की कमी से काम नहीं रुकेगा, और इसके लिए आई थिंक प्रशासन और स्टेट लेवल पे भी लोग अवेयर हैं कि अगर कुछ क्रिटिकल वर्क्स हैं तो उसके लिए फंड जरूर वहाँ से रिलीज भी किए जा रहे हैं, और लगातार अलग अलग योजनाओं में, जैसे अब द्वारका नगरी योजना आई है तो उसमें रोड्स के लिए फंड आ रहे हैं।
1: आप नगर निगम के लिए काम करते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण अहदे पर हैं, और सफाई करने वाले के साथ ये बड़ी समस्या होती है कि अस्वच्छता से उसको बहुत डील करना पड़ता है
0: जी।
1: हर तरह की, हर पक्ष की, क्या अनवाइंडिंग प्रोसेस क्या होता है जब आप बैक टू होम?
0: मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने दिन में निकालना चाहिए, जो आपका मी टाइम हम बोलते हैं। मेरे लिए वो कोई भी स्पोर्ट या जिम जाना होता है, तो उस 1 घंटे में कुछ और नहीं सोचता हूँ। तो क्योंकि माइंड शट ऑफ रहता है, आप पसीना बहा रहे होते हैं तो आपको और कुछ ध्यान नहीं रहता है। उसके अलावा जो आपकी हॉबीज़ हैं उसमें इंडल्ज कर लेना चाहिए, जैसे मेरे लिए म्यूज़िक है और गिटार बजाना है, तो जब आप

0: म्यूज़िक या गिटार प्ले कर रहे होते हैं तो बाहर की दुनिया शट ऑफ हो जाती है, आप अपने एक अलग जोन में रहते हैं। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है वो। जब तक फैमिली के साथ आप अपने इश्यूज शेयर नहीं करते हैं, दिन में क्या हुआ, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये सारे डिस्कशंस भी यदि होते हैं तो आपके मन की चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो अनवाइंडिंग के लिए आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करने की कोशिश करता हूँ
1: पर्सनली।
0: जी,
1: गाने सुनते हैं आप?
0: गाने सुनता हूँ, टाइम कम मिलता है पर लेकिन बिल्कुल कोशिश करता हूँ।
1: जब प्रिपरेशन करते थे तब खूब सुनते थे?
0: तब जरूर सुना करते थे।
1: ये आप अपनी पसंद का कोई गीत हमें बताइए जो हम आपको सुनवा सकें।
0: अच्छा, पसंद का गीत आई थिंक एक पुराना गाना है जो मैं बहुत बार सुनता हूँ, एक अभी ना जाओ छोड़कर एक सॉन्ग है जो काफ़ी मैंने सुना है और काफ़ी मेरे दिल के करीब।
1: देवानंद जी।
0: जी जी जी
1: जी, हम बिल्कुल सुनवाएंगे आप।

0: आज इस पॉडकास्ट के अंतिम प्रश्न तो नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको कुछ संदेश अगर देना चाहें तो क्या संदेश देंगे?
1: मैं संदेश दो पार्ट में दूंगा। पहली तो अप्रोचेबिलिटी पे कि नगर निगम और प्रशासन जो है वो हमेशा आपके लिए सर्विस करने के लिए आतुर है, और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी को ये लगे कि अप्रोचेबिलिटी नहीं है, हम किसी अधिकारी से मिल नहीं सकते, चाहे वो कमिश्नर साहब हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे आसपास के या नीचे के कितने भी अधिकारी हों, उन सब से अप्रोचेबिलिटी बहुत ओपन है। और आज के डेट पे मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग हमसे दिन में मिलने को आते हैं, हम मिलते हैं उनसे, तो अपने सुझाव ज़रूर आकर या अपनी परेशानियाँ ज़रूर आकर हमको डायरेक्टली बताएं, अगर आपका CM हेल्पलाइन या बाकी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के मेथड्स हैं उनसे आपका सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है तो। और दूसरा मैसेज ये रहेगा कि मैं बहुत बार सुनता हूँ ग्वालियर में, और आई डोंट नो इस प्लेटफॉर्म पे बोलना सही है कि नहीं है,
0: प्लीज़,
1: जनरली ग्वालियर की जनता में ये भाव मुझे दिखता है या लोग बोलते हैं कि इस शहर में कुछ नहीं हो सकता या इस शहर का कुछ नहीं हो सकता,
0: यहाँ ऐसा ही होता है
1: या ये तो ऐसे ही चलता है। तो वो जो एक स्टेटस क्वो वाली फीलिंग है, लोग चाहता हूँ कि वो बदले। ग्वालियर एक हिस्टोरिकल शहर है, सिटी ऑफ म्यूजिक है, मैं खुद इस शहर से पढ़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये वो शहर बने जो अपने आप में प्राउड हो, डेवलप्ड हो और ट्रांसफॉर्मेटिव हो। तो ये फीलिंग लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं मैं चाहूंगा कि ग्वालियर को इस तरह ना देखें कि इस शहर से हमारा लेना देना नहीं है, हम यहाँ कुछ टाइम के लिए हैं या यहाँ से बाहर निकल जाएंगे
0: जी।
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण शहर है, एक हिस्टोरिकल शहर रह चुका है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है अपनी, उसको यदि हम आज इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कल को शायद हम और शहरों से पीछे छूट जाएं। तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम पीछे छूटें, अभी भी हमारे में ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, और कम से कम कोई बाहर से व्यक्ति आए तो वो ग्वालियर को इस तरीके से याद रखे कि अच्छा मैं ग्वालियर गया था, बहुत सुंदर शहर था, बहुत हिस्टोरिक शहर तो है ही, फोर्ट है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा तो है ही, पर साफ सुथरा भी था और लोग अच्छे थे, लोगों ने वेलकम किया और हम एक अच्छी फीलिंग लेके गए। तो आई थिंक ये मेरा मैसेज रहेगा
0: जी। बिल्कुल, आपकी इस बात से हमारे श्रोता भी ज़रूर अग्री करेंगे कि पोटेंशियल आप में कहाँ, संभावनाएं इस क्षेत्र में बहुत हैं
1: जी।
0: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी ढेर सारी बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में अभी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे थे, नागरिक सेवाओं के लिए कितना तत्पर है नगर निगम। इस विषय पर अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के प्रतीक राव से बात कर रही थीं डॉक्टर विभूति सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो नागरिकों की शिकायतों की रोज समीक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। IPL में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और प्रदेश में भीषण गर्मी है, मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। कार्यक्रम का नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। तो ग्वालियर वालों की सुबह तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन ग्वालियर के साथ साथ हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है उन सब की सुबहें जो हैं वो खूबसूरत हों। लेकिन आजकल हमारे शहर की सुबहें खूबसूरत हों या ना हों, गर्म हैं ये तो तय है। हालांकि इस समय चूँकि 9 बज रहे हैं, लगभग हर जगह की सुबहें गर्म होनी शुरू हो गई होंगी। ये जो गर्मी का बढ़ता हुआ प्रकोप है, इसमें हमें थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। कहाँ ठहरना है ये हमें तय करना है। श्रोता साथियों, हम आपको बताएं कि इस समय हमारे देश का एक शहर है जो बड़ी चर्चा में बंधा हुआ है, वो शहर है बांदा। बांदा कनेक्शन कहा जा रहा है गर्मी का। लगातार बांदा शहर तापमान का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी वहाँ लगातार बढ़ रही है और कारणों की पड़ताल करने पर पता चला है कि वहाँ लगातार पेड़ों की कटाई हुई है, साथ ही साथ नदियों में रेत का खनन हुआ है। तो ये जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इससे लगातार बढ़ने वाली जो गर्मी है वो हमें ही सता रही है। दरअसल ये जो पृथ्वी है ना हमारी, ये इस पर हम रहते हैं। सिर्फ हम ही नहीं रहते, हमसे पहले हमारे पूर्वज भी रह के गए हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी पर रहेगी। यदि हम इतना सा विचार कर लें कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए पैसे रुपए तो छोड़ के जाएं ही, घर बनाकर उनके लिए छोड़ कर जाएं, लेकिन साथ ही साथ इस घर में रहने लायक माहौल, इस घर में रहने लायक पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा भी छोड़ कर जाएं, तो कितना ही अच्छा हो। अभी कल एक तस्वीर देख रही थी, किसी बड़े शहर की तस्वीर रही होगी निश्चित तौर पर, छत की तस्वीर थी और लगातार दूर दूर तक एसी के आउटर यूनिट दिखाई दे रहे थे। ये जो एसी के आउटर यूनिट हैं, जब हम जितनी भी देर तक एसी चलाते हैं, इन आउटर यूनिट से लगातार न सिर्फ गर्मी निकलती है बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी निकलते हैं जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, और इसकी वजह से हमारे धरती का जो गोला है लगातार गर्म से गर्मतर होता चला जा रहा है। क्या किया जाए इसके लिए? कल हम शाम को एक जगह जा रहे थे, चूँकि शहर हमारा शाम के समय थोड़ा भीड़भाड़ वाला हो जाता है, तो बड़ी गाड़ी हम कोशिश करते हैं कि ना निकाली जाए। स्कूटर से मैं जा रही थी। एक ऐसा रास्ता है हमारे शहर में जहाँ पेड़ों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पहुँचते ही थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ। यकीनन बाकी जगहों से 2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का कम रहा होगा। बस यही समझना है हमें। पेड़ निश्चित तौर पर विकास की के क्रम में कटे हैं, लेकिन यदि हम उतने पेड़ और लगा लें और उन्हें बड़े कर लें तो इस समस्या से थोड़ी सी निजात मिल सकती है। इसके अलावा जो ताप विद्युत घर होते हैं जहाँ कोयला जला करके बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर भी वो भी हमारी धरती की गर्मी बढ़ाने का काम करते हैं। हम बिजली बहुत इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। यदि अपने छत पर, यदि आपके पास छत है तो छत पर सोलर पैनल लगवा लें, तो ये जो ताप विद्युत घरों से जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं वो कम इस्तेमाल करेंगे, आपके सोलर पैनल से इस्तेमाल की बनाई गई बिजली आप इस्तेमाल करेंगे, तो भी हम धरती को गर्म होने से बचा सकेंगे। तो ये जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, ये इस पर हमें जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत होगी। एक और समस्या इस समय हमारे लिए बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। कितनी भी बड़ी सोसाइटी में आप रह लें, यदि वहाँ पानी नहीं है तो आपके आलीशान भवन का कोई फ़ायदा नहीं। पानी की व्यवस्था हमें खुद करनी है। धरती के नीचे से हम बोरिंग से पानी ज़रूर लेते हैं, बड़े बड़े पंप्स लगा लेते हैं,
लेकिन यदि धरती के भीतर पानी नहीं होगा तो हम कितने भी बड़े पंप लगा लें, हमारा कोई काम नहीं हो सकेगा। तो धरती के भीतर के पानी को रिचार्ज करने की भी हमें कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं शासकीय तौर पर तो योजनाओं में हो रही है, लेकिन कितना फलीभूत होती है, कितना उनको जन सहयोग मिलता है, ये बड़ी बात है। 15,000 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाने का लक्ष्य सरकार ने तो हमारे शहर में रख लिया है, लेकिन जो कुएं हैं, जो बावड़ियां हैं, जो बोरवेल्स हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर घर में होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। सरकार कितना भी कुछ कर ले, यदि जन भागीदारी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। हम अपने श्रोताओं को फिर से अनुरोध करेंगे कि ये जो पानी की व्यवस्था है ना, यदि हम पुराने समय में देखें तो ये सरकार के पास नहीं थी, ये हमारे ही पास थी। हमारे अपने कुएं होते थे, अपने ट्यूबवेल होते थे, उसकी व्यवस्था हम खुद करते थे। कुओं की साफ सफाई सामाजिक जिम्मेदारी होती थी, सामुदायिक जिम्मेदारी होती थी। तो यदि आपके आसपास कोई बोरवेल है तो कोशिश करें कि वहाँ पर रिचार्ज कराने की, वाटर रिचार्ज कराने की कोशिश करें। यदि आपके घर का बोरवेल सूख गया है तो थोड़े से पैसे लगाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा लीजिए। आसपास पानी की मात्रा बरसात में बढ़ जाएगी और साल भर के लिए पानी रिचार्ज हो जाएगा। आसपास के पेड़ पौधों को जीवन मिल जाएगा क्योंकि वो भी धरती से ही पानी लेते हैं। कोशिश कीजिए कि आसपास हरियाली बनी रहे। यदि घर के बाहर छोटी सी भी जगह है तो वहाँ एक पेड़ तो लगा ही लीजिए। थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी लेकिन वो सेवा आपको ही फायदा देगी। साथ ही साथ एक और चीज़, अपने घर की छतों पर, मुंडेर पर पानी ज़रूर रखिए, किसी सकोरे में, किसी हौदी में, जिससे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। ये तो पशु पक्षियों के लिए बात हुई, अपने साथ भी पानी की बोतल एक एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि यदि कोई आपसे पानी मांगेगा तो आप मना तो नहीं कर पाएंगे। आप भी प्यासे ना रहें, सामने यदि कोई प्यासा दिख रहा है तो उसे भी आप पानी पिला सकें, ऐसी व्यवस्था ज़रूर करें। हमारे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 25 तारीख से, 25 मई से 2 जून तक नौतपा लग रहा है। ये नौतपा आप सब जानते हैं, 9 दिन रोहिणी नक्षत्र के बेहद तपा देने वाले होते हैं और ये अच्छी गर्मी का संकेत होता है। यदि नौतपा खूब तपा तो वर्षा जो है वो अच्छी होगी। तो ये जो 9 दिन हैं आने वाले, सोमवार से जो शुरू हो रहे हैं, इस दौरान अपना बेहद ख्याल रखें। कोशिश करें कि जो बाहर के काम हैं वो 12 बजे से पहले कर लें या शाम 4 या 5 बजे के बाद करें। खैर, हमारा शहर तो अलग ही है क्योंकि यहाँ गर्मियाँ 12 से 4 ही नहीं होती बल्कि 24/7 होती हैं। सुबह 5 बजे भी गर्मी होती है, रात के 12 बजे भी गर्मी होती है, दिन के 12 बजे भी गर्मी होती है, शाम के 5 बजे भी गर्मी होती है। तो हमारे लिए कुछ अल्ग तरह के नियम हैं, हम अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग हैं। खैर, चलिए हम सूरज से थोड़ा सा अनुरोध कर लेते हैं कि वो अपनी तपिश थोड़ी सी कम कर ले और हम अपनी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है थोड़ा सा बढ़ा लें।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग ग्वालियर, जिसका नाम है, और आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई है आपकी दोस्त तुलिका। श्रोता साथियों, बात हो रही थी गर्मियों की, वहीं से शुरू करते हैं। गर्मियों में तनाव जो है वो हमारा बढ़ जाता है। एक तो हमारा शरीर गर्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, और ऐसे में दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील करने लगता है। और ये जो स्ट्रेस है ना, वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं होता, पशु पक्षियों में भी होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दौरान जो आवारा कुत्ते हैं, गली वाले कुत्ते, वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लोगों को काटने की जो कुत्तों डॉग बाइट्स की जो सिचुएशंस हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। शाम के वक्त, रात के वक्त या एकदम भोर में आपको कुत्तों के भौंकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें इस समय आ रही होंगी। डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि इस मौसम से एडजस्ट करते हुए कुत्ते भी लगातार स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में हम भी हैं। लेकिन इस स्ट्रेस को मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। यदि हम मैनेज न कर पाए तो हर दूसरे तीसरे से हम उलझते फिरेंगे, बहस करते फिरेंगे, और बहस की वजह से हमारे दिमाग को लगातार नुकसान होता रहेगा। आइए समझते हैं इस तरह की बहस जो स्ट्रेस की वजह से होती है या किसी भी वजह से होती है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। जब भी हम किसी से बहस करते हैं या उलझते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, शरीर पूरा फाइट मोड में चला जाता है। जो कार्टिसोल और एड्रेनलिन है वो बढ़ जाता है, दिल तेज़ धड़कने लगता है। गतिविधि दिमाग में हो रही है लेकिन पूरा शरीर जो है वो उसमें शामिल हो जाता है। बेचैन हो जाते हैं हम, दिमाग में भारीपन लगने लगता है, ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं हम। बहस ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी दिमाग जो है हमारा वही बातें सोचता रहता है, दोहराता रहता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ये नहीं बोला उसे, उसने ऐसा क्यों कहा मुझे, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। इससे हम उस चक्र में, दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं जिसे माइंड लूप कहा जाता है, और हम बहस के बाद होने वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं। और जब हम इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा फोकस जो है वो कमज़ोर होता है, जो एनर्जी है दिमाग की वो लगातार वहाँ खर्च हो रही होती है जो बहस और उसके बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वहाँ। कोई भी काम हो या पढ़ाई हो, डेली टास्क हो, इन पर फोकस करना मुश्किल होता जाता है। और जब हम किसी भी चीज़ पर, अपने कामों पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मेंटल पीस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी एक छोटी सी बहस किसी से भी हो जाए वो आपका मेंटल पीस ख़राब कर सकती है, पूरे दिन का मूड ख़राब कर सकती है, और आप बिना किसी कारण नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, सही निर्णय भी नहीं ले पाते, इम्पल्सिव हो जाते हैं। ज़रा एक बहस में फंसे कि फिर दो चार उसके आगे आ ही जाती हैं, हर किसी से भिड़ लेते हैं, और फिर बाद में आपको इस चीज़ का अफसोस होता है कि अरे हम उससे क्यों भिड़ लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि कोई कुछ बोले तो थोड़ा रुकें, तुरंत जवाब मत दें। आप थोड़ा रुकेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अरे छोड़ो ना, वो बोल रहा है, बोलने दो, हमने उसकी बात को दिल पर लिया ही नहीं, वो भी बोल के चुप हो जाएगा। यही 10 सेकंड का पॉज जो है वो गोल्डन पीरियड है आपका, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे जो बात करूँगा मैं या करूँगी मैं और बहस शुरू होगी, उससे ज़्यादा ये शांति मेरे लिए ज़रूरी है। चुप रहिए और खुद की जीत सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि बहस में पढ़कर आप कभी भी नहीं जीत सकते।

एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, आज अखबारों ने हमें बताया है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। अब हमारे शहर के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए कि जो चंबल नदी है वहाँ कछुओं के प्रजनन का काम किया जाता है। यहाँ पर देवरी घड़ियाल केंद्र है, यहाँ राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी है जिस जगह पर कछुओं को प्राकृतिक वातावरण देकर उनकी प्रजाति बढ़ाने का काम होता है। वहाँ के अधीक्षक हैं श्याम सिंह चौहान। वो बताते हैं कि चंबल के रेतीले घाटों पर इन दिनों बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। कछुओं ने उस रेतीले पाट पर अंडे दिए होते हैं और अंडों से नन्हे नन्हे कछुए बाहर आने को बेताब होते हैं। और जानते हैं, ये जब कछुए अंडों से बाहर आने ही वाले होते हैं उस समय कुछ ख़ास हलचल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा माँ के पेट के अंदर करता है। कछुओं की इस हरकत को वैज्ञानिक कहते हैं मदर कॉल। इस आवाज़ को सुनते ही रेत के बाहर पहरा दे रही माँ जो है वो तुरंत हरकत में आती है, अपने पंजों से रेत हटाती है और अपने बच्चों को दुनिया में आने का रास्ता देती है। और इस संबंध को संरक्षित करता है चंबल, राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी और वहाँ का देवरी घड़ियाल केंद्र। और ये प्रक्रिया सही ढंग से हो इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। विलुप्ति की कगार पर खड़े रेड क्राउन रूफ टर्टल और थ्री स्ट्रिप रूफ टर्टल को बचाने के लिए ये टीम विशेष काम कर रही है। सुरक्षित मैटरनिटी होम्स बनाए गए हैं मादा कछुओं के लिए। हर साल फरवरी से अप्रैल के बीच चंबल के शांत घाटों पर वो आती हैं कछुओं की मादाएं, और रात में अपने पिछले पंजों से करीब एक फिट गहरा गड्ढा खोदती हैं। उसमें 8 से 40 तक अंडे देती हैं और वापस नदी में चली जाती हैं। अंडों को बाकी जंगली जानवरों, कुत्तों, इन सब से बचाने के लिए वन विभाग जो है वो हैचरीज बनाता है, यानी इन कछुओं के लिए सुरक्षित मैटरनिटी होम। वन कर्मी सुबह से शाम तक रेत पर कछुओं के पैरों के निशान ढूंढते हैं और निशान मिलते ही लोहे की रॉड से और फिर हल्के हाथों से अंडों को तलाश करते हैं और उन्हें हैचरीज में शिफ्ट कर देते हैं। ये जो कछुओं के जो घोंसले होते हैं वहाँ से हैचरीज में ट्रांसफ़र करके आर्टिफिशियल हैचिंग करके कछुओं को पैदा करना, छोटे छोटे कछुओं को फिर बड़ा होने देना और फिर वापस नदी में छोड़ देना, ये काम लगातार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों लगभग 400 घोंसलों को इस तरह से बचाया गया है और लगभग 7,500 नन्हे कछुओं को इन अंडों से बाहर निकालकर चंबल में वापस छोड़ा गया है। चंबल में कछुओं की 9 प्रजातियां रहती हैं, रेड क्राउन, थ्री स्ट्रिप, इंडियन टेंट, इंडियन फ्लैप शेल, इंडियन सॉफ्ट शेल, इंडियन पीकॉक, नैरो हेडेड, फ्लैप शेल और नरम त्वचा वाले कछुए चंबल में बहुत हैं। तो ये कछुए यदि आप देखना चाहते हैं तो चंबल सेंचुरी में जाइए, क्योंकि यदि हम प्रकृति के साथ जानवरों का ये संबंध देखेंगे तभी हम प्रकृति की ज़्यादा कद्र कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति है सिर्फ हमारे लिए नहीं, इन सब जीव जंतुओं के लिए बराबर के ये हिस्सेदार हैं इस पर्यावरण के लिए।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग देवगिरी बुलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुभाष देशपांडे का वॉयलिन पर बजाया राग देवगिरी बिलावल। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजते हैं। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। बात सबसे पहले मौसम की। नौतपा शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दमोह जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2022 में इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच जिले में जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे हृदयपुर, इमलाई, आमचोपड़ा, बरमासा, सिंहपुर, खजूरी समेत दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वातानुकूलित ट्रेन से जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला जेल पहुंचकर नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। करीब 1,18,00,000 रूपये की लागत से तैयार इस बैरक का उद्घाटन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिले में वृद्धावस्था, पेंशन से वंचित बुजुर्गो की समस्या को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सेवा और आशीर्वाद अभियान शुरू किया है। जिले में 1664 ऐसे पात्र प्रतिजन चिन्हित किए गए हैं, जिनकी समग्र ईकेवाईसी लंबित होने के कारण पिछले 8-9 माह से पेंशन बंद है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत तो वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां वृद्धजनों के निशुल्क ईकेवाईसी कर पेंशन शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर दमोह नगर के खजरी मोहल्ला निवासी समीर अहिरवार अपनी अनोखी खोज किसान मित्र छड़ी को लेकर चर्चा में हैं। ये छड़ी मिट्टी परीक्षण के साथ साथ कंपन पैदा कर किसानों को सर्प दंश से बचाने में भी मदद करती है, जिससे करीब 3 मीटर दूर तक सांप भाप जाते हैं। समीर की इस खोज का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वहीं उन्हें स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली है। अब वे पराली से पेपर, पेन और पेंसिल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती के दौर में ग्राम बांसा कला के सीमांत किसान परसादी पटेल ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल पेश की है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वे घर पर तैयार केचुआ खाद से गेहूं, उड़द, चना, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। सांसद राहुल सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केनबेतवा लिंक परियोजना, मेडिकल कॉलेज, सड़क और पुल निर्माण सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन के तहत जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक जिले में 97 पांडुलिपियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 63 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा चुका है। खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मई तक अशोकनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दमोह जिले की बालिका टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में उत्साह देखने को मिला है। श्री दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और श्री दिगम्बर जैन पंचायत तथा स्थानीय केन्द्रों के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के 3 केंद्रों पर हुआ। इसमें 500 ज्यादा शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 22 कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिनमें संस्कार, स्वाध्याय, पूजा, संगीत, व्यक्तित्व विकास और जैन संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दमोह जनपद के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले दिनों 35 ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 8 वर्ष के बालकों से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य पंडित द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपुल्स पद्म अवार्ड।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। कैसे बचें थायराइड और डायबिटीज से, इस विषय पर डॉक्टर सुशील शर्मा से बात कर रही हैं तुलिका शर्मा। सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है कैसे बचें थायराइड और डायबिटीज से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा। आप फिजिशियन हैं बिरला हॉस्पिटल और शोध संस्थान में। डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डायबिटीज और थायराइड, आज हम इन दोनों विषयों पर बात करेंगे और इन दोनों विषयों से कैसे बचें इस पर बात करेंगे। लेकिन आमतौर पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों बीमारियां जो हैं बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं और ऐसे में इनसे बचना, इस पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। पहले तो डायबिटीज और थायराइड, इन दोनों के बारे में एक एक करके हमारे श्रोताओं को बताइए डायबिटीज क्या है और इसके लक्षण क्या हैं।
2: डायबिटीज को अपन हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। पहले ये शहरों की बीमारी हुआ करती थी, कहते धनी लोगों की बीमारी हुआ करती थी। आज इसके पैर गांव तक पसर चुके हैं। यह एक मेटाबॉलिज्म का एक तरह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जिसमें अपने बॉडी की जो ग्लूकोज की जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, क्षमता है जो है, वो क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाती है। जिससे शुगर का लेवल निरंतर रूप से बढ़ता रहता है, जिसके कारण बहुत सारे जो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसको अपन कहते हैं डायबिटीज।
1: आमतौर पर यदि किसी को डायबिटीज हो रही है या शुरुआती स्टेज में है तो किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे वो समझ सके, या उन लक्षणों को शुरुआती तौर पर ही अगर पहचान लिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है, इनके गंभीर होने से इनको बचाया जा सकता है।
2: तो सबसे मुख्य जो इसका जो लक्षण है, सबसे पहले अत्यधिक प्यास लगना
1: जी,
2: वजन में अचानक से गिरावट
1: होना
2: जी, अत्यधिक गला सूखना, बार बार यूरिन के लिए जाना, बेवजह चिड़चिड़ापन, थकान होना, जल्दी थकावट हो जाना, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाना, ये सबसे मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है
1: डायबिटीज
2: के पहचानने के, सबसे शुरुआती लक्षण जो है।
1: यदि इस तरह के बहुत सारे लक्षण, इनमें से दो या दो से ज्यादा लक्षण किसी के में हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। और सतर्कता की शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
2: सबसे पहले तो देखिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सबसे आजकल के तनाव भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी को शुगर हो, किसी को डायबिटीज हो या ना हो, अर्ली प्रातः सवेरे उठकर मॉर्निंग वॉक सबको करना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है, किसी को डायबिटीज हो या ना हो। और खान पान पर कंट्रोल अपने को सबसे आवश्यक ही है। आजकल अपन देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जरा देखते से मोटे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मॉर्निंग वॉक की जब बात कर रहे थे तो हल्के से मुस्कुरा रहे थे, और शायद आपका ये मतलब था कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि लोग देर तक सोना ज्यादा पसंद करते
2: हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी कहते हैं कि जिसको बेटा मॉर्निंग वॉक में वही जाता है, या जिसको या तो कोई परेशानी होगी या बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होगा अपनी हेल्थ को लेकर, अदरवाइज नॉर्मल आदमी कभी भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते मिलेगा आपको।
1: ये दो चीजें, या तो आपको कोई परेशानी हो गई है और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए,
2: डर के मारे
1: आप जाते हैं, या फिर आप अपने आप को फिट रखने के इतने ज्यादा फ्रीक हैं, जिसको फिटनेस फ्रीकनेस बोली जाती है, यदि आप वो हैं तब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। मतलब सामान्य आदमी के लिए ये चेतावनी
2: नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल चेतावनी सबके। आजकल तनाव इतना ज्यादा हो गया है, मॉर्निंग वॉक का सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मुख्य जो फायदा है, तनाव से मुक्ति, काफी हद तक तनाव को कम किया जाता है मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, इन सब चीजों से करके।
1: क्या तनाव एक कारण है डायबिटीज
2: का? सबसे मुख्य कारण तनाव ही है, खान पान तनाव, तनाव पूर्ण जीवन शैली, खान पान और वातावरण में जो भी अपने प्रदूषण है, जितना भी जो टॉक्सिक्स जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये सारी चीजें तनाव सबसे मुख्य। क्योंकि शुगर डायबिटीज जो है पहले इतनी कॉमन नहीं हुआ करती, आप देखिए गाँव में भी पहुँच गई, क्योंकि तनाव भी गाँव में अपने विलेजेस में पहुँच गया।
1: कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले इतनी ज्यादा जांच हम नहीं कराते थे, अब जांच कराने लगे?
2: पहले के लोग कितने मेहनती हुआ करते थे, मशीनरी इतनी नहीं हुआ करती थी, अभी बिल्कुल सब कुछ मैनुअली हुआ करता था, मशीनरी इतना नहीं था। इसलिए
1: मतलब ये धीरे धीरे जो आधुनिक जीवन शैली में हम ढलते जा रहे हैं, ये इन सब बीमारियों का मुख्य कारण।
2: बिल्कुल
1: यदि आपकी जीवन शैली में आधुनिक बदलाव आते जा रहे हैं तो सचेत होने की आवश्यकता है कि आपको इस तरह के जो राज रोग कहे जाते थे वो होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, हम और बातें करेंगे और डायबिटीज़ के विषय में भी और थायराइड के विषय में भी। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे अपनी बातचीत को और एक दूसरी दिशा जो गीतों के साथ हम सेहत की बात करते हैं, तरानों के साथ करते हैं, तो कौन से तराने आपको पसंद हैं, किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं और गीतों का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है?
2: गीतों का मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खासा महत्व है, इसमें अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में तो, क्योंकि मैं पढ़ता भी गीतों संगीत के साथ में था।
1: अच्छा।
2: आज जी बिल्कुल, मेरी कार में भी संगीत बिल्कुल हमेशा, जहाँ मेरे को मौका मिलता है मैं वहाँ संगीत सुनना जरूर पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव को घटाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप एक डॉक्टर की हैसियत से हमारे स्टूडियोज में बैठे हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनको ये बताइए, वो अपने बच्चों को बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं कि गाना चला के कौन सा पढ़ाई होती है, तो क्या वास्तव में गाना चला के पढ़ाई होती है?
2: बिल्कुल हो सकती है, एक ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आपके कान में हेडफोन्स लगे हुए हैं, वो सब नहीं। आप पढ़ाई की जैसा आधा घंटे के लिए, एक घंटे के लिए आप इन बिटवीन आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके स्ट्रेस से।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को डायबिटीज की टेंशन से अभी मुक्त करते हैं, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गीत है वो?
2: प्यार दीवाना होता है मस्ताना।
1: वाह वाह, किशोर कुमार की आवाज। चलिए हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बहुत खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब आपने पसंद किया और हमारे श्रोताओं को सुनवाया। श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में सेहत की बात तरानों के साथ। श्रोताओं, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे बचें डायबिटीज़ और थायराइड से। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है
1: जी।
0: आपने कहा मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा खानपान में किस तरह के बदलाव करें हम,

0: आम तौर पर जिसे डायबिटीज शुरुआती अवस्था में है या जिसे अभी तक नहीं हुई है, वो ऐसे कौन से बदलाव अपने खान पान में करें जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो?
1: सबसे इसमें अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सेट करके बात करूं तो अपनी बॉडी में जितनी भी एक्सेसिव कैलोरी है जो अपने बॉडी में बैंक बैलेंस बना के रखा है उस बैंक बैलेंस के सबसे पहले अपने को रिड्यूस करना है,
0: मतलब फैट का बैंक बैलेंस कम करना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल चर्बी को तो बिल्कुल दूर रखना है बिल्कुल, और जितना अपन पचा सकें उतना खाएं, वो सबसे बेहतर तरीका है।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, ये हमारी लाइफस्टाइल में होता है कि यूं तो हम काफ़ी समय तक भूखे रह लेते हैं काम के उसमें, लेकिन जब खाते हैं तो पूरा मेरे ख्याल से पेट से ज़्यादा खा लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि कोई आदमी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसको 30 किलो कैलोरी पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए उसको डाइट में। जो मॉडरेटली वर्क कर रहा है वो 35 किलो कैलोरी पर डे ले सकता है, और जो हैवी वर्क कर रहा है 40 किलो कैलोरी।
0: मतलब यदि आपका वज़न लगातार बढ़ रहा है तो सचेत होने की यहाँ भी आवश्यकता
1: है। अनावश्यक ना खाएं, और खाने को सेगमेंट में अपन टुकड़ों में खाएं, एक बार में अत्यधिक मात्रा में खाना ना खाएं, और जितना हो वेस्टर्न फूड जो भी अपना जो चाइनीज फूड है इन सबसे बचें, अपन हैवी जो फ्राइड फूड रहते हैं उनसे बचें,
0: फास्ट फूड नहीं खाना है, और घर में बना जो पौष्टिक भोजन जो हमारे हिंदुस्तानी खाने की थाली होती है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही, ये सारी चीज़ें अगर थाली में हैं तो ये से आप हेल्दी फूड बोलेंगे।
1: और इसमें भी एक थोड़ा सा सुधार ये रहना चाहिए कि सुबह अपन क्या करते हैं, अपने को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी रहती है कि जरा सा नाश्ता किया और भाग गए अपन, दोपहर में थोड़ा सा हैवी लिया और आपने सबसे ज़्यादा खा के और सो गए।
0: अच्छा,
1: होना इसके विपरीत चाहिए, नाश्ता आपको जितना अच्छे से करना है, ब्रेकफास्ट आपको जितने से आपको कर लेना चाहिए आपको ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके बाद दिन बाद आपको काम करना है, दोपहर में आप खाना थोड़ा सा कम खाएं, रात को सबसे कम खाना खा के आप, क्योंकि रात में सोने के पश्चात तो आपको कोई टहलना मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक और नाइट वॉक तो इस तरह की कोई चीज़ है नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट की जो शैली है बेसिकली वो अपन बदल दें तो सबसे बेहतर चीज़ है वो।
0: आजकल एक और टेंडेंसी देखने में आ रही है कि देर रात तक लोग जगते हैं और इसी वजह से खाना भी देर से खाते हैं, खाना कितने वक्त तक खा लेना चाहिए?
1: अब देखिए प्रैक्टिकली तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, कई लोग ऑफिस से 10 बजे लौट के आते हैं, कई लोग 11 बजे लौट के आते हैं, आइडियली खाना 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेना चाहिए, कम से कम खाना खाने के बाद अपने को 1 घंटे टहलने के लिए मिल जाए, नॉट मॉडरेटली नॉट ब्रिस्क, एक रिलैक्स अपन थोड़ा सा आधा घंटे की अगर वॉक हो जाए तो बेटर है।
0: मतलब खाना खाने के तुरंत बाद लोग बिस्तर में जाने की जो आदत है वो नहीं होनी चाहिए, खाना खाने के बाद आप घर में भी यदि थोड़े बहुत काम निपटाते हैं अपने टहल के चलते फिरते,
1: आप बैठिए थोड़ा सा बातें करिए, थोड़ा सा छत पे टहलिए, कोई भी थोड़ा बहुत लाइक एक लाइट एक्टिविटी आप करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी बजाय खाना खा के तुरंत अपन बिस्तर सो गए।
0: डायबिटीज़ से बचने के लिए आपने जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तनों की बात की, लेकिन यदि किसी को शुरुआती लक्षण जो आप बता रहे हैं वो होते हैं और जांच में डायबिटीज़ की पुष्टि होती है तो इन जांचों पर पहले तो कितना भरोसा किया जा सकता है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि वहाँ पर हमारे व्यवहार में हमारे जीवन शैली में क्या बदलाव हमें लाने चाहिए?
1: देखिए डायबिटीज़ का जो अपन किसी को अगर डिक्लेयर करें कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो इसके लिए एक सिंगल फैक्टर सिंगल क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं, खाने की जो सुबह जो खाली पेट जो शुगर की जो लेवल है बेसिकली वो मोर देन 125 और इक्वल टू 126 हो, खाना खाने के पश्चात जो है मोर देन 199 शुगर होना चाहिए, और HbA1c जो पिछले 3 महीने का शुगर का औसत बताता है वो मोर देन 6.5 होना चाहिए, इक्वल टू मोर देन 6.5। इन तीनों क्राइटेरिया के साथ में लक्षण, इन चारों चीज़ों को मिला के अपन कहेंगे बंदे को डायबिटीज़ है।
0: और यदि आपने ये बता दिया किसी मरीज को कि उसे डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ उसको शुरुआती अवस्था में है, और क्या उस तरह की डायबिटीज़ से निजात पाई जा सकती है, बचा जा सकता है?
1: ठीक है, डायबिटीज़ से पहले की एक चरण होता है प्री डायबिटीज़, उसमें आपको जो खाली पेट का जो शुगर का जो लेवल रहता है वो 110 से लेके 125 तक रहता है, खाना खाने के बाद का जो लेवल रहता है 140 से लेके 199 तक रहता है, और जो HbA1c है वो आपका 6 से लेके 6.4 तक रहता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, लेकिन अगर जीवन शैली जीवन पद्धति में शैली में अगर बदलाव किया जाए, धूम्रपान से दूर रहा जाए और प्रतिदिन व्यायाम और अपनी डाइट पे अपन ध्यान रखा जाए तो इन सब चीज़ों को इस डायबिटीज को होने वाले डायबिटीज़ को डिलीट किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपकी एक बात पकड़ रही हूँ, आपने एक बात कही कि धूम्रपान से दूर रहा जाए, क्या धूम्रपान और मधुमेह डायबिटीज़ में कोई संबंध है?
1: बहुत बड़ा संबंध है
0: जी,
1: बिल्कुल, लाखों प्रकार के टॉक्सिन्स रहते हैं धुएं के।

0: अंदर, वो अपनी पेंक्रियाज में जहाँ बीटा सेल्स जो इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं वहाँ जाके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और डायबिटीज का वही एक मुख्य कारण है कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रॉय होना। बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए, आपके इंसुलिन की जो मात्रा है बॉडी में बननी चाहिए वो मात्रा कम हो जाती है। उसको
1: मतलब स्मोकिंग छोड़ करके यदि देखा जाए तो आप डायबिटीज से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चलिए, ये भी हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं और आपको डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण हैं तो आप धूम्रपान छोड़ करके इसके शुरुआती लक्षणों से कम बच सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में
0: डिले अपन कर सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल डिले कर सकते हैं, पूरी तरह बचा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इस तरह के बदलाव अपनी जीवन शैली में यदि करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, खासतौर पर डायबिटीज से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आगे हम थायराइड पर बात करेंगे, डायबिटीज पर भी चर्चा चलती रहेगी, हमें और हमारे श्रोताओं को अब कौन सा गीत सुनवाना चाह रहे हैं?
0: मैं सोच रहा हूँ थोड़ा तनाव से मुक्ति हो जाए, चला जाता हूँ किसी की धुन में।
1: बहुत खूबसूरत, मतलब किशोर कुमार आपको बहुत पसंद है
0: जी।
1: और हमारे श्रोता भी गीत सुनना चूंकि पसंद करते हैं और हमसे बहुत ज्यादा गीतों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो आइए उन्हें आपसे भी थोड़ी गहराई से जोड़ते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा। हम बात कर रहे हैं कैसे बचें डायबिटीज और थायराइड से। आपने पैंक्रियाज की बात की कि पैंक्रियाज की जो कार्यप्रणाली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो डायबिटीज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है और ठीक इसी तरह से ऐसे ही परिवर्तनों की वजह से थायराइड भी होता है। थायराइड कैसे होता है पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए और क्या है
1: थायराइड। एक तरह से थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले के अग्रभाग में अपन देखें अगर तो यहाँ स्थित है। यहाँ से थायराइड हार्मोन एक निकलता है जो बॉडी को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म तो हो रही है लेकिन उसको फिनिशिंग पॉलिशिंग करने का काम जो है वो थायराइड हार्मोन करता है। अगर इसका संश्लेषण या सिंथेसिस इसका कम हो जाए किसी भी कारण से, या तो अपन किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अपन संपर्क में आ गए, लंबे समय तक अपन एक्सरे के एक्सपोजर में हैं अपन, या मदर से जो होने वाले जो नवजात को जो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है उसके, तो इन सब चीज़ों से थायराइड का अगर सिंथेसिस कम हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। और आमतौर पर तो जो मोटापा बढ़ाने वाला थायराइड है उसको लोग ज़्यादा जानते हैं बजाय जो वेट लॉस
0: करने वाला होता है जी।
1: तो थायराइड का मतलब कंसर्न लोगों को लेके वही है कि थायराइड मतलब वेट गेन करने वाला थायराइड, दैट मींस थायराइड।
0: थायराइड के लिए कहते हैं कि एक दवा है जिसको आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है और यह मान्यता है कि वो गोली आपको जीवन भर खानी है यदि एक बार शुरू कर दी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये सही है?
1: आपने बहुत रोचक सवाल पूछा है और काफी मुझे लगता है लोगों को जानने का ये काफी इंटरेस्ट भी होगा। क्या है कि थायराइड का लेवल एक लेवल से जब कम हो जाए, बेसिकली क्या है कि जो थायराइड जहाँ बनता है वो फॉलिकल जहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो जितनी अनुपात में अपने शरीर में थायराइड की मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए होती नहीं उत्पन्न हो रही है तो अपने को बाहर से अपने को जो अपन रिप्लेसमेंट बोलते हैं अपन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस इज अ काइंड ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जो शरीर में नहीं बन रहा है वो अपन एक्सोजेनस नहीं बन रही अपन ले रहे हैं, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिनमें थायराइड का सिंथेसिस या संश्लेषण शुरू हो जाता है तो कुछ लोगों को काफी कम मात्रा के जो रोज है उस पर भी इसको काम चल जाता है या कई बार दवा बंद भी, बहुत रेयर लोग होते हैं दवा बंद भी हो जाती है।
0: लेकिन दवा बंद होने की संभावनाएं न्यून होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो मतलब यदि लोग आजीवन खा रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं?
1: जी नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है।
0: क्या नुकसान हो सकता है?
1: सबसे बड़ा नुकसान जो है मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि थायराइड जो है बेसिकली अपन कहें तो मास्टर एक तरह से जो जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उनको रेगुलेट करने का मास्टर है। कोई भी प्रोसेस आपकी बॉडी में होगी उसको बिल्कुल स्लो करते कर, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपका खाना डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है इंटेस्टाइन का मूवमेंट है अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा डाइजेस्ट तो होगा खाना बट बहुत डिलेड होगा, आपका खाना बहुत डिलेड होगा, आपको भूख नहीं लगेगी और खाना डिलेड होगा तो अननेसेसरी जो भी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए वो भी एब्जॉर्ब होगा, आपका अनावश्यक फैट एब्जॉर्ब होंगे आपके तो वेट गेन करेगा। तो मैंने बताया तो थायराइड हार्मोन बेसिकली सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है। अगर ये नहीं होगा तो जितना रिदम में जो आना चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म बॉडी की वो रिदम में नहीं आएगी, स्लो हो जाएगी तो सारे बॉडी के फंक्शन जितने भी हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका बॉडी मूवमेंट्स आपके स्लो हो जाएंगे, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा आपका।
0: ये दोनों ही बीमारियाँ, यहाँ हम दोनों बीमारियों के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ हो या थायराइड, किस उम्र के लोगों से इन बीमारियों की शुरुआत होती है? क्या बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं? बुज़ुर्ग भी एक उम्र होने के बाद भी 50 या 60 साल के बाद भी ये दोनों बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं?
1: देखिए डायबिटीज़ और थायराइड नवजात से लेके इवन गर्भ से लेके और बाहर जो एडल्ट में चाहे जितनी भी एज हो 60 70 80 90 साल किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है।
0: मतलब शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।
1: जी जैसे डायबिटीज का है, डायबिटीज मुख्यतः पर देखें तो टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होगा, 90% आपकी पेंक्रियाज बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो पाती है, अगर हो भी रही है थोड़ा बहुत तो उसका जो रेगुलर जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो वो अपन देखेंगे तो वो 40 साल से कम के उम्र के लोगों में होता है, उसको मतलब टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होते हैं 40 35 40 साल से लेके ऊपर वालों में, उनमें होता है इंसुलिन लेवल कम बनता है और बनता है तो वो एक्शन नहीं कर पाता क्योंकि मोटापे के कारण, एक्सेसिव फैट के कारण जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाता है। सीधे डायबिटीज की बात करें तो नवजात से लेके और किसी भी उम्र तक, इसी तरह थायराइड नवजात से लेके किसी भी उम्र तक कभी भी किसी को भी प्रभावित कर

0: लोगों में ये मान्यता होती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं 10 साल तक, तो जो बेबी फैट होता है, जो फैटी थोड़े बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को भी आगे चलकर डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। ये भी क्या धारणा सही है?
1: बिल्कुल सही है। अगर फैट होगा ड्यू टाइम ऑफ कोर्स, अगर वो बच्चा फैटी रहता है तो पक्की बात है कि शुगर होने की संभावना अत्यधिक रहेगी। अगर उसकी मदर को भी शुगर या फादर को भी अगर मधुमेह है तो बच्चों को और काफी संभावना बढ़ जाती है शुगर डायबिटीज होने की।
0: ये बात मैं आपके मुंह से दूसरी बार सुन रही हूँ कि यदि माँ को या पिता को डायबिटीज या थायराइड है तो बच्चे में उसके आने की संभावना ज्यादा होती है।
1: डायबिटीज का ज्यादा रिलेशन है बजाय थायराइड के।
0: तो क्या ये हेरिडिटिकल है, अनुवांशिक?
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल अनुवांशिक है। टाइप 2 ज्यादा अनुवांशिक है टाइप 1 की।
0: मतलब जो एक उम्र के बाद डायबिटीज होती है वो ज्यादा अनुवांशिक है। यदि माँ और पिता में से या दादा में से किसी को डायबिटीज है या थायराइड है तो उस ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है।
1: जी, सावधान के साथ साथ में रेगुलर इंटरवल पर चेकअप रहने। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्यों चेक कराएं। और जब उनका चेक करा निकलो 550, 600, 700 इस तरह से शुगर निकलता है।
0: ये रेगुलर इंटरवल क्या होना चाहिए?
1: रेगुलर इंटरवल जैसे आप सपोज 30 आप हो गए तो 30 एज में आपको जाके अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप, पूरा जो लिपिड प्रोफाइल रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और अपना शुगर HbA1c फास्टिंग और पीपी और थायराइड टेस्ट, ये बेसिकली होना चाहिए। आमतौर पर धारणा ये कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं, हम क्यों दवाई खाएं, हम क्यों जांच कराएं, क्यों ऐसे में आदमी को लगता है पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है अगर कुछ नहीं निकलेगा जांचों में तो।
0: और अमूमन होता ये है कि यदि आप उन जांचों में खरे उतर गए, कोई बीमारी आपको नहीं है, तो बल्कि पैसा वसूल होता है, आप स्वस्थ घोषित होते हैं। श्रोताओ, यहाँ पर भी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गीत का ब्रेक। सेहत की बात तरानों के साथ है, तो सेहत की बात से थोड़ा सा विराम लेते हैं, गीतों की तरफ बढ़ते हैं। बताइए हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: किसी की मुस्कुराहटों पर होने से।
0: वाह, ये तो बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है। आइए सुनते हैं मुकेश का गाया ये खूबसूरत गीत।

0: सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर सुशील शर्मा। हम बात कर रहे हैं कैसे बचें डायबिटीज और थायराइड से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और थायराइड के बारे में बात करते हुए हमने जांचों की बात की, आपने इंटरवल्स की बात की, 30 साल के बाद व्यक्ति को अपना पहला चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। उसके बाद यदि हम फिट घोषित होते हैं तो फिर कब तक की राहत मिलती है?
1: साल में एक बार, मैं साल में एक बार से कम पे तो राजी नहीं होऊंगा, मतलब साल में एक बार तो चाहिए ब्लड टेस्ट।
0: यदि आप स्वस्थ हैं तब भी, और यदि आप डायबिटीज या थायराइड से ग्रस्त हैं तो?
1: डायबिटीज और थायराइड से अगर आप ग्रस्त हैं तो मैं थायराइड को भी थोड़ा सा अभी बताता हूँ, पहले मैं थायराइड शुगर का डायबिटीज का मैं बता दूँ। HbA1c लेवल हर 3 या 4 महीने में आपकी होना चाहिए एक बार, क्योंकि अपन अमूमन क्या करते हैं, शुगर जब चेक कराने जाते हैं तो रात को खाना कम खाया, बोलो सुबह अगर शुगर ज़्यादा है डॉक्टर डांटेगा, सबसे पहली बात ये रहती है। तो सुबह बिल्कुल रात में कम खाना खाया, सुबह शुगर चेक कराई, खाना खाने के बाद की जो शुगर चेक कराएं तब भी खाना कम खा के जाते हैं, ताकि खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमारी शुगर ज़्यादा नहीं आ रही है। पर वास्तविकता में यह है कि HbA1c जो है वो आपका रिफ्लेक्ट करता है पूरे पिछले 3 महीने में आपने क्या खाया, कैसे आपने लाइफस्टाइल अपनी गुजारी, उससे आप बच के नहीं जा सकते। यस, तो 3 से 4 महीने में आपको HbA1c करना चाहिए। आपका जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो साल में 1 या 2 बार, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए या आवश्यकता अनुसार। जैसे आपको बीच बीच में अगर पैरों में सूजन आ रही है, आपको पेशाब आउट यूरिन आउटपुट आपका कम हो रहा है कभी ऐसा, आपको थकान बहुत ज़्यादा लग रही, भूख नहीं लग रही, तो आपको ये भी इंटरवल पर होना चाहिए। साथ में कोलेस्ट्रॉल आपकी जाँच होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत उतनी ही आवश्यक जाँच है जितनी की HbA1c, क्योंकि लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिल जाता है डायबिटीज के लोगों में।
0: श्रोता साथियों, डॉक्टर साहब बार बार डायबिटीज की बात करते समय किडनी फंक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से आपके बिहाफ पर ये पूछना चाहते हैं, क्या डायबिटीज से किडनी और कोलेस्ट्रॉल पे कोई फर्क पड़ता है?
1: देखिए, कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में बॉडी में हो, जैसे अपन चर्बी के कई तरह की वेराइटी होती है, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड अपना वाला LDL और ट्राइग्लिसराइड। ये अमूमन ये पाया गया कि जिन लोगों में डायबिटीज है उनमें ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब रहते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले। और समय जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, आपको मालूम है शुगर जो डायबिटीज है वो अपने सर से लेकर और पैर के अंगूठे तक हर अंग को इन्वॉल्व करती है,
0: प्रभावित करती है।
1: तो कहीं ना कहीं 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल 10 साल बाद अगर आप बहुत अच्छे कंट्रोल आप करके रखते हैं, शुगर आप बढ़िया, आपकी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है, आप खान पान पर कंट्रोल करते हैं, तो आपके ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको बोलते हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, इनको अपन डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये इनका आवश्यक जाँच कराना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं अगर इनकी और रेगुलर अपन जाँच नहीं कराएंगे तो बाद में अपन पाएंगे कि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब अपनी हो गई है, तो ऐसे लेवल में फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे इस स्थिति में। इसलिए इनका टेस्ट कराना रेगुलर इंटरवल पे बहुत जरूरी है।
0: आपने टेस्ट के बाद जब हम कर रहे थे डायबिटीज और थायराइड की, थायराइड को कहा था कि बाद में बताएंगे, अब वो बाद आ गया है, आप थायराइड के बारे में बताइए।
1: देखिए, जब पहली बार किसी को थायराइड डिटेक्ट होता है, अमूमन लोग समझने लगते हैं, आपस में भी लोग चर्चा करते हैं कि साहब मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर अ थायराइड टेस्ट। कई लोग तो वॉलंटरली करा के लाते हैं टेस्ट, कई लोग लक्षण आके बताते हैं, डॉक्टर बोला थकान होने लगी, वेट गेन होने लगा है, आलस बहुत ज़्यादा रहने लगा है, तो इनिशियली अपन थायराइड अपन कराते हैं। अच्छा, लोगों में क्या होता है कि जैसे अपने किसी को थायराइड, इंडिया में क्या है बड़ा दिक्कत वाली बात है, लोग इतने अवेयर नहीं है हेल्थ को लेकर, अभी फिलहाल तो नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न में है, जितना इंडिया में नहीं है। क्या है, थायराइड की जाँच कराई, डॉक्टर ने गोली लिख दी, पता चला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 महीने बाद आपको आगे थायराइड का टेस्ट कराना है, मरीज अपने मस्ती से गोली खा रहा है, उसको ये बिल्कुल आभास नहीं कि वो गोली कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि एक सिटिंग में कभी भी किसी की थायराइड का लेवल का अध्ययन नहीं किया सकता कि उसको कितनी माइक्रोग्राम की गोली इसको सूटेबल रहेगी। तो ऐसे में थायराइड का टेस्ट कराया, थायराइड का टेस्ट कराने के बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 30 डेज बाद एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल निकलता है देन 3 मंथ लेटर वो नॉर्मल निकलता है, देन 6 मंथ लेटर देन एनुअली। अगर कहीं भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो आपको ऐसे में डोज का टाइट्रेशन आपको करना पड़ेगा, घटाना, जोड़ना या बढ़ाना या कम करना, इसलिए थायराइड की जांच करना आवश्यक है,
0: बहुत जरूरी है। श्रोता, डॉक्टर साहब सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने थायराइड की गोली लेना चालू किया है तो अपने डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें और वो जब जब आपसे थायराइड की जाँच कराने को कहे आप नियमित रूप से जाँच करा के डॉक्टर साहब को ज़रूर बताएं, इससे वो आपको किस पोटेंसी की दवा दी जानी है ये निर्धारित कर सकेंगे और आपको सही दवा, सही मात्रा में दवा दे सकेंगे।
1: जैसे मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल मेरे क्लिनिक का बताता हूँ, एक पेशेंट को किसी डॉक्टर ने, अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने लिखा बेचारा उन्होंने लिखा कि उन्होंने बोला था एक महीने बाद टेस्ट कराना, वो पेशेंट आठ साल तक वही गोली खाती रही और आठ साल के बाद उसको देखा जस्ट थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का उल्टा, उसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया, बेसिकली वेट लॉस हो गया बहुत ज़्यादा उसका, हाथ पैर कांपने लगे। कहने का मतलब आशय ये है कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कहेंगे इसको, इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा थायराइड इंटरवल रेगुलर इंटरवल पर टेस्ट कराते रहें।
0: और हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में एक एक डॉक्टर पर पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और यदि ऐसे में डॉक्टर ने आपसे कोई बात कही है, बहुत ज़्यादा वक्त ना दिया हो सकता है डॉक्टर ने, लेकिन एक यदि बात कही है तो उसको आपको गंभीरता से लेना आपका फ़र्ज बनता है, अपने स्वास्थ्य के लिए आपकी ये अपनी जिम्मेदारी बनती है।
1: मैं कहता हूँ इतने लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बार केवल TSH कई बार करा ले पर ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे
0: पूरा टेस्ट ना करा के सिर्फ TSH करा,
1: वो डॉक्टर को भी चाहिए थोड़ा TSH अगर करे तो ज्यादा बेटर है। अगर लगता है कि ओवरडोजिंग हो रही है तो साथ में T4 T3 अकॉर्डिंग टू नीड करा ले कम से कम, क्योंकि अगर पूरा टेस्ट बंद कराए पेशेंट कई बार भाग जाता, नहीं आता आपके पास में तो बोलो भैया एक छोटा सा एक TSH टेस्ट करा लो, इतने
0: क्योंकि एक महीने बाद, तीन महीने बाद, छह महीने बाद यदि टेस्ट कराने हैं तो उतना खर्चा अफोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने थायराइड और डायबिटीज़ के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन जाते जाते हमारे श्रोता एक और गाना आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाने भी आप उतने ही अच्छे सुनवा रहे हैं जैसे अच्छी बढ़िया सी जानकारी दे रहे हैं।
1: जीना यहाँ मरना यहाँ सुनवा दीजिए,
0: इसके सिवा जाना कहाँ, एक डॉक्टर के मुंह से ये गाना सुनने को मिल रहा है। चलिए हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत।

0: बहुत खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया है। यकीनन यहीं जीना है और यहीं मरना है, और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने डॉक्टर पर पूरा यकीन करना है। हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कि एक डॉक्टर के साथ कैसा संबंध बना के रखें वो?
1: देखिए, कहते हैं ना कि गुरु मित्र और डॉक्टर, इन सबसे बैर तो कभी नहीं पालना चाहिए घर पर तो
0: जी दोस्ती का रिश्ता ही रखना चाहिए,
1: आदर और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले ये धारणा आदमी को, मैं सबसे लोगों को बोलता हूँ, ये धारणा निकालिए कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम क्यों टेस्ट कराएं, हम क्यों, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, उसके माध्यम से कराएं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं चीज़ें हो रही हैं, वहाँ जाके आपका टेस्ट कराएं, लेकिन नियमित रूप से टेस्ट कराएं, जीवन शैली को परिवर्तित करें, ज़्यादा तनाव में ना रहें, तनाव हो तो उसको तनाव दूर करने की कोशिश करें,
0: अपने शरीर में आए छोटे छोटे परिवर्तनों को नोटिस करें और उन्हें भी डॉक्टर
1: इग्नोर ना करें, बिल्कुल उनको डॉक्टर से सलाह लें।
0: डॉक्टर सुशील शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कैसे बचे डायबिटीज और थायराइड से, इस विषय पर बहुत अच्छी हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, सारगर्भित जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: कैसे बचे डायबिटीज और थायराइड से, इस विषय पर सुशील शर्मा से बात कर रही थी तुलिका शर्मा। सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से हम प्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म चालबाज में अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मिस्टर इंडिया इस फिल्म में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बालाघाट के सांदीपनी विद्यालय वारासिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसकी शुरुआत बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौटकर बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: एक मैं जो है शायरी बोलना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश देश की दिल की धड़कन, जो दिल को छू जाता है और आपके हर कार्यक्रम मन में रच बस जाता है, तभी तो दीदी जी हर श्रोता पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता है, उसके बाद आपके चैनल में इंटर कर जाता है।
1: वाह, क्या बात है। अब हमारी बात किन से हो रही है वो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
2: चित्र को

0: धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को चित्रकूट से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
1: नमस्ते दिनकर साहब जी।
0: दीदी जी का परिचय भी जानना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
0: जी। बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी आपसे जो है बात हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, आपने हमारा फोन रिसीव किया। और मैं जानकारी चाहता हूँ किस चैप्टर पे आज बात होगी।
1: हाँ जी बहुत बढ़िया, आज हम आपको ले चलेंगे यादों के झरोखों से झांकने के लिए, जहाँ आपने बचपन के वो दिन गुजारे हैं खेल कूद के साथ।
0: जी जी जी जी जी, बचपन में तो एक था हम लोगों के जो पूर्वज थे किसान थे, और किसानी में मैं एक दिन याद कर रहा था कि एक जमाना था कि हम बैल गाड़ी में जो है मेला देखने जाया करते थे
1: जी।
0: चार चार पांच पांच बच्चे बैठ के जो है हमारे पूर्वज हमारे दादाजी हमारे पिताजी लेके जाया करते थे, और कहीं भी हम रिश्तेदारी में 30 से 40 किलोमीटर, और एक जो एक सरपट दौड़ होती है दीदी जी
1: जी,
0: बैलगाड़ी की सरपट, एक घंटे में 12 से 13 किलोमीटर वो सरपट दौड़ में हमारे बैल जाते थे।
1: बहुत बढ़िया।
0: और हम लोग 40 से 42 किलोमीटर हमारा एक रिश्तेदारी वहाँ हम 3 घंटे में पहुँच जाते थे
1: जी। हम जानना चाहते हैं आपने उस दौर में खेल कौन से खेले हैं दिनकर जी।
0: उस दौड़ में हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड से जो है एक सुर्रा होता था, और एक होता है गिल्ली डंडा होता था, जो है पेड़ में चढ़ के उतर के भी जो है ये खेल खेलते थे, और एक खेल होता था जो है आपका ये छुपा छुपी का खेल भी होता था बचपन में।
1: जी जी,
0: तो इसको भी खेला। और मैं क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा दीदी जी, जब वयस्क हुआ तो क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा, साइनिंग क्लब जो है बहेरी के नाम से जो है, और इससे मैं जुड़ा रहा। लेकिन ये बचपन के खेल मैंने बताया आपको
1: जी, मतलब जीवन के बहुत ही यादगार और खुशनुमा पल आपने बिताए हुए हैं उन दिनों।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बचपन की जो यादें होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब बचपना निकल जाता है व्यक्ति का तो वो फिर दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और उस समय गली मोहल्ला ही हमारा विशाल खेल का मैदान हुआ करता था।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक छुआ छुआल भी होता था, जो एक दूसरे कौन कितना तेज दौड़ रहा है उसको भी खेलते थे हम लोग
1: जी। एक दौड़ा उसको आउट किया, फिर जब दूसरा आके उसको छू के चला जाता था तो वो फिर से जिंदा हो जाता था, ऐसा ही कुछ था वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के खेल भी खेलते थे, और गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बुजुर्ग कहते थे कि गर्मी लग गई है। और मैं दीदी जी आपको ये बता दूं कि मुझे एक जो गर्मी के सीजन में 3-4 बार लू लगती थी।
1: ओहो,
0: तो हमारे यहाँ एक जो ये चने का साग होता सूखा है, हमारी दादी लगाती थी मुझे जो है मार मार के लगाती थी, और वो सूखे साग से ही मेरा सब कुछ सही हो जाता था, कोई ना कोई टेबलेट ना कुछ भी नहीं।
1: असल में क्या था ना दिनकर जी, उस समय धूल मिट्टी से सने हुए हम पसीने से तरबतर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे, और हमारे अंदर से ये आवाज आती थी कि थकना मना है जब तक घर से बुलावा ना आ जाए।
0: जी जी जी जी जी
1: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी।
0: और ये आपकी बातचीत मेरे प्रेमदास बाबा और सुन रहे हैं, बाजू में बैठे हैं वो भी जो हंस रहे हैं और सुन रहे हैं।
1: उनको भी अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे अपनी बातों से।
0: जी जी याद आ रहे हैं, वो सभी तो मुस्कुरा रहे हैं
1: जी। उनको भी हमारा नमस्कार कहिएगा।
0: नमस्कार कर लिया उन लोगों ने।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: जी। दीदी जी
1: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी मैम।
0: किनसे हमारी बात हो रही है, हम जान सकते हैं?
1: जी, लक्ष्मण सिंह चंदेली बात कर रहा, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से।
0: लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। लक्ष्मण जी, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे,
1: जी मैम,
0: जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बचपन के खेलों की जो हमने खेले हुए थे।
1: जी,
0: आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं?
1: जी देखिए, हमने खेले जैसे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, गिल्ली डंडा,
0: अच्छा,
1: अंडा डावरी।
0: इनमें आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था?
1: मैम कबड्डी खेलते थे ज्यादा।
0: कबड्डी खेलते थे?
1: जी जी।
0: अच्छा, ये तो हो गए बाहरी खेल। कभी घर में बैठ के वाला खेल भी खेला है आपने?
1: खो खो वगैरह तो कम खेलने लगी मैम।
0: जी
1: जी,
0: कबड्डी आपका पसंदीदा खेल था?
1: जी जी।
0: अच्छा, आज
1: और
0: हम
1: वॉलीबॉल भी मैन है।
0: वॉलीबॉल?
1: जी जी, हमारे यहाँ होती भी है बहुत ज्यादा वॉलीबॉल, मतलब मुख्य मानी गई हमारे दमोह जिला की टीम बजी भी है मैम, यहाँ गाँव भी हमारी बहुत राय की।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: जी जी,
0: असल में आजकल क्या हो गया है कि बच्चे चार दीवारी में सिमट के रह गए हैं, वो बाहर खेलना नहीं चाहते, मोबाइल में खेलेंगे, टीवी देखेंगे। तो आप
1: रुचि नहीं रही उनकी?
0: जी, रुचि नहीं रही। कुछ हैं बच्चे, कुछ जो खेलों में हम जिनके अभी रुचि है, वो बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं। और बच्चों के भी गेम वही हैं लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन कुछ के नाम जैसे चेंज हो गए हैं। हम छुपन छुपाई खेलते थे, वो हाइड एंड सीक बोलते हैं उसको है ना? तो आप अपने बच्चों को अपने पुराने दिनों के खेलों के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये खेला करते थे?
1: हाँ बता रही थी मैम, कल लगे हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से अपने कहा हमने खेला, तो जितने पुराने खेल हैं वे आप और खेले हैं, हमारा बताओ जी। हालांकि
0: अच्छा अच्छा
1: बच्चों के लिए
0: ठीक है। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुला जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं हमारे बचपन के खेलों की।
1: जी
0: जी, तो उस दौर में 80-90 का जो दशक था और उससे पहले भी हम जो खेल खेलते थे उसके बारे में, बचपन के दिनों के खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते थे बचपन में?
1: बचपन में हम तो गिल्ली डंडा खेलते थे।
0: अच्छा, गिल्ली डंडे का खेल कैसा होता है ये हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत से नए बच्चे हैं जो वो जानते तो हैं इस खेल का नाम कि गिल्ली डंडा ये है, पर उसको खेलते कैसे हैं ये वो नहीं जानते।
1: एक लकड़ी का डंडा होता था
0: जी,
1: और एक छोटी लकड़ी होती थी
0: जिसको गिल्ली कहते हैं।
1: उस लकड़ी को छोटी लकड़ी पर मारते थे, वो उछलते थे तो वो दूर चली जाती थी। जिसकी लकड़ी वो दूर जाती थी,
0: हाँ,
1: और उससे जो जिसकी लकड़ी पास हो जाती थी उस पर दाम पड़ता था।
0: अच्छा
1: जी,
0: दूर वाला है वो जीत जाता था।
1: वो जीत जाता था
0: जी,
1: पास वाला
0: हार जाता
1: नहीं
0: था।
1: जीतता था।
0: हाँ, आपको याद है अभी भी अपना खेला हुआ खेल?
1: तीन चार लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग भी खेल सकती थी
0: जी।
1: और एक बात ये भी है मैडम कि पुराने खेल जितने थे
0: जी,
1: वो जितने भी बच्चे लोग खेलते रहते थे तो हर प्रकार से कोई ना कोई व्यायाम उसमें होता रहता था,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहता था
0: जी। बहुत जरूरी है खेल। आजकल बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है, वीडियो गेम खेलने लगे हैं मोबाइल पर
0: जी,
1: तो इसमें स्थिर बैठे रहते हैं तो ये आंखों के लिए भी परेशानी होती है और थोड़ी दिमाग के लिए भी परेशानी होती है
0: जी। बहुत दिक्कत वाला है ये, घर में बैठ के बच्चे जो मोबाइल खेलते रहते हैं उनसे आंखें भी उनकी ख़राब होती हैं, सेहत पे भी गलत असर पड़ता है उनकी फिजिकल।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली।

0: कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गाँव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।

अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा

बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों,

आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों। हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए

5000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी बोलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लंबर नहीं मिल रहे थे,
कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लंबर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों

हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके अंदर बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है।
पीएम

0: स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भोपाल बीएचएल दशहरा मैदान में आज शाम 5 बजे से फिल्म पेदी के म्यूजिकल इवेंट पेदी की आवाज का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस होगी। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने गीत लिया है फिल्म आंखें से, और स्वर है लता मंगेशकर के, गीत लिखा है सुधीर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। इस गीत को सुनना चाहा है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

0: कभी कभी।
1: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म इज्जत से, स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय ने, श्रीमती रोशनी राय ने और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहिर की लिखी रचना को। धुन बनाई है खयाम ने और फिल्म है कभी कभी। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र वर्मा ने।

कार्यक्रम का अगला और बहुत ही खूबसूरत गीत पसंद किया है श्रोताओं ने। ये गीत है फिल्म धर्मात्मा का और इस गीत को गाया है मुकेश और कंचन ने। शब्द रचना हिंदीवर की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अ मुंबई। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की, शब्द रचना इरशाद कामिल की और प्रीतम की। गीत सुनना चाहा है आपने नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सभी बच्चे बूढ़े अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंचतंत्र की कहानियों का सिलसिला। काकोलू की हम की प्यारी प्यारी कहानियों को आगे बढ़ाते हुए पहली कहानी इस प्रकार है। महिला रौप्य नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उनका एक ही पुत्र था, जिसे लेकर महाराज अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजपुत्र के पेट में एक सर्प रहा करता था। उस उदरस्थ सर्प के कारण उसका स्वास्थ्य क्षीण होता चला जा रहा था।
1: हे ईश्वर, लोग पुत्र धन मांगते हैं, मुझे आपने पुत्र धन देकर भी इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ दिया। हर प्रकार से चिकित्सा करवा चुका हूं, अच्छे अच्छे वैद्यों, शास्त्रीय विधि से निर्मित औषधियां, कितने प्रकार के उपचारों के उपरांत भी राजपुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहा है।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आप मुझे लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं। युवा पुत्र माँ बाप के दुखों को बांटता है, उनकी चिंताएं दूर करता है, और मैं
1: नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम चिंता ना करो।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आपके हृदय में क्या दुख है। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं आज ही रात इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
1: उसी रात को राजपुत्र ने महल छोड़ दिया। दूसरे नगर में जाकर भिक्षाटन करके वो जीविका चलाने लगा और रात में एक विशाल देवालय में सोकर अपना समय व्यतीत करने लगा। जिस नगर में राजकुमार रहता था उसी नगर का राजा था बलि। उसकी दो कन्याएं युवा हो चुकी थीं। सूर्योदय काल में दोनों प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श करती।
2: प्रणाम पिताश्री।
3: सौभाग्यवती भवा।
2: पिताश्री, आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिलता है।
3: आयुष्मान भव पुत्री, मेरी कन्याओं को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा।
4: परंतु महाराज, मैं तो अपने भाग्य फल का ही उपभोग करती हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं।
3: दृष्टा, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बात कहने में तनिक भी भय नहीं हुआ तुम्हें?
4: भय? भय कैसा पिता महाराज, ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है। मैं भी सिर्फ अपने भाग्य का ही खाती हूँ।
3: अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने ईश्वर पर? मैं भी देखता हूँ भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देगा। महामंत्री, इस कटुभाषिणी कुमारी को ले जाकर इसका विवाह किसी परदेसी के साथ करवा दो, जिससे अपने कर्मों का भोग करे। जाओ।
4: जैसी आज्ञा पिताश्री।
1: मंत्रियों ने भी राजकन्या को ले जाकर उसका विवाह उस देवालय वासी राजकुमार के साथ कर दिया। राजपुत्री प्रियंवदा ने भी प्रसन्न मन से उसे पति देवता की तरह स्वीकार कर लिया। उसे लेकर वो दूसरे नगर में चली गई।
4: आइए स्वामी, आइए, आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं समीप के बाजार में जाकर कुछ घी, तेल, नमक, चावल लेकर आती हूँ। आप भी भूखे होंगे।
1: वस्तुएं क्रय करके लौटने पर उसने देखा राजपुत्र किसी सर्प के बिल पर सिर रखकर सो रहा है।
4: हे भगवान, ये क्या, स्वामी के मुख से सर्प फन निकाल कर बैठा है। हे ईश्वर, अब क्या होगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे, इस बिल से तो एक सर्प निकल रहा है। क्या करूं, हे ईश्वर, कैसे स्वामी के प्राण बचाऊं। ईश्वर, अरे ये सर्प तो कुछ बोल रहे हैं।
5: अरे दुष्ट, इस राजपुत्र को तुम इस प्रकार क्यों कष्ट दे रहे हो, निकल क्यों नहीं जाते इसके शरीर से।
6: पापी, इस वृक्ष के विवरण में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों घड़ों को तुमने क्यों दूषित कर रखा है।
5: दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गरम जल के साथ पीने से तुम मर सकते हो।
6: तुम्हारी भी औषधि को क्या कोई नहीं जानता। गर्म तेल अथवा खोलते हुए जल को बिल में डालने से तुम मर सकते हो।
4: आज का ये क्षण मेरे जीवन में कितना आनंद दे गया। मैं अभी ये उपाय करती हूँ, मेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है।
1: दोनों सर्प मर गए। धन और स्वस्थ पति को लेकर प्रियंवदा श्वसुर गृह लौट गई। इसीलिए कहते हैं, परस्पर विवाद में एक दूसरे के रहस्यों को व्यक्त करने वाले सर्पों की तरह मरते हैं। अब हम सुनेंगे रथकार की कथा। कान्यकुब्ज नगर में वीरवर नाम का एक रथकार अपनी पत्नी कामदमनी के साथ रहता था। कामदमनी व्याभिचारिणी थी। एक बार वीरवर ने सोचा,
7: मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसके उल्टा होने की चर्चा तो सुन चुका हूं, आज मैं स्वयं ही इसकी परीक्षा लूंगा।
8: सुनो प्रिय।
4: जी कहिए।
8: कल प्रातःकाल मैं समीप के गांव में जा रहा हूं, बहुत आवश्यक कार्य है, इस कारण कई दिन लग जाएंगे। भोजन के लिए कुछ बना दो तो अच्छा रहेगा।
4: अरे वाह, ये तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए, परंतु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। आप अति शीघ्र वापस हो आइएगा, मैं आपके लिए शुद्ध पकवान बनाऊंगी।

0: दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही वो रत्कार घर से बाहर चला गया। पति को बाहर गया हुआ समझकर कामदमनी ने किसी प्रकार दिन व्यतीत किया। शाम होते ही श्रृंगार कर अपने प्रेमी देवदत्त के पास जाकर बोली,
1: प्रिय,
2: हाँ?
1: मेरा दुष्ट पति किसी अन्य गांव को चला गया है।
2: अच्छा,
1: जब सब सो जाएं तब चुपचाप मेरे घर आ जाना, मुझसे तो अब ये विरह वेदना सही नहीं जाती है।
2: ठीक है, आ जाऊंगा।
0: और इधर की कहानी सुनिए। रथकार घर से तो निकला दूसरे गांव का कहकर, पर वो वन में दिन भर बैठा रहा। शाम होते ही घर के झरोके से प्रवेश कर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी देवदत्त भी आकर पलंग पर बैठ गया।
3: दुष्ट अधर्म, जी तो चाहता है अब ही निकल कर इनकी हत्या कर दूं। नहीं, जब दोनों साथ में हो तभी निकल कर इन्हें चौंका दूंगा और एक साथ ही मार डालूंगा।
1: कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी मैं।
2: हाँ, मैं भी।
1: मैं दरवाजे पर सांकल लगा कर आती हूँ।
2: ठीक है।
1: लो, मैं बैठ गई, अब बताओ। अरे अरे, ये मेरे पैर किससे टकरा है? कहीं ये मेरा पति तो नहीं? अवश्य वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी बताती हूँ। श्रीमान देवदत्त जी, आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं अत्यंत साध्वी, पतिव्रता एवं महासती हूँ। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी।
4: यदि ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
1: सुनिए, आपको यहाँ बुलाने का कारण अभी बताती हूँ। आज प्रातः काल मैं चंडिका मंदिर गई थी।
4: मंदिर? और तुम?
1: मेरी बात सुनो।
4: क्या?
1: जी हाँ, मैं देवी दर्शन के लिए गई थी। मेरे वहां पहुंचते ही देववाणी हुई। मैं तुमसे कैसे कहूं, परंतु तुम मेरी भक्त हो, तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से तुम 6 माह में विधवा हो जाओगे। मैंने देवी से पूछा, भगवती, जैसे आप मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति को जानती हैं, उसी प्रकार आप इस विपदा के प्रतिकार को भी जानती होंगी। कृपया मेरे पति के शतायु होने का उपाय क्या है बताएं। देवी बोली, उपाय है पुत्री, परंतु बड़ा कठिन है। तुम्हारे अतिरिक्त इस विपदा का प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है।
5: फिर मैंने पुनः निवेदन किया, देवी देवी, यदि वो उपाय मेरे प्राणों के परित्याग से भी संभव है तो भी मुझसे अवश्य कहिए, ताकि मैं शीघ्र उसे कर सकूं। देवी ने पुनः कहा,
1: यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ शैया पर उसका आलिंगन करो तो तुम्हारे पति की विपदा उस पर चली जाएगी और तुम्हारा पति शतायु हो जाएगा।
5: हे सज्जन, अब ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि देवी का कथन असत्य नहीं होगा।
4: भद्रे, अगर मैं अपने जीवन का दान कर तुम्हारे जैसी नारी के सिंदूर की रक्षा कर सकूं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आओ कामदमनी, आओ।
1: हाँ देवदत्त,
4: आओ।
1: हाँ।
3: हे कामधमनी, तुष्टों के कहने से मेरे मन में तुम्हारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं चारपाई के नीचे छिपा बैठा था। अब मेरा संदेह समाप्त हो

तुम पतिव्रत नारियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि पर पुरुष के साथ रहकर भी तुमने संयम का पालन किया। ये सब तुमने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए किया। तुम धन्य हो कामधमनी, तुम धन्य हो।

0: आइए मेरे हृदय से लग जाइए, मैं आज सबको बता दूंगा कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है।
1: मूर्ख वीरवर प्रत्यक्ष रूप से पाप करते हुए देखकर भी झूठे समाधान से संतुष्ट हो गया। इन सारी कथाओं को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि दूसरे की बातों से नहीं स्वयं विचार करके ही निर्णय लेना उचित है। इसके पश्चात स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को यह भी बताया कि यदि आप छोटी योनि के हैं तो समान वर्ग के साथ ही मित्रता या शत्रुता शोभा देती है। एक और कथा भी सुनाई। गंगा के तट पर एक आश्रम था, वहां के कुलपति महर्षि याज्ञवल्क्य थे। एक बार वे गंगा के पवित्र जल का आचमन करने ही वाले थे कि तभी किसी पक्षी के मुख से छूटी हुई एक चूहिया उनके हाथ में आकर गिरी। उन्होंने तपोबल से उस चूहिया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर आश्रम लौट आए। अपनी पत्नी से बोले,
2: भाग्यवान, इस कन्या को ले जाओ, इसे अपनी ही कन्या समझना, प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करो, ये ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद है।
3: जो आज्ञा स्वामी।
1: समय बीतने लगा।
3: स्वामी, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, इस कन्या के विवाह का उचित समय आ गया है।
2: देवी, आपने ठीक ही कहा, इसका विवाह मैं योग्य वर से ही करूंगा। यदि आप कहें तो भगवान सूर्य को बुलाकर उनके साथ पुत्री का विवाह करा दूं।
3: ये तो उत्तम विचार है, आप ऐसा ही

0: पुत्री, क्या सूर्यदेव तुम्हें पसंद हैं?
1: तात, ये तो अत्यंत दाहक हैं। मैं इनके साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप किसी श्रेष्ठ वर का आह्वान कीजिए।
0: मेघराज सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सूर्य को भी आच्छादित कर देते हैं। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ।
1: नहीं पिताश्री, मेघराज तो काले हैं। मैं अन्य श्रेष्ठतर से विवाह करूंगी।
0: मेघराज को वायुदेव अपने आघात से छिन्न भिन्न कर देते हैं। पवन देव मेघराज से श्रेष्ठ हैं।
1: पवन देव? नहीं नहीं तात, पवन देव अत्यंत चपल हैं। आप उनसे भी श्रेष्ठ का आह्वान कीजिए।
0: पुत्री, मुझे लगता है पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत हैं, जो पवन देव के हिलाए भी नहीं हिलते।
1: पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत? परंतु पिताजी, वो तो बहुत ही कठोर और निश्चल है। आप किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से मेरा विवाह करें तो अच्छा हो।
0: तो फिर पर्वतराज से श्रेष्ठतर तो चूहे हैं, जो अनायास ही पर्वत में भी छिद्र कर देते हैं। तो क्या मूषक राज तुम्हें पसंद है? मैं उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं?
1: अवश्य तात, अवश्य। इनसे श्रेष्ठ वर तो त्रिभुवन में कोई हो ही नहीं सकता है। आप मुझे चूहिया बनाकर इनसे मेरा विवाह करवा दें।

0: ताकि मैं गृहिणी धर्म का पालन कर सकूं।
1: तथास्तु, आयुष्मान भव।
2: याज्ञवल्क्य ने ऐसा ही किया। इस कथा को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि समान वर्ग या योनि में ही मित्रता या शत्रुता लाभदायक होती है और वही उचित भी है। इसी कारण इतने सुयोग्य पात्रों को छोड़कर उस मूषिका ने समान योनि के मूषक को ही चुना। एक बार मेघवर्ण के पूछने पर स्थिर जीवी ने कहा, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की योजनाएं बना रहा है। वहां उलूक राज को उनके ही मंत्रियों के विरुद्ध भड़का रहा है। मेघवर्ण ने उससे पूछा कि आगे क्या होगा और वो शत्रुओं के पास क्यों गया, तो स्थिर जीवी ने बताया,
3: मित्र मेघवर्ण, मैं बस उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में था। मैंने उनमें फूट डाल दी थी। अब वो उलूक राज अपने ही बंधुओं द्वारा पीड़ित हैं। देखा, मैंने बीच में कार्य को नहीं छोड़ा।
4: तात, आपका कथन यथार्थ है। महान व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होते हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को विघ्न के भय से नहीं छोड़ते। आपने बुद्धि के द्वारा मेरे शत्रु का विनाश करके मेरे राज्य को निष्कंटक कर दिया है। मैं अत्यंत भाग्यवान हूं।
3: नहीं महाराज, भाग्यवान तो मैं हूं। आपके सानिध्य में किया हुआ कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला गया। जो कार्य विचार और बुद्धि से किया जाता है वो विजयकारक होता है।
4: नीति शास्त्र निश्चय ही फलकारक होता है। नीति शास्त्र के बल से ही आप मेरे शत्रु अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गए और उसके गुप्त भेदों को जानकर उसे सपरिवार विनष्ट कर दिया।
2: और इस प्रकार एक दूसरे का धन्यवाद कर दोनों ने कृतज्ञता स्वीकार की। आज काक और उलूक की कथा समाप्त हुई। काकोलुकियम के पश्चात हम सुनेंगे लब्ध प्रणाश अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक फिजिक्स टीचर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

समय की कद्र जो करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर प्रयास सफलता देता है। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, भारत एक विकासशील देश है जहां आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम पोषण योजना, जो पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे नियमित रूप से विद्यालय आए। बहनों, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि कुपोषण को समाप्त करना। बहनों, बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इस योजना के माध्यम से उन्हें संतुलित आहार प्रदान किया जाता है और जब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ती है और गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। पौष्टिक भोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। सभी बच्चों को एक ही स्थान पर भोजन मिलने से समानता की

0: भावना भी विकसित होती है और भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, फल भी शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहनों, पीएम पोषण योजना के अनेक लाभ हैं, जिनका प्रभाव समाज और बच्चों दोनों पर पड़ता है। जैसे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में सुधार, गरीबी में राहत, बाल श्रम में कमी और सामाजिक विकास। बहनों, पीएम पोषण योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इनकी निगरानी करते हैं, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो सके। पीएम पोषण योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की भूमिका निभा रही है। यह न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। यदि इस योजना को सही ढंग से और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत सरकार में कुपोषण और अशिक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार पीएम पोषण योजना देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाली एक मजबूत योजना है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ज्वार भाटा।
1: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मना।

0: रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम ज्वार भाटा। बहनों, भारत की प्रसिद्ध प्रसारण संस्था आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती सरिता सलील जी, जो एक वरिष्ठ कवियत्री हैं। आपने पिछले 45 वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना और सराहा है। सरिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: सरिता जी, आपके जीवन में आकाशवाणी का क्या महत्व रहा है?
2: आकाशवाणी का महत्व तो वही बता सकता है जो उसे सुनता है, और मैंने तो बचपन से ही रेडियो को सुना है, तो मेरे ऊपर तो काफी उसका प्रभाव भी पड़ा है और उसका महत्व भी मैंने जाना है कि आकाशवाणी को सुनने से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे अंदर कितने परिवर्तन आते हैं, और वो शायद हम नहीं जान पाते लेकिन सामने वाला व्यक्ति जरूर जान जाता है जो हमसे रूबरू होता है, क्योंकि हम उसको रेडियो को सुनकर उसकी भाषा शैली, उसकी प्रस्तुति, गीत संगीत, समाचार और बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें, लोक संस्कृति, कहने का मतलब कि हमारे जो व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है वो हमें आकाशवाणी से यानी रेडियो से मिलती है। जी
1: अच्छा सरिता जी, क्या आपको बचपन में रेडियो सुनने की कोई विशेष याद आज भी याद है आपको कि आपने कोई विशेष प्रोग्राम सुना रही है?
2: जी जी जी कल्पना जी, बिल्कुल याद है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी, क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो सुनती थी और मेरे पापा सुबह से यानी जब से सभा शुरू होती थी और रेडियो शुरू कर देते थे, तो जो मंगल ध्वनि वगैरह जो बस्ती में शुरू में
1: जी जी
2: उनसे हम लोगों की शुरुआत होती थी दिन की, और चूंकि स्कूल में पढ़ते थे तो उसी के साथ हमको जगाया जाता था, और बिस्तर छोड़ते छोड़ते मालूम है कल्पना जी हम लोगों को 6:30 हो जाते थे कि अब रामचरित मानस आने लगा।
1: अच्छा
2: जी जी, और उसके बाद हम लोग दौड़ लगाते थे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि 7 बजे फिर स्कूल भी जाना है, और स्कूल जाते जाते जैसे ही 7:10 या 7:05 पर जो प्रादेशिक समाचार आते हैं उसकी वो संकेत ध्वनि बजती है और हम लोग स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब कि बचपन ही मेरा जो है रेडियो से ही पूरा टाइम जुड़ा हुआ था।
1: अच्छा अच्छा सरदा जी, आपके अनुसार आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृत और संगीत को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है कल्पना जी, संस्कृति और संगीत साथ में बहुत सा ज्ञान विज्ञान भी, सिर्फ संस्कृति और संगीत ही नहीं, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, बहुत सारे समाचार, बहुत सारी योजनाएं हमारे देश के कोने कोने तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची।
1: अच्छा
2: रेडियो जी, रेडियो जो है वो हमारे लिए जैसे सूर्य की रोशनी सब तरफ देखती होती है
1: जी जी,
2: वैसे ही रेडियो ने हर आम और खास तक हमारी सारी योजनाएं, हमारी संस्कृति को, हमारे समाचारों को, हमारे संगीत को बहुत ही तरीके से पहुंचाया और हर किसी को इसका लाभ दिया। बचपन का किस्सा थोड़ा सा और सुधारना चाहूंगी, क्योंकि बात मैं जब 7 बजे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उसके बाद जब घर लौटे और उसके बाद रात में क्या होता था, शाम को खेलने के बाद हम लोग 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा दी, और जैसे ही 8:45 पर दिल्ली से समाचार आते थे और पापा हमारे समाचार सुना करते थे तो हम लोगों के कान लगे रहते थे कि जैसे ही समाचार शुरू हुए मतलब कि 9:15 बज गए और हम लोगों के बच्चे बंद, मतलब पढ़ाई करते हम आप खाने का टाइम,
1: अब खाने का टाइम हो गया।
2: और पापा क्या करते थे, मतलब एक मधुर स्मृति है ये, हम लोग हमेशा बैठते हैं तो याद करते हैं कि पापा उस समय थोड़ा सा रेडियो की आवाज धीमी कर देते थे कि बच्चे अभी जल्दी सूट जाएंगे, उनको धीमा कर देते थे, तो हम लोगों के काम वही लगे रहे कि अब जो है ये बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं, बहुत ही सुखद यादें हैं बचपन की रेडियो से जुड़ी हुई, वही बताना चाह रही थी आपको।
1: अच्छा सर, ये 90 वर्षों की इस यात्रा को आप किस प्रकार देखती हैं?
2: देखिए कल्पना जी, सबसे पहले बहुत ही गर्व और खुशी की बात है ये कि एक 90 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही यादगार यात्रा जो है यहाँ तक आ पहुंची है, और हम सभी के अनुभव के साथ जुड़े हैं क्योंकि हम लोग भी आज उस उम्र में आ गए हैं कि एक लगभग 40-45 साल से हम रेडियो को सुन रहे हैं। अब तो देश की संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई है तो वो रेडियो ने निभाई है।
1: क्योंकि
0: हमने बिल्कुल क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम थे। बच्चों के लिए जैसे बाल मंडली होती है, बाल सभा होती है ना, और किसानों के लिए होता है हमारे यहाँ कार्यक्रम, महिलाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं का अलग है, शहरी महिलाओं का अलग है, और युवा श्रोताओं के लिए युववाणी है। तो इस तरह से हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही सकारात्मक भूमिका हमारे 90 साल की यात्रा में लोगों ने उसे महसूस किया है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में वो निखार आया है ये सब सुन सुन के।
1: अच्छा सरता जी, ये मतलब एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है, और बनी है तो क्यों बनी है?
0: बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अगर हम इस यात्रा में कुछ नया भी जोड़ना कर शुरुआत करें, कुछ नए विषय, कुछ आधुनिक तकनीक है ना, इसके साथ अगर हम बहुत सारी कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे और दिए भी जा रही है, ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी आकर्षित होगी। और इसको और भी कहते हैं ना कि पंख मिलेंगे और उड़ाने मिलेंगी आगे, नई मंजिलें, नए उनको सोचने के लिए विकास होगा, सोचने की क्षमता में विकास होगा, है ना, तो हर तरफ जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही लाभदायी होगा। और कल्पना जी, आकाशवाणी का एक सबसे बड़ा महत्व मैं अंत में बताना चाहूंगी, तो ये है कि रेडियो सुनते वक्त हमें किसी एक जगह पर स्थिर होके नहीं बैठना पड़ता।
1: सही बात,
0: कहने का मतलब कि मैं हम अपने दैनिक कार्य करते भी रहते हैं और रेडियो सुनते भी रहते हैं।
1: सही बोल रहे हैं,
0: ये और साधनों में ऐसा नहीं होता और माध्यमों में ऐसा नहीं, लेकिन रेडियो के साथ सबसे बड़ा सकारात्मक जो वो है बिंदु वो ये है कि इसके साथ हम अपने काम भी करते रहते हैं और हम गाने भी सुनते रहते हैं, समाचार भी सुनते रहते हैं और अपनी लोक संस्कृति का भी ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व रेडियो का ये है आज के दौर में।
1: सरिता जी, आप कवित्री भी हैं, जानी तानी हस्ती भी हैं, तो जैसे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर हम आपकी कविता के माध्यम से आप आकाशवाणी को कोई शुभकामनाएं दीजिए या संदेश दीजिए, जिससे हमारी बहनों को भी प्रेरणा मिले या उनको भी अच्छा लगे।
0: शुभकामनाएं तो मेरी है ही, लेकिन चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है तो मैं महिलाओं के लिए चार पंक्तियां कहना चाहूंगी
1: जी,
0: अपने काव्य पाठ के रूप में
1: जी।
0: कभी राधा बनी संग रात ही घर में चली आई, कभी राधा बनी संग रात ही घर में चली आई, कभी लक्ष्मी बनी मैं घर तेरा भर।

0: और पाप को हरने चली आई, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी।
1: बहुत अच्छा लगा चर्चा जी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चर्चा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: बहनों, भारत सरकार ने फरवरी 2026 में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से लॉन्च किया गया। बहनों, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। इस कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसी समस्या से बचाव के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 28 फरवरी 2026 स्थान अजमेर राजस्थान से किया गया। बहनों, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना और आने वाली पीढ़ी को कैंसर मुक्त भारत की दिशा में सुरक्षित बनाना है। यह टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध है। बहनों, यह टीकाकरण महिलाओं की

मृत्यु दर कम करने में सहायक और लंबी अवधि की सुरक्षा प्रदान करता है। बहनों, HPV टीकाकरण अभियान भारत की बेटियों के लिए एक जीवन रक्षक पहल है। यह न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यदि यह अभियान सफलतापूर्वक लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत को कैंसर मुक्त समाज बनाने में मदद मिलेगी। बहनों, आइए सुनते हैं गीत सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, जिसे गाया है कुमार शानू, अलका याज्ञिक, जूली मुखर्जी ने।

बहनों, अभी हमने सुना गीत सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, जिसे गाया था कुमार शानू, अलका याग्निक, जूली मुखर्जी ने, और फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन। बहनों, सौंफ का शरबत एक पारंपरिक और स्वास्थ्य वर्धक पेय है, जिसे विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पिया जाता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जिसे यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत में पुराने समय से ही सौंफ का उपयोग भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर और औषधि के रूप में किया जाता रहा है, और इसी सौंफ से बना शरबत स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। और इसके लिए आवश्यक सामग्री है सौंफ, पानी, चीनी, नींबू का रस, काला नमक, साधारण नमक और बर्फ के टुकड़े। इसको बनाने की विधि है, सौंफ को एक कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। इससे सौंफ नरम हो जाती है। इसके बाद भींगी हुई सौंफ को उसी पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से एक मुलायम पेस्ट बन जाएगा। अब इस पिसे हुए मिश्रण को छन्नी या साफ कपड़े की सहायता से छान लें। अब इस अर्क में पानी डालें और उसमें चीनी मिलाएं। चीनी को अच्छे से घुलने तक चलाते रहें। इसके बाद काला नमक, साधारण नमक डालें, जिससे शरबत का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और अंत में नींबू का रस मिलाएं, जो शरबत को हल्की खटास और ताजगी देता है। और अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा परोसे। बहनों, सौंफ का शरबत ठंडा ही अच्छा लगता है। इसे आप गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने के पत्तों से सजाकर मेहमानों को परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि दिखने में भी आकर्षक लगता है। बहनों, इस शरबत के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि सौंफ शरीर को ठंडक प्रदान करती है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, पेट की गैस और जलन को कम करती है, मुंह की बदबू को दूर करने में सहायक होती है, गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है। बहनों, सौंफ का शरबत एक सरल, सस्ता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पेय है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से घर पर बना सकता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
2: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
1: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेशे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ गीत और भजन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रकाश तिवारी की गाई गीत और भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के अंत में प्रकाश तिवारी का गाया ये भजन।

0: प्रकाश तिवारी के गाय इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अभी आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत ओपी नैयर का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए आर पार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत भी ओपी नैयर का ही है।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए भरोसा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत रवि का।

0: भरोसा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
2: साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे।
1: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए यह नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। वह यहां जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और भव्य सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे और भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री NTPC में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 513 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आगरमालवा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोत पूजन एवं कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। शिवपुरी जिले में विकासखंड कोलारस, नरवर, पिछौर, खनिया धाना समेत अन्य स्थानों पर जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जल स्रोतों के बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
3: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
3: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
4: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
3: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
3: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
6: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
3: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
7: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज का जो पहला गीत है, जिसे हमने लिया है दबंग फिल्म से, आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की, शब्द रचना फैज़ अनवर की और संगीत साजिद वाजिद का। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और विशाल भट्टा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से इस गीत को पसंद किया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी की। तो इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं दबंग फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा पुश्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और साथियों ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब सुनिए अनाड़ी फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। शब्द रचना है समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, कोटवा नारायणपुर बलिया से इस गीत को पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। तो आइए इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुजातबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। आप सबकी पसंद का गीत सुनिए जिसे हमने लिया है मुंबई का बाबू फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, शब्द रचना मजरू की और संगीत एच डी बर्मन का।

बम्बई का बाबू, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अभी इस फिल्म का गीत आपने सुना। शब्द रचना मजरू की थी और संगीत ST बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं पाकड़ू झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु भगत, किसु तासु। सारणी जिला बैतूल से इस गीत को पसंद कर रहे हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाबराव निम्बाड़कर और संदीप पाटिल। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है पटेल नगर मालोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और घंटाघर चौक खंडवा से इसे पसंद कर रहे हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। शब्द रचना देव कोहली की है और संगीत राम लक्ष्मण का।

0: हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वह यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन ना खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का चौथा भाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए चंगन सेरी सीपी माधवन नंपुथरी का कर्नाटक गायन। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 3 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है नित्यानंद द्विवेदी का ही गाया ये विकास गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक लोक भजन आवाज नित्यानंद द्विवेदी की।

नित्यानंद द्विवेदी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रकाश तिवारी का गाया ये भजन, रचना तुलसीदास की है।

प्रकाश तिवारी के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम के गाए फिल्म संघर्ष के इस गीत से। शब्द रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का।

संघर्ष इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज़ में, शब्द रचना थी समीर की और संगीत जतिन ललित का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म साजन से, आवाज़ अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। आवाज कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, शब्द रचना महबूब की है और संगीत इस्माइल दरबार का।

अब सुनिए हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, शब्द रचना महबूब की और संगीत इस्माइल दरबार का। अभी आपने सुना।

अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत आप सुनिए शैली शैलेंद्र की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का।

0: अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली

बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्प्लिट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्प लता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, इनसे मिलिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए प्रख्यात कवि गीत चतुर्वेदी से भेंटवार्ता। बातचीत कर रहे हैं शुभम तिवारी।
1: साथियों, कहा जाता है कि साहित्यकार जो भी कहता है वो सच होता है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि हमेशा साहित्यकारों से और साहित्य से अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। आज ऐसे ही सच के वक्ता और अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध चर्चित और युवा कवि श्री गी चतुर्वेदी जी हमारे स्टूडियोज में हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी।
2: धन्यवाद
1: गीत जी। आप आकाशवाणी के श्रोताओं से मुखातिब हैं इस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो सबसे पुरानी स्मृतियां हैं
1: जी,
2: उसमें आकाशवाणी का बहुत योगदान है। संगीत और कविताओं की जो स्मृति है उसमें आकाशवाणी बचपन से सुनता आ रहा हूं मैं, इसलिए एक अलग ही अनुभूति है यह। तो बहुत शुक्रिया आपको इसके लिए।
1: गीत जी, जैसा मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि साहित्यकार जो कहता है वो सच कहता है, मौलिक कहता है, आप भी ऐसे सच रचते आए हैं, तो यही जानना चाहेंगे कि ये सच लिखने की प्रेरणा, ये साहित्य से जुड़ने की प्रेरणा कैसे शुरू हुई?
2: साहित्य की एक पृष्ठभूमि तो हमारे परिवार में ही थी
1: जी।
2: बहुत सारी किताबें थीं और पढ़ने की शुरुआत मेरी जो है वो 11-12 साल की उम्र में हुई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन और मेरे पिता, ये तीनों बहुत पढ़ाकू थे। उन्हें किताबें पढ़ता हुआ देखता तो मेरा भी मन करता था कि ये क्या पढ़ रहे हैं ये लोग। सब अपनी अपनी पसंद से पढ़ते थे। वो मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं इसे पढ़ूं। मैंने एक दिन उठा लिया पढ़ने के लिए तो मुझे डांट पड़ गई
1: जी,
2: और तुरंत जो है मुझे प्रेमचंद की किताब दी गई और मुझसे कहा गया कि तू अच्छा बच्चा है, तू प्रेमचंद पढ़ा कर। तो मुझे उनका ये संवाद, उनका ही उनकी ये बात आज तक याद है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रेमचंद पढ़ते हैं। तो इस तरह पढ़ने की शुरुआत हुई और वो 13 साल की उम्र में मैंने बच्चों के लिए एक कहानी लिखी, छोटी सी कहानी, और उसे लिख करके हमारे ज़माने की एक पत्रिका थी बच्चों की जो अब भी निकलती है और बड़ी चर्चित पत्रिका थी हमारे समय में, टिंकल नाम था उसका, और अंकल पै उसके संपादक हुआ करते थे। मैंने उन्हें भेज दी और भेज करके मैं भूल गया। 6 या 7 महीने बाद मैं अपनी क्लास में बैठा था, 9वीं कक्षा में था मैं
1: जी,
2: और पीछे के किसी बच्चे ने आकर के मुझसे पूछा कि ये वाला गीत चतुर्वेदी क्या तू है
1: जी।
2: तो मैंने देखा टिंकल के पन्ने पर वो कहानी छप के आ चुकी थी और अंकल पै ने उसे बहुत खूबसूरती से छापा था, उसे संपादक की पसंद या एडिटर्स चॉइस का लोगो लगा करके छापा था। तो ये पहली चीज़ थी जो 13 साल की उम्र में छपी थी और यहीं से दिलचस्पी बढ़ गई लिखने में। ऐसा लगा कि हाँ, हम जो लिखते हैं या हम जो सोचते हैं उसे 4 दूसरे लोग पढ़ने वाले, स्वीकार करने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे कविताओं की तरफ मैं मुड़ गया। 17 की उम्र में मेरी पहली कविता छप चुकी थी
1: जी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो सत्साहित्य रचते हैं उसके लिए आपने बहुत पढ़ा होगा, चाहे छायावादी रचनाकारों को पढ़ा होगा, प्रगतिशील रचनाकारों को पढ़ा होगा, प्रयोगवादियों को पढ़ा होगा, किस रचनाकार ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आपको और प्रेरित किया कि आप भी लिखें और क्यों?
2: पढ़ना तो, पढ़ने की लत तो इस तरह से थी कि जब शुरुआत में लिखना शुरू किया
1: जी,
2: तो पिता ने कहा कि बेटा अगर अच्छा लिखना है तो एक मंत्र ध्यान में रखो कि अगर तुम एक पंक्ति लिखते हो तो उसके पीछे 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए। जो एक चुनौती की तरह सामने आ गया कि अगर आप लिखना चाहते हैं सच में तो अच्छा पढ़िए, दुनिया का सारा अच्छा साहित्य, अच्छे कवि, इन सबको पढ़िए। और मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। अधिक पढ़ने या खूब या दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने में एक जो चीज़ ये बनती है कि आप किसी एक को पसंद नहीं कर पाते, आपकी पसंद अनेक हो जाती है
1: जी।
2: एक साथ बहुत सारे कवियों को, एक साथ बहुत सारे लेखकों को आप पढ़ते हैं। नेरुदा को मैंने पढ़ा जो स्पेनिश भाषा के महाकवि हैं, बोर्हेस को मैंने पढ़ा जो कि स्पेनिश भाषा के बहुत बड़े लेखक हुए। इन दोनों ने जो है मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया। तो कविता और कहानी, इन दोनों क्षेत्रों में मैं नेरुदा और बोर्हेस के प्रति बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ, क्योंकि आज भी अगर कहीं मैं फंसता हूँ तो पलट कर इन्हीं की किताबों की तरफ जाता हूं मैं।
1: वहीं जाना पड़ता है लौट
2: जी। हाँ जी हाँ।
1: आजकल के जो बच्चे हैं जो साहित्य से दूर हो गए हैं, वो बच्चे ज़रूर बहुत अच्छे जैसा आपने अभी कहा था, लेकिन वो साहित्य से दूर हो गए हैं, उसके कई कारण हम दूसरे भी गिना सकते हैं कि डिजिटल

0: आज भी अगर कहीं मैं फंसता हूँ तो पलट कर इन्हीं की किताबों की तरफ जाता हूँ मैं,
1: वहीं जाना पड़ता है लौट कर।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: आजकल के जो बच्चे हैं जो साहित्य से दूर हो गए हैं, वो बच्चे ज़रूर बहुत अच्छे हैं जैसा आपने अभी कहा था, लेकिन वो साहित्य से दूर हो गए हैं, उसके कई कारण हम दूसरे भी गिना सकते हैं कि डिजिटल

0: पर जो है इतना साहित्य है, इतना साहित्य है, हर दूसरा नौजवान जो है किसी न किसी तरीके से कविता लिखना चाहता है। तो इस डिजिटल दौर में जो है कविता को लेकर, और एक चीज़ देखें हम, इसी डिजिटल दौर से जुड़ी हुई चीज़ है कि इन्हीं पिछले 5-7 वर्षों में जब से ये कंप्यूटर और मोबाइल पर कविता और साहित्य का जोर बढ़ा है, तभी से नौजवानों के बीच अलग अलग तरह के लिटफेस्ट होने लगे हैं
1: जी।
0: रेखता जैसा लिटफेस्ट या दूसरे
1: प्लेटफॉर्म्स
0: जो हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि इसमें इस डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा योगदान है। कई सारे कवि जो लगभग विलुप्त हो जाते या उन्हें जानना बड़ा मुश्किल होता, वह आज लोगों के बीच चर्चित हैं, तो अपनी डिजिटल उपस्थिति के कारण। वे इस दुनिया में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं डिजिटल दुनिया में उपस्थित हैं, और इस कारण उन्हें नौजवान बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: तो क्या उनकी रचनाओं में आपको वो बात साकार होते हुए लगती है कि एक पंक्ति के पीछे 1000 पंक्तियाँ हों?
0: ये तो मैं किसी दूसरे के लिए तो कभी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी दूसरे के मन में झांक करके तो मैं कैसे देख पाऊंगा। ये एक निजी बात है जो मैं अपने लिए मंत्र मैंने बना रखा था, और ज़रूरी नहीं कि वो किसी को दिखे भी
1: जी।
0: आपका अपना एक मंत्र होता है, आप चाहते हैं कि आप अपने कमिटमेंट पर, अपनी नज़र में, अपने पैमानों पर खरा उतरना चाहते हैं। दूसरों के बारे में कहना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है।
1: आप तमाम कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, भोपाल में भी और दिल्ली में भी, बाहर भी जाते रहते हैं। इन कार्यक्रमों में देखकर आपको हिंदी की जो दशा और दिशा क्या नज़र आती है, इस बारे में बताएं थोड़ा।
0: हिंदी की दशा बहुत अच्छी है, बहुत उज्जवल है, और पिछले कुछ वर्षों में तो ख़ास करके हिंदी के प्रति लोगों का रुझान, लोगों का लगाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लोग हिंदी सीख रहे हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती वो भी हिंदी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी भी हिंदी आती है उस हिंदी में लिख रहे हैं। तो हिंदी भाषा के रूप में हिंदी ने लोगों के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाया है। एक और उदाहरण देखते हैं इसमें
1: जी,
0: कि जैसे पुस्तक मेले होते हैं, हर साल दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला होता है, वहाँ किताबों की और ख़ासकर हिंदी किताबों की बिक्री हर साल बढ़ रही है
1: जी।
0: अगर कोई चिंताजनक स्थिति होती तो वो बिक्री घट जाती,
1: बिल्कुल
0: वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अंग्रेज़ी के जो स्टार लेखक हैं, जिनकी किताबें अंग्रेज़ी में बिकती हैं, खूब बिकती हैं, वो अब ये चिंता करने लगे हैं कि उनकी किताबों के हिंदी अनुवाद भी आया करें, और वो आ रहे हैं और वो उसी तरह बिक भी रहे हैं। यानी हिंदी की उपस्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है।
1: एक सवाल का जवाब मैं और जानना चाहूँगा अंत में आपसे, कि जो हमारे युवा साथी हैं जो साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो वो अपना अगर साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उसमें अपनी मौलिकता की शार्पनेस और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने अनुभवों से बताइए कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं?
0: वो पढ़ सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी नौजवान को अच्छा लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अच्छी पढ़ाई से एक लाभ ये होता है कि हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क करना आ जाता है
1: जी।
0: और कविता में, साहित्य में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें कविता इफरात में है, खूब कविता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत सारी कविता है, लेकिन उसमें से कौन सी कविता अच्छी है ये जानने के लिए हमें एक विवेक विकसित करना होता है, और विवेक जो है अच्छी चीज़ों को पढ़ने से ही आता है
1: जी।
0: अच्छे कवि को पढ़ें, अच्छे कवियों को, और कई बार शुरुआत में ना ये भी समझ में नहीं आता कि पढ़ने की शुरुआत की कहाँ से जाए। ऐसे में फिर से मैं वहीं आऊँगा कि ये डिजिटल दुनिया जो है इसने कई सारे दरवाजे खोले हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कविता कोश हैं
1: जी,
0: हिंदी समय है, हिंदी पत्रिकाएँ हैं, इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर न केवल हिंदी की बल्कि दुनिया की कई भाषाओं की कविता हिंदी अनुवाद में पूरा का पूरा जखीरा उपलब्ध है। वहाँ पर, वहाँ जाकर के पढ़ना शुरू करें, एक कवि को छुएं, जिन कवियों का नाम सुन रखा है उन कवियों को छुएं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जब आप रचनाएं पढ़ते हैं और ख़ास करके जब आप किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैंने कैसे लेखकों को पाया, मैंने नेरुदा की किताब पढ़ी, नेरुदा की किताब में 5 दूसरे लेखकों का जिक्र था, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया
1: जी।
0: मैंने निर्मल वर्मा की किताबें पढ़ी, निर्मल वर्मा की डायरी है, धुंध से उठती धुन, किसी भी नए लेखक के लिए एक मार्गदर्शक पत्रिका की तरह मार्गदर्शक जो कंपास होता है उसकी तरह काम कर सकती है वो किताब। उसमें 50

0: लेखकों के नाम हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके पढ़ा। तो इस तरह अब निर्मल वर्मा जैसा लेखक यदि किसी दूसरे लेखक को उद्धृत कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो बहुत गुणवत्ता वाले लेखक को उद्धृत कर रहे हैं वो
1: जी।
0: तो आप आंख मूंद करके उनके रिकमेंडेशन पर जा सकते हैं। इस तरह देखिए पढ़ने का आपका एक दायरा विकसित हो गया, एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से पांचवा,
1: और ये लिंक कभी खत्म नहीं होगा,
0: और ये लिंक कभी खत्म नहीं होगा। और ये सारे के सारे जो हैं गुणवान लेखक हैं, गुणवत्ता वाले लेखक हैं, यानी इनको पढ़ते हुए आप ये सीखेंगे कि अच्छा क्या होता है। अच्छे की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: नया क्या है, नए की नया समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पुराना क्या था। कि सारे लेखक आपको बताएंगे कि पुराना ये था, तो आप नया ये कर सकते हैं। लेखकों को कोई भी लेखक आपको लिखना नहीं सिखा सकता, किसी भी लेखक को पढ़ के आप कविता लिखना नहीं सीख सकते, लेकिन उस लेखक को पढ़ के ये सीख सकते हैं कि किसी कविता या किसी रचना को ग्रहण कैसे किया जाए। जैसे जैसे आप ग्रहण करने का हुनर विकसित करेंगे, आप पाएंगे कि आपके लेखन में निखार आ रहा है।
1: अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी आपकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं उनमें से एक छोटी सी रचना हमारे श्रोताओं के लिए।
0: ये कविता है, इसका शीर्षक है उत्स। उत्स यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उत्स। और ये कविता कैसे आती है, कहाँ से आती है, इसी प्रक्रिया पर छोटी सी कविता है, 6-7 पंक्तियों की। तुमने पूछा कविता कहाँ से आती है। काले कोलतार से आती है, कमीज के उस हिस्से से जो पतलून के भीतर है। एक पैर की चप्पल के अकेलेपन से आती है, लाइब्रेरी के भीतर किताबों के खर्राटों से। सिर की एक अजनबी नस में हुई पीड़ा से, तुम्हारे ना पढ़ने से, और कभी कभी मेरी खांसी से आती है। मेरी हिचकी एक अधूरी छूटी कविता द्वारा लगाई गई पुकार है।
1: बहुत अच्छी कविता, और मैं ये कह सकता हूँ कि आपने गद्य के माध्यम से भी और पद्य के माध्यम से भी हमारे युवाओं को समझा दिया कि कविताएं आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि ये कैसे समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है और पुराना क्या है, जब आप ये जान जाएंगे तो आप खुद एक श्रेष्ठ रचनाकार बन सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आकाशवाणी के श्रोताओं से मिलने के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रख्यात कवि गीत चतुर्वेदी से भेंटवार्ता। बातचीत कर रहे थे शुभम तिवारी। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं क्रिमिनल फिल्म के गीत से, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत एम करीम का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना क्रिमिनल फिल्म का गीत। शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत एम करीम का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म रोजा से। आवाज़ें SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की, शब्द रचना PK मिश्रा की और संगीत AR रहमान का।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रोजा फिल्म का गीत। शब्द रचना थी पीके मिश्रा की और संगीत एआर रहमान का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम श्रवण का।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। शब्द रचना थी समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुनिए संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सभी बच्चे बूढ़े अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंचतंत्र की कहानियों का सिलसिला। काकोलू की हम की प्यारी प्यारी कहानियों को आगे बढ़ाते हुए पहली कहानी इस प्रकार है। महिला रौप्य नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उनका एक ही पुत्र था, जिसे लेकर महाराज अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजपुत्र के पेट में एक सर्प रहा करता था। उस उदरस्थ सर्प के कारण उसका स्वास्थ्य क्षीण होता चला जा रहा था।
1: हे ईश्वर, लोग पुत्र धन मांगते हैं, मुझे आपने पुत्र धन देकर भी इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ दिया। हर प्रकार से चिकित्सा करवा चुका हूं, अच्छे अच्छे वैद्यों, शास्त्रीय विधि से निर्मित औषधियां, कितने प्रकार के उपचारों के उपरांत भी राजपुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहा है।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आप मुझे लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं। युवा पुत्र माँ बाप के दुखों को बांटता है, उनकी चिंताएं दूर करता है, और मैं
1: नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम चिंता ना करो।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आपके हृदय में क्या दुख है। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं आज ही रात इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
1: उसी रात को राजपुत्र ने महल छोड़ दिया। दूसरे नगर में जाकर भिक्षाटन करके वो जीविका चलाने लगा और रात में एक विशाल देवालय में सोकर अपना समय व्यतीत करने लगा। जिस नगर में राजकुमार रहता था उसी नगर का राजा था बलि। उसकी दो कन्याएं युवा हो चुकी थीं। सूर्योदय काल में दोनों प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श करती।
2: प्रणाम पिताश्री।
3: सौभाग्यवती भव।
2: पिताश्री, आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिलता है।
3: आयुष्मान भव पुत्री, मेरी कन्याओं को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा।
4: परंतु महाराज, मैं तो अपने भाग्य फल का ही उपभोग करती हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं।
3: दृष्टा, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बात कहने में तनिक भी भय नहीं हुआ तुम्हें?
4: भय? भय कैसा पिता महाराज, ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है। मैं भी सिर्फ अपने भाग्य का ही खाती हूँ।
3: अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने ईश्वर पर? मैं भी देखता हूँ भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देगा। महामंत्री, इस कटुभाषिणी कुमारी को ले जाकर इसका विवाह किसी परदेसी के साथ करवा दो।

0: हो, जिससे अपने कर्मों का भोग करे। जाओ।
1: जैसी आज्ञा पिताश्री।
2: मंत्रियों ने भी राजकन्या को ले जाकर उसका विवाह उस देवालय वासी राजकुमार के साथ कर दिया। राजपुत्री प्रियंवदा ने भी प्रसन्न मन से उसे पति देवता की तरह स्वीकार कर लिया। उसे लेकर वो दूसरे नगर में चली गई।
1: आइए स्वामी, आइए आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं समीप के बाजार में जाकर कुछ घी, तेल, नमक, चावल लेकर आती हूँ। आप भी भूखे होंगे।
2: वस्तुएं क्रय करके लौटने पर उसने देखा, राजपुत्र किसी सर्प के बिल पर सिर रखकर सो रहा है।
1: हे भगवान, ये क्या? स्वामी के मुख से सर्प फन निकाल कर बैठा है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे, इस बिल से तो एक सर्प निकल रहा है। क्या करूं? हे ईश्वर, कैसे स्वामी के प्राण बचाऊं? हे ईश्वर, अरे ये सर्प तो कुछ बोल रहे हैं।
3: अरे दुष्ट, इस राजपुत्र को तुम इस प्रकार क्यों कष्ट दे रहे हो? निकल क्यों नहीं जाते इसके शरीर से?
4: पापी, इस वृक्ष के विवरण में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों घड़ों को तुमने क्यों दूषित कर रखा है?
3: दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गरम जल के साथ पीने से तुम मर सकते हो?
4: तुम्हारी भी औषधि को क्या कोई नहीं जानता? गर्म तेल अथवा खोलते हुए जल को बिल में डालने से तुम मर सकते हो।
1: आज का ये क्षण मेरे जीवन में कितना आनंद दे गया। मैं अभी ये उपाय करती हूँ, मेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है।
2: दोनों सर्प मर गए। धन और स्वस्थ पति को लेकर प्रियंवदा श्वसुर गृह लौट गई। इसीलिए कहते हैं, परस्पर विवाद में एक दूसरे के रहस्यों को व्यक्त करने वाले सर्पों की तरह मरते हैं। अब हम सुनेंगे रथकार की कथा। कान्यकुब्ज नगर में वीरवर नाम का एक रथकार अपनी पत्नी कामदमनी के साथ रहता था। कामदमनी व्याभिचारिणी थी। एक बार वीरवर ने सोचा,
5: मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसके उल्टा होने की चर्चा तो सुन चुका हूं, आज मैं स्वयं ही इसकी परीक्षा लूंगा।

0: सुनो प्रिय
1: जी, कहिए।
0: कल प्रातः काल मैं समीप के गांव में जा रहा हूँ, बहुत आवश्यक कार्य है, इस कारण कई दिन लग जाएंगे। भोजन के लिए कुछ बना दो तो अच्छा रहेगा।
1: अरे वाह, ये तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए, परंतु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। आप अति शीघ्र वापस हो आइएगा, मैं आपके लिए शुद्ध पकवान बनाऊंगी।

0: दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही वो रत्कार घर से बाहर चला गया। पति को बाहर गया हुआ समझकर कामदमनी ने किसी प्रकार दिन व्यतीत किया। शाम होते ही श्रृंगार कर अपने प्रेमी देवदत्त के पास जाकर बोली,
1: प्रिय,
2: हाँ?
1: मेरा दुष्ट पति किसी अन्य गांव को चला गया है।
2: अच्छा,
1: जब सब सो जाएं तब चुपचाप मेरे घर आ जाना, मुझसे तो अब ये विरह वेदना सही नहीं जाती है।
2: ठीक है, आ जाऊंगा।
0: और इधर की कहानी सुनिए। रथकार घर से तो निकला दूसरे गांव का कहकर, पर वो वन में दिन भर बैठा रहा। शाम होते ही घर के झरोके से प्रवेश कर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी देवदत्त भी आकर पलंग पर बैठ गया।
3: दुष्ट अधर्म, जी तो चाहता है अब ही निकल कर इनकी हत्या कर दूं। नहीं, जब दोनों साथ में हो तभी निकल कर इन्हें चौंका दूंगा और एक साथ ही मार डालूंगा।
1: उफ, कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी मैं।
2: हाँ, मैं भी।
1: मैं दरवाजे पर साकर लगा कर आती हूँ।
2: ठीक है।
1: लो, मैं बैठ गई, अब बताओ। अरे अरे, ये मेरे पैर किससे टकरा है? कहीं ये मेरा पति तो नहीं? अवश्य वो मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं अभी बताती हूँ। श्रीमान देवदत्त जी, आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं अत्यंत साध्वी, पतिव्रता एवं महासती हूँ। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी।
4: यदि ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
1: सुनिए, आपको यहाँ बुलाने का कारण अभी बताती हूँ। आज प्रातः काल मैं चंडिका मंदिर गई थी।
4: मंदिर? और तुम?
1: मेरी बात सुनो। जी हाँ, मैं देवी दर्शन के लिए गई थी। मेरे वहां पहुंचते ही देववाणी हुई। मैं तुमसे कैसे कहूं, परंतु तुम मेरी भक्त हो, तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से तुम 6 माह में विधवा हो जाओगे। मैंने देवी से पूछा, भगवती, जैसे आप मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति को जानती हैं, उसी प्रकार आप इस विपदा के प्रतिकार को भी जानती होंगी। कृपया मेरे पति के शतायु होने का उपाय क्या है बताएं। देवी बोली, उपाय है पुत्री, परंतु बड़ा कठिन है। तुम्हारे अतिरिक्त इस विपदा का प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है। फिर मैंने पुनः निवेदन किया, देवी देवी, यदि वो उपाय मेरे प्राणों के परित्याग से भी संभव है तो भी मुझसे अवश्य कहिए, ताकि मैं शीघ्र उसे कर सकूं। देवी ने पुनः कहा, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ शैया पर उसका आलिंगन करो तो तुम्हारे पति की विपदा उस पर चली जाएगी और तुम्हारा पति शतायु हो जाएगा। हे सज्जन, अब ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि देवी का कथन असत्य नहीं होगा।
4: भद्रे, अगर मैं अपने जीवन का दान कर तुम्हारे जैसी नारी के सिंदूर की रक्षा कर सकूं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आओ कामदमनी, आओ।
1: हाँ देवदत्त,

0: हे कामधमनी, तुष्टों के कहने से मेरे मन में तुम्हारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं चारपाई के नीचे छिपा बैठा था। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। तुम पतिव्रत नारियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि पर पुरुष के साथ रहकर भी तुमने संयम का पालन किया। ये सब तुमने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए किया। तुम धन्य हो कामधमनी, तुम धन्य हो।
1: स्वामी, स्वामी, आपने मुझे पहचान लिया। धन्यवाद तो इस देवदत्त का करना चाहिए, जिसने सब कुछ जानकर भी मेरा साथ दिया।
0: महाशय, मेरे सत्कर्मों के फलों से आप यहाँ पर आए। आप ही की कृपा से मुझे 100 वर्ष की आयु मिली। आइए, मेरे हृदय से लग जाइए। मैं आज सबको बता दूंगा कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है।
2: मूर्ख वीरवर, प्रत्यक्ष रूप से पाप करते हुए देखकर भी झूठे समाधान से संतुष्ट हो गया। इन सारी कथाओं को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि दूसरे की बातों से नहीं, स्वयं विचार करके ही निर्णय लेना उचित है। इसके पश्चात स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को ये भी बताया कि यदि आप छोटी योनि के हैं तो समान वर्ग के साथ ही मित्रता या शत्रुता शोभा देती है। एक और कथा भी सुनाई। गंगा के तट पर एक आश्रम था। वहां के कुलपति महर्षि याज्ञवल्क्य थे। एक बार वे गंगा के पवित्र जल का आचमन करने ही वाले थे कि तभी किसी पक्षी के मुख से छूटी हुई एक चूहिया उनके हाथ में आकर गिरी। उन्होंने तपोबल से उस चूहिया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर आश्रम लौट आए। अपनी पत्नी से बोले,

0: समय बीतने लगा।
1: स्वामी, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, इस कन्या के विवाह का उचित समय आ गया है।
2: देवी, आपने ठीक ही कहा, इसका विवाह मैं योग्य वर से ही करूंगा। यदि आप कहें तो भगवान सूर्य को बुलाकर उनके साथ पुत्री का विवाह करा दूं।
1: ये तो उत्तम विचार है, आप ऐसा ही करें।

0: पुत्री, क्या सूर्यदेव तुम्हें पसंद हैं?
1: तात, ये तो अत्यंत दाहक हैं। मैं इनके साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप किसी श्रेष्ठ वर का आह्वान कीजिए।
0: मेघराज सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सूर्य को भी आच्छादित कर देते हैं। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ।
1: नहीं पिताश्री, मेघराज तो काले हैं। मैं अन्य श्रेष्ठतर से विवाह करूंगी।
0: मेघराज को वायुदेव अपने आघात से छिन्न भिन्न कर देते हैं। पवन देव मेघराज से श्रेष्ठ हैं।
1: पवन देव? नहीं नहीं तात, पवन देव अत्यंत चपल हैं। आप उनसे भी श्रेष्ठ का आह्वान कीजिए।
0: पुत्री, मुझे लगता है पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत हैं, जो पवन देव के हिलाए भी नहीं हिलते।
1: पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत? परंतु पिताजी, वो तो बहुत ही कठोर और निश्चल है। आप किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से मेरा विवाह करें तो अच्छा हो।
0: तो फिर पर्वतराज से श्रेष्ठतर तो चूहे हैं, जो अनायास ही पर्वत में भी छिद्र कर देते हैं। तो क्या मूषक राज तुम्हें पसंद है? मैं उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं?
1: अवश्य तात, अवश्य। इनसे श्रेष्ठ वर तो त्रिभुवन में कोई हो ही नहीं सकता है। आप मुझे चूहिया बनाकर इनसे मेरा विवाह करवा दें, ताकि मैं गृहिणी धर्म का पालन कर सकूं।
0: तथास्तु, आयुष्मान भव।
2: याज्ञवल्क्य ने ऐसा ही किया। इस कथा को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि समान वर्ग या योनि में ही मित्रता या शत्रुता लाभदायक होती है, और वही उचित भी है। इसी कारण इतने सुयोग्य पात्रों को छोड़कर उस मूषिका ने समान योनि के मूषक को ही चुना। एक बार मेघवर्ण के पूछने पर स्थिर जीवी ने कहा, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की योजनाएं बना रहा है। वहां उलूक राज को उनके ही मंत्रियों के विरुद्ध भड़का रहा है। मेघवर्ण ने उससे पूछा कि आगे क्या होगा और वो शत्रुओं के पास क्यों गया, तो स्थिर जीवी ने बताया,
3: मित्र मेघवर्ण, मैं बस उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में था। मैंने उनमें फूट डाल दी थी। अब वो उलूक राज अपने ही बंधुओं द्वारा पीड़ित हैं। देखा, मैंने बीच में कार्य को नहीं छोड़ा।
4: तात, आपका कथन यथार्थ है। महान व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होते हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को विघ्न के भय से नहीं छोड़ते। आपने बुद्धि के द्वारा मेरे शत्रु का विनाश करके मेरे राज्य को निष्कंटक कर दिया है। मैं अत्यंत भाग्यवान हूं।
3: नहीं महाराज, भाग्यवान तो मैं हूं।

0: आपके सानिध्य में किया हुआ कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला गया। जो कार्य विचार और बुद्धि से किया जाता है वो विजयकारक होता है।
1: नीति शास्त्र निश्चय ही फलकारक होता है। नीति शास्त्र के बल से ही आप मेरे शत्रु अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गए और उसके गुप्त भेदों को जानकर उसे सपरिवार विनष्ट कर दिया।
2: और इस प्रकार एक दूसरे का धन्यवाद कर दोनों ने कृतज्ञता स्वीकार की। आज काक और उल्लू की कथा समाप्त हुई। काकोलुकियम के पश्चात हम सुनेंगे लब्ध प्रणाश अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय में पंचतंत्र की 10वीं कड़ी। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

0: 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कही। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वह यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी ऊर्जा, नवाचार, तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव हैं। देश के विकास और विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान कई प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सबसे पहले नवाचार और उद्यमिता। आज के युवा तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए स्टार्टअप के जरिए आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। दूसरा, कौशल विकास और शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए जमाने के कौशल को अपनाकर युवा देश की उत्पादकता और कार्यबल की क्षमता में भारी वृद्धि कर रहे हैं। ये सामाजिक और नागरिक दायित्व भी बखूबी निभा रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता, समानता और पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रहे हैं। युवा सामाजिक बुराइयों को मिटाने, स्वच्छता अभियान और सामुदायिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। दोस्तों, युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक दृष्टिकोण देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में, चक दे इंडिया फिल्म से।

दोस्तों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लाया गया है। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समान अवसर मिले और वो समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इसके व्यापक उद्देश्य हैं शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, सांप्रदायिक द्वेष और हिंसा की रोकथाम और उसमें नियंत्रण करना। दोस्तों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए पहल सहित कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है वो हैं एकीकृत बाल विकास से

सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जिसमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह संसाधन आधारित छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजना, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास जैसी योजनाएं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए लगभग 7,150 पदों पर रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदक की उम्र 20 से 28 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अधिक जानकारी के लिए www.sbi.com.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। कुल पद हैं 5,000। आवेदन करने की तिथि 19 मई से शुरू होकर 19 मई 2026 से 1 जून 2026 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत विवाह फिल्म से, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा वहीं जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी, जी।
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए।

0: दोस्तों, हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो चलिए युवा श्रोता राज त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं राज त्रिपाठी। मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लगते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ग्रामीणों के खेती किसानी की जानकारी और देश विदेश की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा संगीत और स्थानीय बोलियों के कार्यक्रम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। किसानों और ग्रामीणों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत उपयोगी होते हैं। मौसम की जानकारी, फसल उगाने के लिए तरीके और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी लोगों को काफी पसंद आती है। हमारी बघेली बोली में भी कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। लोकगीत, सुगम संगीत, फिल्मी गीत, गजलें भी सुनाई जाती हैं, जिससे मनोरंजन होता है।
0: दोस्तों, अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत। दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvydiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म जुबैदा से।

यार रहमान का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जुबैदा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्यार में कभी कभी।

विशाल राज सम्राट का संगीत, साथ ही विशाल और राज कौशल के लिखे बोल, शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यार में कभी कभी से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर।

0: अनु मलिक का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, शान और सुनीता राव की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अशोका से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नहीं अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। उन्होंने बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलीशा शेनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ में फिल्म बंटी और बबली से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद गुलजार के लिखे बोल, जावेद अली, शंकर महादेवन और अलीशा चनोई की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बंटी और बबली से। फिल्म संगीत में अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अजनबी।

अनु मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल, अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अजनबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल।

ए.आर. रहमान का संगीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल, अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ताल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पुकार।

या रहमान का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पुकार से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल से।

AR रहमान का संगीत गुलजार के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, साथ है हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। फिल्म का नाम है परदेश।

नदीम शर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, हेमा सरदेसाई, सोनू निगम और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परदेश से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में फिल्म लज्जा से।

अनु मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल, अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लज्जा से। कार्यक्रम का अंतिम गीत अब आपको सुनवा देते हैं फिल्म सुनिधि फिल्म नायक से। आवाज़ है सुनिधि चौहान और हंसराज हंस की।

0: ए आर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, सुनिधि चौहान और हंसराज हंस की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नायक से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
4: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे। कार्यक्रम विज्ञान भारती प्रसारित होगा रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा चंगन सरी सीपी माधवन नंबूथरी का गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति बच्चों का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनवाया जाएगा कल रात 8 बजे। 8:15 पर सुनेगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कल रात 10 बजे सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज रात 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा प्रसारित किया जाएगा। 7:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर और 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे रामचरण यादव और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहांट सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। कल रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:20 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर के नेमा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोनन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम के लिए विषय है ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वो दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुने। दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न

0: विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पर भी प्रकाश डाला।
2: सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है और अब तो रेल भी चल रही।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उनके राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंस कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगरमालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने ट्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संयुक्त टीम ने कटनी जिले के विकास खंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के ANC पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया, मौसम जो है बहुत ही गर्म हो रहा है और ऐसे में अपन सभी को जो है गर्मी से बचाव करके रखने हैं, और ऐसे में अधिक मात्रा में जो है अपन पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, प्रयास करें कि समय अगर धूप होए तो ना निकलें, और बहुत ही आवश्यकता हो जाए कि अपन को कोनो काम से बाहर जाने हैं तो घर से खा पी कर निकलें और सूती कपड़े पहने, मुंह नाक कान सबको अच्छी तरीके से कपड़े से बांध लेवे जिससे धूप से अपन बच सकें। तो भैया देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन अपन अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखें तो अपन के कोनो भी काम काज हैं वे अपन बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अगर अपन बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं तो अपन कोनो भी काम काज करत हैं बहुत अच्छे से कर पाउत हैं। लेकिन भैया नो देखो, कहते हैं कि जब भी अपनी बात होत है कछु पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षी जो हैं अपन को ध्यान रखना है कि जब भी अपन काम काज कर रहे हैं और अपने घर के आसपास भी जो हैं पशु पक्षी रहते हैं और उनको अपन को लग रहा है कि जो उनके लाने अपन को दाना है, पानी है, उनकी कछु व्यवस्था करने हैं, तो प्रकृति की ये अपनी बहुत ही सुंदर देन है, इनकी देख रेख कर भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। उनके लाने अपन जो है दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और अब गर्मी के दिनों में अपन देखते हैं कि जो छोटे छोटे पोखर होते हैं या जहाँ से भी पानी पीते हैं वे स्थान सूख जाते हैं, तो ऐसे में अक्सर देखो जाता है कि भोजन की कमी से नहीं, पानी के कारण ही जो इनकी जो है मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में अपन चाहें तो छोटे से सकोरा में पानी भर के रख सकते हैं, वहीं अपने जो पशु हैं उनके लिए भी हौद या हौजा में थोड़ा पानी की व्यवस्था करके चलें जिससे कि जब उनको आवश्यकता होए तो वे पानी की मात्रा उन्हें पर्याप्त मिल सके, तभी जो है उनकी भी सुरक्षा हो पे है। और भैया देखो, कामकाज तो अपन करते हैं पूरी मेहनत से। अब कई ऐसे भैया बहन हैं जो खेती के साथ साथ कई ऐसे कामकाज भी चाहते हैं कि जिससे उनकी आर्थिक तरक्की हो। इकेला ने देखो शासन के द्वारा भी कई प्रयास करे जाते हैं जिनके माध्यम से वे अपने आप को बेहतर सशक्त भी बना रहे हैं, और तो और बहुत से भैया बहनों ने तो जो समूह है बना के भी खुद तो रोजगार पाओ ही है और लोगों को भी रोजगार दो है। और ये सब तभी संभव है कि जबकि हमने रोजगार से जुड़ी भाई सारी जानकारी को समझ के अपनों कामकाज शुरू करो। अब अपन गांव देहातन में देखें तो बहुत से ऐसे कामकाज हैं जो खेती पर आधारित होते हैं, लेकिन अपन सही तरीके से प्रशिक्षण लेके कामकाज शुरू करते हैं तो अपन को बेहतर लाभ भी मिलत है, और शासन के द्वारा भी कई योजनाओं के माध्यम से अपन को राहत भी पहुंचाई जाती है। उन्हीं में से एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका उद्देश्य यही है भैयारों कि जो रोज़गार है, बहुत से जी के लाने बहुत से जो किसान भैया रहे हैं या गांव देहात में रहने वाले युवा हैं शहरों की तरफ जाते हैं, तो उनको अपने क्षेत्र में ही रोज़गार मिले, वे अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकें, बेहतर आजीविका के अवसर उन्हें मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह सबके पास अच्छा रोज़गार होगा तभी वे अपना अपने परिवार का जो है अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना चलाई गई है जिसका लाभ लेकर के अपने जो भैया बहन हैं रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और यह योजना अपनी जो बहनें हैं उनके लाने तो और भी अच्छी है, कैसे ये स्वयं का जो है स्वसहायता समूह भी बना सकती हैं जिसमें एक सी ही आर्थिक स्थिति वाली जो बहनें हैं वे एक समूह बना करके मिलकर भी काम कर सकती हैं। और इस योजना को और बेहतर करने के लिए कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि वे प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपने जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी बेहतर कर सकते हैं। तो भैया बहनों, जो भी अपन काम काज शुरू करें उसको बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपन जो काम करने वाले हैं उसके हर चरण के बारे में अपन को पता हो जाइए। जैसे कि अगर हमने मान लो कि बरी बनावे को काम काज शुरू करो, तो अपन को जो दाल है या कच्चा माल जिसको कहते हैं वो अपन को कहाँ से लेना है, उसकी साफ़ सफाई कैसे रखनी है, जब अपना प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार हो जाएगा तो उसको हमें विक्रय कैसे करना है, और हाँ जो भी अपन चीज़ें तैयार करते हैं उसकी गुणवत्ता सही तरीके से अपन को जांचनी होती है। इसके साथ ही सही पैकिंग से जो भी अपन सामान तैयार करते हैं उसको लंबे समय तक भी सुरक्षित रख सकते हैं। और ये सब तभी होगा
जब हम बेहतर तरीके से सही रूप में प्रशिक्षण लें, एक एक चरण के बारे में जानें, तभी हम उद्योग अगर लगाते हैं या कोई भी काम काज शुरू करते हैं तो हमें बेहतर लाभ होता है। और भैया, जब अपन कोनो काम काज करते हैं तो ऐसे नहीं कि अपन को झोंक में आके बिल्कुल एकदम से जो है बहुत सारा पैसा लगा देने हैं हर चरण के बारे में। यहाँ तक कि अपन चाहें तो किसी अपने आसपास जो संस्थान है वहाँ पे प्रशिक्षण लेने के साथ साथ कुछ समय तक कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कि कार्य करने से ही देखो अपन को ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें और भी जानकारी चाहिए। और आज के समय में अपन देख ही रहे हैं कि आज को समय जो है तकनीकी युग है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से कई जो और भी माध्यम है उससे भी अपन विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। वहीं किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं या सही समय पे जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनसे भी अपन जानकारी लेकर के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो भैया बहनों, अपन तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि जब अपन कोनो कामकाज शुरू करें, अपने श्रम के साथ साथ अपनी सही जानकारी और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने कामकाज में बेहतर हो पाएंगे और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। तो भैया बहनों देखो, आपसे तो हमारी चर्चा हो गई और आज है शनिवार, और हर शनिवार को जो है आप और उनके संगे संगे जो है मोड़ा मोड़ी सोई अपने कार्यक्रम फुलवगिया को इंतजार कर रहे थे। तो फुलवगिया की ओर बढ़वे से पहले सुनते हैं संदेश।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो हमारे सबसे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों को स्वाति दीदी का प्यार भरा नमस्ते। मुझे पता है आप सबकी जो है गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती है तो पहले से ही सभी बच्चों को उनका इंतज़ार रहता है, और छुट्टियों को लेकर वे कई बातें भी सोचते हैं कि इस बार अगर हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो हम क्या क्या कामकाज करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, बहुत सारी ढेर सारी मस्ती करेंगे। लेकिन यही समय होता है कि हम समय को ध्यान में रखते हुए कुछ नया सीखें और अपने अंदर कुछ अगर कमियाँ हैं तो उसको दूर भी करें। तो बच्चों, आपने भी कुछ ना कुछ योजना बनाई होगी। कुछ बच्चे तो अपनी दादी दादा के यहाँ, नानी नानी के यहाँ, तो कई विभिन्न जगहों पर भी हम घूमने जाते हैं। और बच्चों, घूमने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो छोटी सी एक आदत अपना कर हम अपने सफ़र को सुहाना भी बना सकते हैं, और वहाँ जो चीज़ें हमने देखी होती हैं उनके बारे में जानकारी खुद भी इकट्ठी कर लेते हैं, और जब हम विद्यालय जाते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं तो उनको सही और सटीक जानकारी भी दे पाते हैं। वो तरीका है कि जब भी हम कहीं घूमने जाएं तो अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर जाएं। वहाँ आपने क्या क्या घूमा, कौन कौन सी जगह थी, उसकी विशेषता क्या थी, और तो और अगर हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ का पहनावा कैसा था, बोली कैसी थी, इन सब को भी लिख सकते हैं। यही जानकारी आपको धीरे धीरे जो है ज्ञान को बढ़ाती भी है। इसके साथ ही कुछ बच्चों को जो है संगीत बहुत पसंद होता है, तो हम वहाँ पे कैसा संगीत होता है उसके बारे में भी जान सकते हैं। आप जानते हो हर जगह का, हर राज्य का जो है लोक नृत्य अलग अलग होता है, लोग गीत अलग अलग होते हैं, भाषाएं अलग होती हैं, बोली अलग होती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम सब एक होते हैं। लेकिन जब हम उस जगह पर जाते हैं तो उनसे उनकी भाषा के बारे में और भी बेहतर जान पाते हैं, और हम इस ज्ञान को ज़्यादा समय तक याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो कई बार ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में बहुत देर तक सोते रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, और उनका कोई निश्चित टाइम टेबल या समय सारणी नहीं होती है। जब बच्चे ऐसा करते हैं तो पता बच्चों क्या होता है, आपका समय जो बहुत कीमती है वो नष्ट हो जाता है। आप जानते हो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, ना सोना, ना चांदी, ना कोई और चीज़, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है समय, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। तो बच्चों, हमें समय की कीमत को जानना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि समय जो है अनमोल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने समय को अनमोल और मूल्यवान बनाने के लिए, सबसे पहले तो अपनी एक दिनचर्या को सही करें, यानी कि समय पर हमें उठना है, समय पर सोना है, हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करना है, तभी बच्चों हम जो है अपने जो भी काम है समय से पूरे कर पाएंगे। अब मान लो कोई बच्चा है 9-10 बजे तक उठेगा तो उसको सुबह का आनंद कैसे मिलेगा, और अगर उसी की तरह अगर कोई दूसरा बच्चा है और वो जल्दी सुबह उठता है, ठंडी ठंडी हवा में खेलता है, कूदता है, या थोड़ा व्यायाम करता है, और नहीं तो छोटी सी सैर पर ही निकल जाता है, तो सैर के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। जब हम सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में बाहर निकलते हैं तो हमारे तन मन में ताजगी आ जाती है। इसके साथ ही हम अपने आसपास पर्यावरण में कई चीज़ें होती हैं जिनको अपन देखते हैं, तो हम एक काम और कर सकते हैं, जब ठंडी हवा में निकलते हैं तो पेड़ों की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो उस पर कई प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को जो है शुद्ध करती है, खुली हवा में रहने से हमारे जो फेफड़े हैं अच्छी तरीके से काम करते हैं, और दिन भर के लिए बहुत सारी ऊर्जा भी हमें मिल जाती है। तो सबसे पहली आदत क्या है कि
कि हमें सुबह जल्दी उठना है और कुछ ना कुछ व्यायाम करना है। अगर व्यायाम नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों की एक टोली बनाकर कुछ ज़रूर खेलें, यानी कि शरीर को थोड़ी सी कसरत कराएं। इससे क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा और हमारे अंदर फुर्ती बनी रहेगी। और बच्चों, आप जानते हो ना कि जो बच्चे नियमित रूप से खेलते कूदते हैं तो उनको एक अनुशासन भी आता है, क्योंकि हर जो खेल है उसमें कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उन नियम जो होते हैं वो हमें एक नियमबद्ध तरीके सिखाते हैं, अनुशासन लाते हैं, और सबके साथ कैसे मिलकर खेला जाता है, सबकी क्या जिम्मेदारी होती, ये भाव भी जागृत करते हैं। अब आती है खान पान की। अब गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मी बहुत हो रही है, हमारा मन, आपका, सभी का मन करता है कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, बाहर की बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन बच्चों, कई बार क्या होता है, ये बार बार की बाहर की चीज़ें खाने से जो शुद्धता को ध्यान में रखकर ना बनाई गई होती हैं उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है और हम जल्दी जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमको जो डॉक्टर है वो भी कहता है कि आराम करो। तो अगर हमें बीमार नहीं होना है, स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो खाना हम खाएं वो पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ हो। आप जानते हैं, अपने आसपास अगर हम रसोई में जाएं माँ के पास, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें सेहत का खजाना छुपा होता है। अब जैसे कि चने, सुबह सुबह चने खाने से ताकत बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और तो और इस समय सत्तू भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इस समय आपने देखा होगा कि आम के पेड़ पर छोटी छोटी कुछ बड़ी सी कैरियाँ भी होती है, जिससे कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं जो कि हमारे गर्मी में हमें तरोताज़ा भी करती हैं। और अपने घर की बगिया में या आसपास आपने देखा होगा, पुदीना भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इनकी सहायता से ठंडा ठंडा पना भी बना सकते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ मौसम के जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका भी हमें सेवन ज़रूर करना चाहिए, तभी जो है हम हष्ट पोष्ट और निरोग रह सकते हैं। तो देखो, जब अपन बच्चों समय की बात कर ही रहे हैं तो समय को ध्यान में रखते हुए अब सुनते हैं गीत।

सब बकवास है सब बकवास, सब बकवास है सब बकवास। बालू में ताकत जिसकी चलती है हुकूमत उसकी, है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत, यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे।

0: तो बच्चों हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, जीवन सुखमय हो जाता है और हमारे बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। और हाँ बच्चों, आप जानते हो हमारे आसपास बहुत सारा विज्ञान फैला है। घर की बात करें, बाहर की बात करें, जहाँ देखो वहीं कुछ ना कुछ विज्ञान के चमत्कार हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, जो बिजली से चलने वाला पंखा हो, या फिर रोशनी देने वाला बल्ब हो, या हमारी रसोई में प्रेशर कुकर में पकने वाला खाना, उनमें भी किसी न किसी प्रकार का विज्ञान छुपा होता है। और आज की अपनी वार्ता का भी विषय है विज्ञान के चमत्कार, जिसके बारे में जानकारी देंगी सुश्री प्रीति कुशवाहा। तो बच्चों अब जानते हैं विज्ञान के कुछ चमत्कारों के बारे में।
1: बच्चों, आप सभी ने विज्ञान शब्द सुना तो होगा ही और उससे परिचित भी होंगे, क्योंकि हमारे, आपके और हम सबके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान छुपा हुआ है, जिसे हम देख तो नहीं सकते कि वो कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ उसे महसूस कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। बच्चों, जो हमें ज्ञान देता है, तरह तरह की जिज्ञासा को शांत करता है, मन में उठने वाले कई विचित्र सवालों को दूर भी करता है, और हम बड़े ही आश्चर्य से पूछते हैं कि यह सब क्या है। बच्चों, ये सब कुछ और नहीं विज्ञान ही है। बच्चों, हम विज्ञान के कुछ ऐसे ही चमत्कारों के राज के बारे में आप सबको बताएंगे। पहले एक छोटी सी बात, आप सभी ने मम्मी को खाना बनाते हुए तो देखा ही होगा। कभी आपने सोचा है कि रोटियां गोल गोल और कैसे फूल जाती हैं, उसकी दोनों परतें अलग अलग कैसे हो जाती हैं। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि यह सब कैसे हो जाता है। ध्यान से सुनिए। गेहूं के आटे को पानी मिलाकर जब उसे अच्छी तरह गूंदा जाता है, तो गेहूं में उपस्थित प्रोटीन, जिसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं, एक लचीली परत बना लेता है। लासा का खास काम यह होता है कि वह CO2 को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है। बच्चों, जब हम रोटी को सेकते हैं तो लासा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी के कारण फैलने लगती है और रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है, लेकिन जो भाग तवे से चिपका रहता है वह पपड़ी बन जाती है। इस तरह दूसरी ओर सेकने से दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है, और दोनों पपड़ियों के बीच उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा भाप के कारण रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती हैं। बच्चों आप सभी के मन को ये बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों, आप सभी ने इसमें छुपे विज्ञान के जादू को समझ गए होंगे कि किस तरह विज्ञान रोटी को फुला देता है। लेकिन हाँ बच्चों, और भी जो अन्य अनाज हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में लासा प्रोटीन जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और लासा कम होने के कारण वह अपने में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में अवशोषित नहीं कर पाती। बच्चों, कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अक्सर देखते हैं या किसी से सुनते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे इन कामों को चमत्कार मान लेते हैं, क्योंकि आप सब इन कामों से जुड़ी विज्ञान की सच्चाइयों के बारे में नहीं जानते, और जो देखते हैं या आप सुनते हैं उसे उन लोगों पर भगवान का आशीर्वाद समझकर उनकी पूजा करने लगते हैं। बच्चों, यह कुछ और नहीं, इसे हम अंधविश्वास भी कहते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि भारत में रहने वाले बहुत से लोगों में से कुछ लोग अंधविश्वासी भी होते हैं, और कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बनाकर बहुत धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं। बच्चों, आज हम ऐसे ही एक अंधविश्वास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि उसमें छिपा विज्ञान यह सब करता है। प्यारे बच्चों, आप सभी में से कुछ बच्चों ने यह देखा होगा कि कुछ लोग जलती हुई आग को अपनी हथेली पर रख लेते हैं और फिर उसी तरह दूसरी हथेली पर भी रख लेते हैं और थोड़ी देर बाद उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह मुंह खोलते हैं तो मुंह में जलती हुई आग नहीं होती, जिसे देखकर हम सभी हैरान हो जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि वह जलती हुई आग उस मनुष्य ने खा ली और उसे हम ईश्वर का भक्त मानकर उसके आगे अपना सिर झुका लेते हैं। बच्चों, इसमें हमारी, आपकी और वहाँ खड़े होने वाले सभी व्यक्तियों की कोई गलती नहीं होती, बल्कि सिर्फ हम उस जलती हुई आग के विज्ञान या विज्ञान के द्वारा होने वाले चमत्कार को नहीं जानते हैं। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि वह जलती हुई आग कहाँ गई और इस जलती हुई आग में क्या विज्ञान है। बच्चों, ध्यान से सुने अब जरा आप लोग। जब हम कपूर के जलते हुए टुकड़े को, कौन सा कपूर? देसी कपूर। जब हम कपूर के जलते हुए टुकड़े को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी त्वचा 2 या 3 मिनट तक इस आग की गर्मी को सहन कर सकती है और उससे पहले ही हम अपनी दूसरी हथेली पर आग को पलट लेते हैं और ऐसा हम बार बार करते रहते हैं, जिससे हमारी त्वचा जलती नहीं है और हमें जलने का आभास या पता भी नहीं चलता। अब दूसरी बात यह है बच्चों कि जब जलती हुई आग को मुंह में रखते हैं तो वह जलती हुई आग को कैसे खा लेते हैं। इसका कारण बच्चों यह है कि हम सभी जानते हैं किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और यदि उस पदार्थ को ऑक्सीजन ना मिले तो वह आग अपने आप बुझ जाती है। इसीलिए बच्चों, जब वह जलती हुई आग को अपने मुंह में डालते हैं तो वह अपना मुंह बंद कर लेते हैं और मुंह बंद करने से क्या होता है, मुंह बंद होने के कारण आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और इस कारण आग बुझ जाती है और हम यह समझते हैं कि वह आग उस व्यक्ति ने खा ली। अब समझे प्यारे बच्चों आप जलती हुई आग में विज्ञान के जादू को। बच्चों, विज्ञान ने हमारी सुख सुविधाएं तथा देश के हित में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, अंतरिक्षयान और भी बहुत कुछ। बच्चों, आप जानते हो 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्लास्टिक रही है, जिसका उपयोग कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, कूलर, रेडियो, मोबाइल और भी बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में किया गया। लेकिन बच्चों, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए धन दौलत कमाने के लालच में इसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया और इस प्लास्टिक का उपयोग उसने पॉलीथीन की थैलियां, कप और बड़ी बड़ी पन्नियों में करके पृथ्वी पर विष या जहर फैलाना चालू कर दिया। बच्चों, यह बात बहुत ही गंभीर तथा सोचने वाली है, क्योंकि हम हर वस्तुओं को लाने और ले जाने में, जैसे फल, सब्जी, कपड़े और भी बहुत सारा सामान, इन सब में प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने लगे हैं या करते हैं। बच्चों, आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कागज़ की थैली 1 माह में, कपड़े से बनी थैली या थैले 5 महीनों में नष्ट हो जाते हैं या गल जाते हैं अर्थात या फिर जैविक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, पॉलीथीन से बनी थैलियों को नष्ट होने में लगभग 10 लाख वर्ष लग सकते हैं या लग जाते हैं। अब आप समझे बच्चों, किसी चीज़ को नष्ट होने में 1 माह और किसी को 10 लाख वर्ष, और वर्तमान समय में प्लास्टिक की इतनी थैलियाँ बनाई जाती हैं कि यदि इन थैलियों को हम लंबाई में जोड़ लें या जोड़ा जाए इन सबको, तो उसमें पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। इन थैलियों के कारण भूमि बंजर हो रही है, सीवर लाइनें पशुओं तथा जानवरों के गले में फंसने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए बच्चों, आपको यह खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें और हम अपना सामान कागज़ की बनी या कपड़े से बने थैलों में ही लाएं। इसीलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम विज्ञान द्वारा किए गए चमत्कारों तथा उसके आविष्कारों का दुरुपयोग ना करें और दूसरों को भी मना करें बल्कि उनका सदुपयोग करें, क्योंकि दुरुपयोग करने से हम किसी और का नहीं बल्कि अपने लिए और प्रगति के लिए समस्याओं को न्योता दे रहे हैं, अर्थात अपनी और विनाश को बुला रहे हैं। इसीलिए बच्चों, हम और सभी को अपने हर समय अपने विवेक, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब आप विज्ञान के बारे में जानकारी रखते होंगे या रखेंगी। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर मिलेंगे कुछ विज्ञान की चटपटी खबरों, कहानियों, कविता और विज्ञान के नए आविष्कारों के साथ।
0: तो बच्चों, अभी आपने सुनी वार्ता, विषय था विज्ञान के चमत्कार और जान

और सही विज्ञान को समझना है। कई लोग कई भ्रांतियां फैलाते हैं, तो उनसे भी हमें बचना है। और इस समय देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है वो है गर्मी से। अब जब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप सब दिन के समय अपने घरों में रहते होंगे। बाहर जाने के लिए मम्मी पापा बड़े सभी मना करते हैं, क्योंकि बाहर क्या है, गर्मी का बहुत ज़्यादा असर होता है। उस समय हम गर्मी में अगर खेलेंगे कूदेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो घर बैठकर भी हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो रुचिकर लगता है, वो आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ बच्चों, जैसे आप सभी का आपके बड़े बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, वैसे ही प्यार दुलार हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको भी ज़रूरत होती है। और उनको हम प्यार दुलार देने के लिए क्या कर सकते हैं, कई बार देखा है मैंने कि छोटे छोटे बच्चों ने क्या है, उनके लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया, और अपने घर के आंगन में या आसपास लगे पेड़ के पास, या फिर अपने घर की खिड़की के बाहर, या ऐसी जगह जहाँ पे उसको लटकाया जा सकता है, उसको लटका दिया। फिर पता चला कि कुछ समय बाद एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया आती है। उसकी चहचहाट देखकर आप सभी को अच्छा लगता होगा। तो एक प्रयास हम ये भी कर सकते हैं दूसरा, कि थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी हम उनके लिए ज़रूर रखें, जिससे कि वो हमारे आंगन में आए, चहचहाएं और उनकी भूख प्यास भी मिटे। फिर देखो अपने आसपास चिड़िया क्या-क्या करती हैं, उनके स्वभाव को देखो, वो कैसे नहाती हैं, कैसे चहचहाती हैं। और तो और अपने आसपास कई प्रकार की जो चिड़ियाएं होती हैं वो भी आपके आंगन में आने लगेंगी। फिर तो इसको देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और बच्चों, बहुत से बच्चे ये काम करते भी हैं, तो आप भी एक बार इनका आपको ज़रूर करें। और अब सुनते हैं अगला गीत।

सो किसान भैयरों, अपनी मौड़ा मौड़ियन से तो बातें हो गई, लेकिन जैसे अपन ने उनसे बात करी ना कि देखो अपन को पेड़ पौधों को ध्यान रखने हैं, पशु पक्षियों को लाने, तो पशु पक्षियों की चहचहाट तो अपन सभी को अच्छी लगा थे। और पशु पक्षी अपन ने देखे हैं वहीं ज़्यादा रहा थे जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं। अब ई मौसम में अपन जो है गर्मी में अगर कहूँ निकल जाऊ थे और कोनो पेड़ की अगर अपन को ठंडी ठंडी छाँव मिल जाती है तो अपन को कितने अच्छो लगत है कि वहीं पे थोड़ी देर बैठ जावे और थोड़ा आराम कर लेवे। और बिल्कुल सही है कि कैसे जे जो पेड़ हैं जे अपने लाने मित्र के समान होते हैं। इनसे अपन को सभी कछु मिलत है, अपन को चाहे लकड़ी की बात करें चाहे औषधि की बात करें, यहाँ तक कि अगर अपन खेती किसानी के लाने करें तो बहुत से पेड़ हैं जिनसे कई प्रकार के कीटनाशक भी बनाए जाते हैं। अब देखो अपन नीम की ही बात ले लें, नीम में कई देखो औषधीय गुण होते हैं जो कि अपन मेड़ के किनारे लगा सकते हैं और अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, गांव के बाहर भी लगा सकते हैं, जो कि अपन के लाने बहुत फ़ायदेमंद है। नीम की पत्तियों से विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इलाज में आउट है। वहीं अपनी खेती के लाने भी अगर कोनो इल्ली लग रही है फसल में तब भी अपने काम आउट है, उनकी छाल काम में आउट है। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएँ। कैसे जे पेड़ पौधा होते हैं अपने पर्यावरण को शुद्ध करवे को भी काम करते हैं और वातावरण को ठंडो भी रखते हैं। और ये क्यों एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की मिलके जिम्मेदारी है। तो आगामी बारिश में अपन ज़्यादा पेड़ लगाएं, इके लाने तैयारी अवश्य करके चलें, क्योंकि जब बारिश हुई है तो अपन जो है नन्हे नन्हे जो बीज हैं उनको अपने आसपास खेतों की मेड़ पे लगाकर अपने वातावरण को हरोभरो बना सकते हैं। और भैया देखो कहत भी है कि नन्हा पौधा बनता पेड़ सुख संपदा देता अनेक, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। और अब हो रही है चलबे की बेरा, सभी किसान भैयारों को स्वाति बहन की राम राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार अनुभा जी।
0: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में ये है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 1900 लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है,
0: जी,
1: वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
0: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं, ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती हैं और कैसे प्रोत्साहित करती हैं?
1: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिसे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां है देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
0: जी,
1: लगातार उनके लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे। और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे, सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
0: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।
0: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है और बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं, उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई।
0: जी बिल्कुल,
1: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि पांच कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करें अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य

0: क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है,
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
1: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
0: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपकी 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहाँ शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसमें हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है, और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन करने बात की वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा पीएम यहाँ जाने से पहले UAE गए थे, वहाँ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, साइंस, टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते,
1: बिल्कुल
0: जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
1: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए, महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो, अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को, एक क्षेत्र नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को, मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है, जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए, आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: यानी Tier 2, Tier 3 वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप की आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, ये

0: हमारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है आपको, कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है। ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
0: ज्यादातर इन रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
1: जी।
0: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, उसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे डर जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, तभी जाके अवसर आगे आएगा।
1: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
0: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए
1: जी।
0: तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो उसमें तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसकी बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउनस्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निधि क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे बड़े बड़े जो प्राइवेट डिजाइन वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी जॉइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
1: जी।
0: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
1: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड से।

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गाइड से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अनामिका।

आर्यभवन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अनामिका से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ से।

एस डी बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ज्वेल थीफ से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले, बप्पी लाहिरी और शशि कपूर की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल से।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

बप्पी लाहिरी का संगीत अनजान के लिखे बोल, आशा भोसले, बप्पी लाहिरी और शशि कपूर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नमक हलाल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं राहुल देव बर्मन, आडी बर्मन साहब की आवाज़ में फिल्म शोले से।

आरडी बर्मन का संगीत और उन्हीं की आवाज़ बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म शोले से अभी आपने ये गीत सुना और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कवि शिव राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
5: anchoring that is the relationship between the president and the prime minister.
4: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
3: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने

0: भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीरामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

0: आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to U.S. President Donald Trump.

0: in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. In the 60-kilogram category, Suraj Vashisht went down to Kazakhstan's Aybek Atbekov 4-0 in the summit clash. While in the 67-kilogram category, Sagar Singh lost to Uzbekistan's Etjan Kalmakhanov 9-0 in the final. In tennis, India's Yuki Bhamre and his New Zealand partner Michael Venus finished runners-up at the Geneva Open after suffering a hard-fought defeat in the ATP 250 men's doubles final today. The third-seeded Indo-Kiwi pair lost to Romeo Nadal of Monaco and Australia's Mark Polmans in a closely contested summit clash that lasted nearly 2 hours. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 179 for 6 in 19 overs against Punjab Kings in Lucknow when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. Retired officer of the Indian Information Service, Triloki Nath, passed away in New Delhi today. He was 79 years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China and Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی۔ اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئنشپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیراعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا۔ ان میں دفاع، کلیدی، ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کی یقینی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ جناب مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات दोहराई और कयाम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का यादा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के चार दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस माहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी तालुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी तालुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
2: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना, नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 mm के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 500,000 गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
4: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म FDI को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू

0: किया गया पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद-ए-अम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की ज़रूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जीरामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाया किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स मुतल्लिका फरीक तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन

कश्मीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस की वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में

0: स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर, जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उस

0: उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीडअप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रांग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
4: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
3: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एलनीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट टेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
5: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि जबकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
3: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु।

0: शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाली, दरभंगा।
1: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई हरास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
3: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
0: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था।

और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।

0: गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में तिरंगे का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विशेषता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना चाहते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी, इंटरनेट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the घटम by श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स दिस वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहेर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य

मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।